इस वक्त आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दोष शशि के साथ। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर ए है तोहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओं कन तोहां सारी कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कन्ना।

92.2 MHz पर ये तो हाँ सारे दा अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोता तो हाँ सारे अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुना दे जिसका नाम है माटी दी महक। सुन दे कार्यक्रम दा अगला गीत।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक होस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं APEX+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: अप्पा, ये चींटी खाना कैसे चबाती है?
2: सुबह सुबह शुरू।
1: अप्पा, ये हवा दिखती क्यों नहीं?
2: दिखती है बेटा, कभी कभी दिखती है।
1: ये पहिया चलता कैसे है? माँ को आपकी तरह मुझे क्यों नहीं होती? अप्पा, दिन में तारे क्यों नहीं दिखते? अप्पा अप्पा बोलो ना।
2: आके बोलता हूँ पक्का।
1: अप्पा अप्पा, ये पेड़ की
2: इधर सुबह शाम सवाल पे सवाल।
3: अरे, इसमें इतनी जिज्ञासा है तो इसे स्कूल क्यों नहीं भेजते?
4: गरीब आदमी है साहब, कहाँ से पढ़ाएगा?
3: इसे सरकारी स्कूल भेजो ना, अब तो शिक्षा है हर बच्चे का अधिकार।
1: अप्पा, अब तो मेरा पढ़ना पक्का।
3: हाँ पक्का।
1: अप्पा, ये मिर्ची इतनी तीखी क्यों होती है?
5: कल स्कूल में मास्टर जी से पूछना। सांभर चाहिए तो।
6: शिक्षा है अब हर बच्चे का अधिकार, अब पढ़ना पक्का।

0: चसे
1: चौकन्ना।
0: सड़क पर ट्रैफिक जाम हो या हो खाली, हर पल चौकन्ना रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसका आपको पहले से आभास ही ना हो। अभी यूं तो सड़क खाली लग रही है, पर आपको कहां पता कि छुट्टी का टाइम होने वाला है। इसलिए जहां एक तरफ मैं स्कूल से विनती करूंगा कि छुट्टी के टाइम बच्चों के सुरक्षित सड़क पे निकलने का प्रबंध करें, वहीं आपसे भी विनती करूंगा कि आप इस सड़क पे निकले तो अपना सारा ध्यान यहां केंद्रित करें और गति सीमा में चलिए, ताकि कभी कुछ अचानक हो जाए तो आप संभाल पाए उसे।
2: हेलो,
0: hey, तुम खबर है?
2: जैसे चौकन्ना रहिए।
0: याद रखना, यहाँ हर पल चौकन्ना है रहना, ये सड़क है भैया, संभल के चलना।
3: हर घर में छुपा एक कुरुक्षेत्र आज भी है, क्योंकि गलत को गलत कहने वाले मिलते कहाँ हैं? कहीं कोई अर्जुन सा सच्चाई के साथ भी अकेला रह जाता है, कहीं कोई कर्ण सा वफादारी में अंधा हो जाता है, और कौरवों सा कोई अपना हो के भी बेगाना हो जाता है। यहाँ हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, पर गलती मानकर झुकना किसी को आता कहाँ है? लोग बोल देते हैं हमने क्या गलत किया, पर गलत होता देखना भी अपराध है, ये समझ किसी को आता कहाँ है? कृष्ण आते हैं समझाने आज भी, बहुत लोगों और घटनाओं के रूप में, पर उनकी लीलाओं को कोई समझ पाता कहाँ है? इसलिए अंत में भगवान ने भी महाभारत होने दी, क्योंकि समझाने से इंसान समझता कहाँ है।
4: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
5: मामा, नो शेयरिंग।
4: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
5: कौन था?
4: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
5: और आप मान गए? जब हमने पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
4: स्मार्ट गर्ल।
5: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे, ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
4: याद है ना, नो शेयरिंग।
5: मामा,
6: आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
7: सुनो, एक बात बताओ, शादी से पहले वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद वाली?
8: शादी से पहले वाली भी कोई जिंदगी थी, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करते रहो। जिंदगी तो शादी के बाद होती है, बीवी के साथ रोटियां बनवाओ, खाना बनवाओ।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। और श्रोताओं, मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी हाजिर हो गई हूँ आपके लिए आपका प्यारा सा पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला लेकर। और कार्यक्रम में सबसे पहले जानते हैं इस वक्त धर्मशाला का तापमान। 16 डिग्री सेल्सियस तापमान है और वातावरण में नमी है 62%। दिन भर के मौसम की बात करें श्रोताओं, तो हल्की फुल्की बारिश की फुहारें जो हैं वो पड़ने की संभावना है। इसके साथ ही थोड़ा विस्तार से जानते हैं मौसम को। 3 दिन से लगातार प्रचंड गर्मी का हम सभी लोग जो हैं हिमाचल वाले सामना कर रहे थे, और हिमाचल में शुक्रवार यानी आज बारिश की फुहारें बरसने से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने शुक्रवार के लिए चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में भारी ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन और सिरमौर जिलों में बारिश, आंधी और येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसी बीच गुरुवार को लगातार तीसरे दिन हिमाचल में भीषण गर्मी और लू का असर दिखाई दिया। प्रदेश में राजधानी शिमला सहित जिला कांगड़ा, सोलन और ऊना में लू जैसे हालात बने रहे। ऊना में पारा लगभग 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। राज्य में तेज धूप और बढ़ते तापमान ने अधिकांश क्षेत्रों में लोगों का जनजीवन प्रभावित कर दिया है, लेकिन इस गर्मी से आज सुबह की इन फुहारों से हम सभी को राहत मिली है श्रोताओं। और हम अक्सर कहते भी हैं कि हम, खासकर हिमाचल वाले या यूं कहें कि धर्मशाला के जो निवासी हैं, वो बहुत ही खुशनसीब हैं कि 2 से 3 दिन तक अगर धूप होती है, तेज़ गर्मी महसूस होती है, तो कुदरत कुछ ऐसा करती है कि बारिश की फुहारें गिर ही जाती हैं और हमें फिर उस तपती गर्मी से जो है वो राहत मिलती है। जैसे कि आज की ही बात करें, सुबह सुबह मौसम की फुहारें जो है वो हमें देखने को भी और महसूस करने को मिली, और उससे मौसम जो है वो बिल्कुल ही सुहावना बना हुआ है। तो चलिए श्रोताओं, इस सुहावने से मौसम का आनंद उठाइए। और अब कार्यक्रम में हम आपको सुनाते हैं कार्यक्रम का आज का पहला प्यारा सा गीत। इंजॉय कीजिए प्यारा सा गीत गाइड फिल्म से।

जी अश्रुतो, आज फिर जीने की तमन्ना है और जीने की तमन्ना हर दिन होनी चाहिए। ज़िंदगी चाहे जो भी रंग दिखाए, उसमें हमें जीने की जो चाह है, जीने की जो चाहत है, वो नहीं छोड़नी है। जीने की तमन्ना को यूं ही बरकरार रखना है। और अब वक्त है कार्यक्रम में आपको आज का विचार सुनाने का। गलतियां इस बात का सबूत हैं कि आप प्रयास कर रहे हैं, इसलिए असफलताओं से डरे नहीं बल्कि उनसे सीखें और आगे बढ़ते जाएं। आज का विचार फिर से दोहरा रहे हैं श्रोताओं, गलतियां इस बात का सबूत हैं कि आप प्रयास कर रहे हैं, इसलिए असफलताओं से डरे नहीं बल्कि उनसे सीखें और आगे बढ़ते जाएं। जी हाँ श्रोताओं, गलतियां जब भी हम ज़िंदगी में करते हैं तो अगली बार उसी काम को करने में हम थोड़ा सा हिचकिचाते हैं या डर जाते हैं, या हमें ऐसा लगता है कि ये काम तो हमसे नहीं हुआ और पहले ही ये ख़राब हो गया है, हमसे गलती हो गई है, इसलिए अब इस काम को हम नहीं कर सकते। और ऐसा ही हमारे जो घर के छोटे बच्चे हैं, वो भी जब बढ़ रहे होते हैं तो ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करते हैं, तो उनसे भी गलतियां होती हैं और वो भी डरते हैं, सहम जाते हैं। तो हमें खुद भी ये सीखना है कि गलतियां इस बात का सबूत हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं और उन गलतियों से डरना नहीं है। गलतियां करते जाइए, तभी हम आगे बढ़ते जाएंगे और जो भी काम करना हम चाहते हैं उसमें हम परफेक्ट होंगे। और यही शिक्षा हमें अपने बच्चों को भी देनी है कि जो भी काम करने में उन्हें असफलता हासिल होती है या गलती हो जाती है एक बार, उस काम को दोबारा करने में हिचकिचाना नहीं है। गलतियां होती रहती हैं, तभी सुधार होता है ज़िंदगी में। श्रोताओ, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और मेरे साथ इस समय आप कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। और लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम में कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

श्रोतो 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, आज है 22 मई का दिन और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है वो मनाया जाता है। और ये दिन जो है वो पूरी दुनिया में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्या है इस दिन को मनाने के पीछे का उद्देश्य, कार्यक्रम में आगे आपको विस्तार से बताएंगे। फिलहाल चलते हैं, सुनते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

बाद यानी 9:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला यूं ही जारी रहेगा 9:30 पर। यूं ही बने रहिए 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने भाखड़ा बांध का दौरा कर बिजली उत्पादन के बुनियादी ढांचे की समीक्षा की। वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच उत्तरदायी जल प्रबंधन का किया आह्वान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, हर वर्ग के हित में किए जा रहे कार्यों के दम पर नगर निकाय चुनावों में कांग्रेस ने किया बेहतरीन प्रदर्शन। रोहड़ू नगर परिषद के लिए आज मतदान जारी, महिला कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है मतदान प्रक्रिया का संचालन। प्रदेश उच्च न्यायालय ने आउटसोर्स भर्तियों को युवाओं के वैधानिक अधिकारों का बताया हनन। प्रदेश के कई भागों में हल्की वर्षा से तापमान में मामूली गिरावट, भीषण गर्मी व लू से मिली कुछ राहत। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने बिलासपुर जिला में सतलुज नदी पर स्थित भाखड़ा बांध का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बिजली उत्पादन के बुनियादी ढांचे की समीक्षा की। उन्होंने बिजली उत्पादन मशीनरी का अवलोकन किया और इंजीनियरिंग व रखरखाव कर्मचारियों की तकनीकी विशेषज्ञता और समर्पण की सराहना की। राज्यपाल ने जल संरक्षण और इस कीमती प्राकृतिक संसाधन के उत्तरदायी प्रबंधन के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि वैश्विक ऊर्जा संकट से निपटने के लिए और ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए इसकी बेहद आवश्यकता है। राज्यपाल ने कहा कि कृषि और औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में इस बांध की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार हर वर्ग के हित में काम कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप नगर निकाय चुनावों में कांग्रेस ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी ने 25 शहरी निकायों में जीत दर्ज की है। उन्होंने भाजपा पर लोगों के हितों को अनदेखा करने का आरोप भी लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा केंद्र सरकार से प्रदेश के आपदा प्रभावितों को एक बीघा जमीन भी नहीं दिलवा पाई।
1: तो ये बीजेपी को हिमाचल के लोग वोट क्यों डाले? हमें इसलिए डाल रहे हैं कि हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी, शिक्षा के स्तर में हमने सुधार किया, हमने हेल्थ में सुधार किया। हम आज किसान को अगर गेहूँ पैदा करता 80 रुपये किलो गेहूँ खरीद रहे हैं, 80 रुपये किलो जौ खरीद रहे हैं, 50 रुपये किलो मक्की खरीद रहे हैं, 63 रुपये लीटर दूध खरीद रहे हैं। हम लोगों की रूरल इकोनॉमी को विकसित कर रहे हैं। टूरिज्म सेक्टर में हम एयरपोर्ट की एक्सपेंशन कर रहे हैं, हर जगह हेलीपोर्ट बना रहे हैं, सारी जगह हम लोगों ने कार्य अच्छा कर रहे हैं, तो लोग क्यों हराएंगे?
0: इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पंचायत और शहरी निकाय चुनावों के बीच आज राज्य मंत्रिमंडल की अहम बैठक बुलाई है। राज्य सचिवालय में सुबह 11 बजे आयोजित होने वाली इस बैठक में आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण चुनाव आयोग की पूर्व सहमति से ही जनहित और प्रशासनिक मामलों से जुड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे। बैठक में आम जनता से जुड़े और प्रशासनिक दृष्टि से जरूरी मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। शिमला जिला में रोहड़ू नगर परिषद के लिए आज मतदान हो रहा है। कुल 9 वार्डों के लिए मतदान आज सुबह 7 बजे से शुरू हुआ, जो दोपहर 3 बजे तक जारी रहेगा। मतदान के तुरंत बाद आज ही मतगणना होगी। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
2: विशेष बात यह है कि नगर परिषद रोहड़ू के सभी मतदान केंद्रों का संचालन इस बार पूर्ण रूप से महिला कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा, जो प्रदेश व देश स्तर पर एक अनूठी व प्रेरणादायी पहल है। इसके लिए सभी वार्डों में चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए 14 पोलिंग पार्टियों का गठन किया गया है, जिनमें 80 महिला कर्मचारी शामिल हैं। ये महिला कर्मचारी केवल मतदान प्रक्रिया तक ही सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि मतगणना की जिम्मेदारी भी निभाएंगी। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है। इस वर्ष दिवस का विषय वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करना है, जो व्यापक वैश्विक लक्ष्यों से स्थानीय स्तर पर व्यावहारिक कार्रवाई की ओर बदलाव को दर्शाता है।

0: दर्शाता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने एक सोशल मीडिया पर कहा है कि जैव विविधता की रक्षा करना न केवल एक वैश्विक प्रतिबद्धता है, बल्कि समुदायों, संस्थानों और सरकारों द्वारा साझा की जाने वाली एक स्थानीय जिम्मेदारी भी है। उन्होंने कहा कि इस दिन भारत अपने स्थानीय संरक्षण के नायकों को सम्मानित करता है जो अक्सर गुमनाम नायक होते हैं। उन्होंने कहा कि शहरीकरण में वृद्धि के बीच भारत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के माध्यम से प्रकृति अनुकूल शहरों को बढ़ावा दे रहा है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्डों व निगमों में बड़े पैमाने पर आउटसोर्स भर्तियों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने कहा कि खाली पदों को नियमित रूप से भरने के बजाय बैकडोर एंट्री के जरिए नियुक्तियां की जा रही हैं, जो युवाओं के वैधानिक अधिकारों का हनन और उनका शोषण है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य सचिव और प्रधान वित्त सचिव को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 16 जून को होगी। पर्यटन सीजन के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एलायंस एयर ने शिमला दिल्ली रूट पर सप्ताह के 7 दिन विमान सेवा संचालित करने का निर्णय लिया है। कंपनी की ओर से जारी नए शेड्यूल में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण शिमला एयरपोर्ट प्रबंधन को इसकी जानकारी दी गई है। अभी तक मंगलवार को इस रूट पर उड़ान सेवा उपलब्ध नहीं थी। नए शेड्यूल के अनुसार शिमला धर्मशाला रूट पर भी अब हफ्ते में 6 दिन यानी सोमवार से शनिवार तक रोजाना फ्लाइट संचालित होगी। पहले इस रूट पर रविवार और मंगलवार को उड़ान सेवा बंद रहती थी। वीकेंड पर बड़ी संख्या में सैलानी शिमला पहुंचते हैं, ऐसे में रविवार को भी दिल्ली शिमला दिल्ली रूट पर विमान सेवा संचालित होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। राजधानी शिमला सहित चंबा, कांगड़ा, कुल्लू व लाहौल स्पीति में हल्की बूंदाबांदी होने से तापमान में हल्की गिरावट आई है। मौसम के इस बदले मिजाज से लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत मिली है। इस बीच मौसम विभाग के अनुसार आज से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके चलते कई भागों में बारिश व अंधड़ की संभावना है। विभाग ने किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर अन्य जिलों में आज और कल आंधी, बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। केंद्र सरकार द्वारा देश में सर्वाइकल कैंसर को रोकने और महिलाओं के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए निशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत 14 वर्ष की किशोरियों को ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का टीका निशुल्क लगाया जा रहा है। हमारे चंबा जिला संवाददाता ने बताया कि जिले में भी स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण अभियान तेज कर दिया है।
1: स्वास्थ्य विभाग चंबा को पहले चरण में 4500 बेटियों को HPV वैक्सीन लगाने का लक्ष्य दिया गया था और ये लक्ष्य समाप्ति की ओर पहुंच चुका है। रोजाना ये वैक्सीन फील्ड स्तर पर और अस्पतालों में बेटियों को लगाई जा रही है। इस टीकाकरण अभियान के तहत अभिभावकों को अपनी बेटियों का रजिस्ट्रेशन UWIN पोर्टल पर करना होगा, जिससे टीकाकरण प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जा सके। इस टीकाकरण को लेकर फैली भ्रांतियों पर विराम लगाते हुए स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि ये टीका स्वास्थ्य के लिहाज से बिल्कुल सुरक्षित है, इसलिए अभिभावक अपनी बेटियों को समय रहते ये टीका लगवाएं ताकि भविष्य में इस जानलेवा बीमारी से बचाव संभव हो सके। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
0: और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। मौसम से जुड़ी खबर को आज लगभग सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, हिमाचल के 6 जिलों में लू का प्रकोप, आज और कल कई क्षेत्रों में बारिश व अंधड़ का अलर्ट। हिमाचल दस्तक की सुर्खी है, उफ ये गर्मी, 5 जिलों में लू चलने से छूटे पसीने। जबकि दिव्य हिमाचल के शब्द हैं, तपते हिमाचल पर आज गिरेंगी फुहारें। दैनिक जागरण की एक खबर है, पंचायत चुनाव से पहले बिलासपुर में 50 बैलेट पेपर गायब। दैनिक भास्कर ने हाईकोर्ट के हवाले से लिखा है, बद्दी नालागढ़ रोड निर्माण में हो रही देरी के बारे में जवाब दें NHAI। देश के बेस्ट 100 DM में हिमाचल के 5 DC को मिली जगह, पंजाब केसरी की एक खबर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने भाखड़ा बांध का दौरा कर बिजली उत्पादन के बुनियादी ढांचे की समीक्षा की। वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच उत्तरदायी जल प्रबंधन का किया आह्वान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, हर वर्ग के हित में किए जा रहे कार्यों के दम पर नगर निकाय चुनावों में कांग्रेस ने किया बेहतरीन प्रदर्शन। रोहडू नगर परिषद के लिए आज मतदान जारी, महिला कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है मतदान प्रक्रिया का संचालन। प्रदेश उच्च न्यायालय ने आउटसोर्स भर्तियों को युवाओं के वैधानिक अधिकारों का हनन बताया। और प्रदेश के कई भागों में हल्की वर्षा से तापमान में मामूली गिरावट, भीषण गर्मी व लू से मिली कुछ राहत। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन
2: श्रोतो 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और कार्यक्रम में समय है छोटे से अंतराल का, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो गुंजन, गूंज अपने पन की।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं Apex+Point ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: श्रोताओं, फिर से स्वागत है सभी श्रोताओं का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। और कार्यक्रम में अब विज्ञापन के बाद श्रोताओं सीधा आपको लिए चलते हैं मनोरंजन की ओर। सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तक्षक फिल्म का गीत है श्रोताओं, आशा भोंसले और साथियों की आवाज़ में।

श्रोताओ, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओ, आज है 22 मई का दिन और क्या कुछ खास रहता है आज के दिन, बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आज के दिन जो है वो मनाया जाता है। श्रोताओं, इस दिन की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2000 में की थी और इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। 22 मई 1992 को नैरोबी में जैव विविधता पर कन्वेंशन के पार्ट को स्वीकार किया गया था। इसी याद में ये विशेष तारीख जो है वो चुनी गई। इससे पहले इसे दिसंबर के आखिरी दिनों में मनाया जाता था। और श्रोताओं, हर साल ये दिन जो है खास थीम के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष साल 2026 का थीम है वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करना। श्रोताओं, आज के दिन के बारे में यानी जैव विविधता दिवस के बारे में कार्यक्रम में हम आगे और भी बातचीत करेंगे। फिलहाल चलते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, कार्यक्रम में अब समय है आपको इतिहास की ओर ले जाने का। आइए चलते हैं इतिहास की ओर और जानते हैं क्या कुछ खास घटा था आज के दिन। श्रोताओं, 22 मई 1545 कालिंजर जिले की घेराबंदी के दौरान एक बारूद विस्फोट में सूरी साम्राज्य के संस्थापक शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी। मई 1906 अमेरिका के राइट बंधु ने अपनी फ्लाइंग मशीन के लिए आधिकारिक पेटेंट हासिल किया था। 22 मई 1972 सेलोन ने अपना नाम बदलकर श्रीलंका रखा और आधिकारिक तौर पर एक गणतंत्र राष्ट्र बना। इसी वर्ष पाकिस्तान ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता छोड़ दी थी। 22 मई 1984 बछेंद्री पाल ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक कदम रखा और एवरेस्ट फतेह करने वाली भारत की पहली महिला पर्वतारोही बनी। 22 मई 1990 उत्तरी यमन और दक्षिणी यमन का विलय हुआ जिससे आधुनिक यमन गणराज्य का उदय हुआ। 22 मई 2010 एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक विमान मैंगलोर हवाई अड्डे पर उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था जिसमें सवार 158 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 22 ये थी कुछ खास घटनाएं जो आज के दिन 22 मई के दिन इतिहास में दर्ज हैं। आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब आइए चलते हैं मनोरंजन की ओर, सुनते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत फिल्म चाइना गेट से।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं श्रोताओ, इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सुन रहे हैं। अब एक जानकारी साझा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर छोटा शिमला स्थित सद्भावना चौक में आयोजित आतंकवाद विरोधी दिवस कार्यक्रम में उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में आतंकवाद के विरुद्ध लड़ते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपने दो प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को खोया है। राजीव गांधी के अतुलनीय योगदान को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान देश में सूचना प्रौद्योगिकी के युग का सूत्रपात किया। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 33% आरक्षण भी प्रदान किया। श्रोताओं, ये थी जानकारी। आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। और लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

श्रोतो 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। और कार्यक्रम में अब फिर से समय हुआ है छोटे से अंतराल का। यूं ही बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो गुंजन, गूंज अपनेपन की।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं Apex+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: श्रोतो, विज्ञापन के बाद फिर से स्वागत है सभी का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। कार्यक्रम में आनंद उठाइए कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत का।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। और फिर से रुख करते हैं जानकारियों की। और लोक निर्माण विभाग के वक्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार ने 20 मई 2026 से सर्किट हाउस हमीरपुर स्थित 21 बेड वाली डॉर्मेट्री को HPPWD ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म में सम्मिलित कर दिया है। इसी सुविधा के लिए हिमाचली निवासियों से प्रति बेड 100 रुपये तथा गैर हिमाचली निवासियों के लिए प्रति बेड 200 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि इस सुविधा के शुरू होने से प्रतियोगी परीक्षाओं एवं अन्य शैक्षणिक उद्देश्य से आने वाले विद्यार्थी विशेष रूप से लाभान्वित होंगे। विद्यार्थी हिम अतिथि होटल के माध्यम से ऑनलाइन बुकिंग कर ठहरने के लिए सस्ती एवं सुविधाजनक आवासीय सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने बताया कि लोगों और पर्यटकों को मई 2025 से 50% अग्रिम भुगतान के आधार पर विश्राम गृहों की ऑनलाइन बुकिंग सुविधा मिल रही है। ये पहल सरकारी आवासीय सुविधाओं को आमजन के लिए अधिक सुलभ, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस सुविधा के शुरू होने से पर्यटकों, आमजन तथा विद्यार्थियों के लिए विश्राम गृहों एवं सर्किट हाउस की उपलब्धता एवं पहुँच में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इस पहल के परिणाम स्वरूप इन सुविधाओं की अधिभोग दर तथा सरकारी राजस्व में वृद्धि दर्ज की गई है। प्रदेश सरकार राज्य में डिजिटल नवाचार के माध्यम से नागरिक केंद्रित सेवाओं को सुदृढ़ करने एवं जन सुविधाओं में निरंतर सुधार की दिशा में कार्य कर रही है। श्रोताओं, ये थी जानकारी। 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम

श्रोताओं, 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं आज के खास दिन की। जी हां श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आज दुनिया भर में मनाया जाता है। और क्या है इस दिन का महत्व? जैव विविधता हमारे जीवन और पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए बेहद ज़रूरी है। ये मिट्टी के निर्माण, जल संरक्षण और जलवायु को नियंत्रित रखने में मदद करती है। इंसानी आहार का 80% से अधिक हिस्सा विभिन्न पौधों से ही मिलता है। विकासशील देशों की लगभग 80% ग्रामीण लोग बुनियादी स्वास्थ्य के लिए पारंपरिक औषधियों और पौधों पर ही निर्भर हैं। श्रोताओं, वर्तमान समय या वर्तमान संकट की बात करें तो मानवीय गतिविधियों जैसे शहरीकरण, प्रदूषण और वनों की कटाई के कारण आज पृथ्वी का 3/4 जमीनी हिस्सा और लगभग 66% समुद्री पर्यावरण बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 10 लाख पशु और वनस्पति प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं, जिसे बचाना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सुन रहे हैं। और अब चलते हैं कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत की ओर।

14.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं। गुड मॉर्निंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। फिर से रुख करते हैं जानकारियों की ओर। हिमाचल के हरित आवरण में वृद्धि के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने महत्वाकांक्षी मिशन 32% शुरू किया है। इस मिशन का उद्देश्य वर्ष 2030 तक हिमाचल प्रदेश के हरित आवरण में 32% तक विस्तार करना है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दूरदर्शी पहल के अनुरूप वन विभाग द्वारा राज्य की पारिस्थितिकी को सुदृढ़ करने के लिए व्यापक रणनीतियां तैयार कर कार्य किए जा रहे हैं। सरकार की बहुआयामी नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने और निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक समग्र कार्य योजना तैयार की गई है। हिमाचल की जैव विविधता और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने की दिशा में सरकार प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। वर्तमान में राज्य का वन क्षेत्र 29.5% है, जिसे वर्ष 2030 तक बढ़ाकर 32% करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। श्रोताओ, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला एंजॉय कर रहे हैं इस समय आप। और लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत, और ये गीत हमने लिया है जब वी मेट फिल्म से।

91 दशमलव 2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, आपकी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, कार्यक्रम में फिर से समय हो गया है छोटे से अंतराल का, यूं ही बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो गुंजन, गूंज अपनेपन की।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: अंतराल के बाद सभी श्रोताओं का स्वागत है फिर से कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। श्रोताओं, इस समय आप हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। बारिश की रिमझिम फुहारों ने आज सुबह सुबह का जो मौसम है उसे सुहावना बना दिया है श्रोताओं, लेकिन गर्मियों के दिन हैं और गर्मियों के दिनों में हमें अपना खास ख्याल रखना है। जी हाँ, पानी की कमी ना हो कहीं, यानी हमारे शरीर में अगर पानी की कमी होगी तो डिहाइड्रेशन होने से जो है वो छोटी छोटी बीमारियाँ, सिर दर्द, सिर चकराना जैसी बीमारियाँ, और कई बार अगर हम इन्हें नज़रअंदाज करते हैं तो और भी इससे ज़्यादा खतरा जो है वो बन सकता है दोस्तों। इसलिए समय समय पर पानी पीते रहें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें और पानी के साथ साथ जो विकल्प होते हैं जैसे नींबू पानी, जो कि सबसे अच्छा विकल्प होता है, सेहत की दृष्टि से भी अच्छा होता है और इसमें जो कहते हैं कोल्ड ड्रिंक्स के जो दुष्प्रभाव हो सकते हैं उस तरह का भी कुछ नहीं होता। तो नींबू पानी पिएं खूब सारा, और प्राकृतिक फल आजकल मार्केट में खूब सारे हैं, वाटरमेलन है, खीरा भी काट के खाया जा सकता है, या खीरे को भी कई तरह से हम जूसेस में जो है वो बदल करके उसका भी सेवन कर सकते हैं। तो जो भी खाएं, जो भी पिएं, उसमें भरपूर पानी की मात्रा हो ताकि आप फ्रेश और तरोताज़ा रहें। श्रोताओ, 91.2 MHz पर आप हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, और अब आनंद उठाइए कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत का।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं फिर से रुख करते हैं जानकारियों की ओर। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी शिल्पी बेगटा ने आतंकवाद विरोधी दिवस के अवसर पर उपायुक्त कार्यालय परिसर में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आतंकवाद और हिंसा के विरुद्ध एकजुट होकर कार्य करने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर सभी उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिंसा का विरोध करने का संकल्प लिया। एसडीएम शिल्पी बेगटा ने कहा कि आतंकवाद समाज और मानवता के लिए एक गंभीर चुनौती है तथा इसके प्रति जागरूकता और एकजुटता अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि युवाओं को आतंकवाद और हिंसा जैसी प्रवृत्तियों से दूर रखने तथा समाज में शांति, सद्भाव और भाईचारे की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता है। इस अवसर पर उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सामाजिक सौहार्द, आपसी समझ तथा मानव जीवन मूल्यों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहने का संकल्प लिया। श्रोताओं ये थी जानकारी 91.2 मेगाहर्ट्ज पर। आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सुन रहे हैं। और अब चलते हैं कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत की ओर।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ और कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग धर्मशाला। दोस्तों आज के दिन यानी 22 मई के दिन इंटरनेशनल डे फॉर बायोडायवर्सिटी मना रहे हैं सभी और जैविक विविधता का अंतर्राष्ट्रीय ये जो दिवस है ये हर साल आज ही के दिन यानी 22 मई को मनाया जाता है। पृथ्वी पर जीवन के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित ये दिन जैव विविधता की रक्षा और मानव कल्याण को बनाए रखने वाले पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण की आवश्यकता की वैश्विक याद दिलाता है। इस दिवस का समन्वय जैविक संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनी साधन जैविक विविधता पर सम्मेलन द्वारा किया जाता है। श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ और अब गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, अब आज के इस कार्यक्रम में हम आ पहुँचे हैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर और सुनवाने जा रहे हैं श्रोताओं आपको कार्यक्रम का अंतिम गीत। इसी वादे के साथ आपसे बहुत जल्द फिर से होगी मुलाकात। आप यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अब एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का अंतिम गीत।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं APEX+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: अप्पा, ये चींटी खाना कैसे चबाती है?
2: सुबह सुबह शुरू।
1: अप्पा, ये हवा दिखती क्यों नहीं?
2: दिखती है बेटा, कभी कभी दिखती है।
1: ये पहिया चलता कैसे है? माँ को आपकी तरह मुझे क्यों नहीं होती? अप्पा, दिन में तारे क्यों नहीं दिखते? अप्पा अप्पा बोलो ना।
2: आके बोलता हूँ पक्का।
1: अप्पा अप्पा, ये पेड़ की
2: इधर सुबह शाम सवाल पे सवाल।
3: अरे, इसमें इतनी जिज्ञासा है तो इसे स्कूल क्यों नहीं भेजते?
4: गरीब आदमी है साहब, कहाँ से पढ़ाएगा?
3: इसे सरकारी स्कूल भेजो ना, अब तो शिक्षा है हर बच्चे का अधिकार।
1: अप्पा, अब तो मेरा पढ़ना पक्का।
3: हाँ पक्का।
1: अप्पा, ये मिर्ची इतनी तीखी क्यों होती है?
5: कल स्कूल में मास्टर जी से पूछ लेना। शाम भर चाहिए तो।
6: शिक्षा है अब हर बच्चे का अधिकार, अब पढ़ना पक्का।

0: 这是
1: 张开呢
0: सड़क पर ट्रैफिक जाम हो या हो खाली, हर पल चौकन्ना रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसका आपको पहले से आभास ही ना हो। अभी यह तो सड़क खाली लग रही है, पर आपको कहां पता कि छुट्टी का टाइम होने वाला है। इसलिए जहां एक तरफ मैं स्कूल से विनती करूंगा कि छुट्टी के टाइम बच्चों के सुरक्षित सड़क पे निकलने का प्रबंध करें, वहीं आपसे भी विनती करूंगा कि आप इस सड़क पे निकले तो अपना सारा ध्यान यहां केंद्रित करें और गति सीमा में चलिए, ताकि कभी कुछ अचानक हो जाए तो आप संभाल पाए उसे।
2: हेलो,
0: हे, तुम खबाए
2: जैसे चौकन्ना रहिए।
0: याद रखना, यहाँ हर पल चौकन्ना है रहना, ये सड़क है भैया, संभल के चलना।
3: हर घर में छुपा एक कुरुक्षेत्र आज भी है, क्योंकि गलत को गलत कहने वाले मिलते कहाँ हैं? कहीं कोई अर्जुन सा सच्चाई के साथ भी अकेला रह जाता है, कहीं कोई कर्ण सा वफादारी में अंधा हो जाता है, और कौरवों सा कोई अपना हो के भी बेगाना हो जाता है। यहाँ हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, पर गलती मानकर झुकना किसी को आता कहाँ है? लोग बोल देते हैं हमने क्या गलत किया, पर गलत होता देखना भी अपराध है, ये समझ किसी को आता कहाँ है? कृष्ण आते हैं समझाने आज भी, बहुत लोगों और घटनाओं के रूप में, पर उनकी लीलाओं को कोई समझ पाता कहाँ है? इसलिए अंत में भगवान ने भी महाभारत होने दी, क्योंकि समझाने से इंसान समझता कहाँ है।
4: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
5: मामा, नो शेयरिंग।
4: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
5: कौन था?
4: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
5: और आप मान गए? जब हमने पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
4: स्मार्ट गर्ल।
5: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे, ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।

वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन

रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो दो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने फोन किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 MHz पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो दो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

0: आदमी जिज्ञासा है तो इसे स्कूल क्यों नहीं भेजते?
1: गरीब आदमी है साहब, कहाँ से पढ़ाएगा?
0: इसे सरकारी स्कूल भेजो ना, अब तो शिक्षा है हर बच्चे का अधिकार।
2: अप्पा, अब तो मेरा पढ़ना पक्का।
1: हाँ पक्का।
2: अप्पा, ये मिर्ची इतनी तीखी क्यों होती है?
3: कल स्कूल में मास्टर जी से पूछ लेना। सांभर चाहिए तो।
4: शिक्षा है अब हर बच्चे का अधिकार, अब पढ़ना पक्का।

0: Jesse? सड़क पर ट्रैफिक जाम हो या हो खाली, हर पल चौकन्ना रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसका आपको पहले से आभास ही ना हो। अभी तो सड़क खाली लग रही है, पर आपको कहां पता कि छुट्टी का टाइम होने वाला है। इसलिए जहां एक तरफ मैं स्कूल से विनती करूंगा कि छुट्टी के टाइम बच्चों के सुरक्षित सड़क पे निकलने का प्रबंध करें, वहीं आपसे भी विनती करूंगा कि आप इस सड़क पे निकले तो अपना सारा ध्यान यहां केंद्रित करें और गति सीमा में चलिए, ताकि कभी कुछ अचानक हो जाए तो आप संभाल पाए उसे।
1: हेलो,
0: hey, तुम खबर है?
1: जैसे चौकन्ना रहिए।
0: याद रखना, यहाँ हर पल चौकन्ना है रहना, ये सड़क है भैया, संभल के चलना।
2: हर घर में छुपा एक कुरुक्षेत्र आज भी है, क्योंकि गलत को गलत कहने वाले मिलते कहाँ हैं। कहीं कोई अर्जुन सा सच्चाई के साथ भी अकेला रह जाता है, कहीं कोई कर्ण सा वफादारी में अंधा हो जाता है, और कौरवों सा कोई अपना हो के भी बेगाना हो जाता है। यहाँ हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, पर गलती मानकर झुकना किसी को आता कहाँ है। लोग बोल देते हैं हमने क्या गलत किया, पर गलत होता देखना भी अपराध है, ये समझ किसी को आता कहाँ है। कृष्ण आते हैं समझाने आज भी, बहुत लोगों और घटनाओं के रूप में, पर उनकी लीलाओं को कोई समझ पाता कहाँ है। इसलिए अंत में भगवान ने भी महाभारत होने दी, क्योंकि समझाने से इंसान समझता कहाँ है।
3: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
4: मामा, नो शेयरिंग।
3: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
4: कौन था?
3: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
4: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
3: स्मार्ट गर्ल।
4: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे, ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
3: याद है ना, नो शेयरिंग।

0: आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
1: सुनो एक बात बताओ, शादी से पहले वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद वाली?
2: शादी से पहले वाली
1: हाँ?
2: भी कोई जिंदगी थी, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करते रहो। जिंदगी तो शादी के बाद होती है, बीवी के साथ रोटियां बनवाओ, खाना बनवाओ।

0: दिन धर्मशाला से एक बार फिर से हम हाजिर हो गए हैं आप सभी के लिए एक बहुत ही खास कार्यक्रम लेकर। जी दोस्तों, आप सभी का अपना कार्यक्रम मेरे हौसलों की उड़ान।
1: और दोस्तों, हम मिलकर भरेंगे अपने इस हौसलों की उड़ान को आप सबके साथ मिलके। मैं हूँ आपके साथ रूमा, और मेरा साथ दे रही है इस उड़ान को भरने में
0: रुचिका। जी दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस खास कार्यक्रम में हम बात करते हैं अपने अधिकारों की, खासकर बच्चों और महिलाओं के अधिकारों की। तो आज के कार्यक्रम में क्या खास बातचीत करने वाले हैं वो तो आप सभी जान जाएंगे, पर उसके लिए आप सभी को जुड़े रहना है अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और
1: रूमा के साथ।
0: जी दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले तो कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी का। और रूमा जी, अब आप बताइए, दोस्त तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे, क्योंकि बदलते मौसम के साथ अपनी सेहत का ध्यान रखना जो है बहुत जरूरी है, और आप सभी बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। तो आप बताइए कि आप किस तरह से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं।
1: रुचिका जी, हम अक्सर लापरवाह हो जाते हैं
0: जी,
1: लेकिन कहते हैं ना, जब माँ का हाथ सर पे हो तो फिर किसी चीज के डरने की जरूरत नहीं है। भगवान स्वयं माँ के रूप में हमारे साथ रहते हैं और हमारी देखभाल कर रहे हैं, हमारी हर तरह की जितनी भी प्रॉब्लम्स जीवन में आती हैं उनको सॉल्व करने के लिए इतना अच्छा समाधान है, उसका नाम है माँ। तो इस बदलते मौसम में माँ की नसीहतों को पालन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और श्रोताओं के साथ जुड़ने के ये जो मौके मिल रहे हैं, ये भी मुझे लगता है माँ का ही आशीर्वाद है।
0: जी बिल्कुल, जहाँ माँ का आशीर्वाद हो वहाँ फिर किस बात की कमी है दोस्तों, क्योंकि माँ जो है ना अपने बच्चों के लिए सबसे पहले सोचते हैं। अपने बारे में वो बाद में सोचेंगे, पर अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए वो सबसे पहले, सबसे आगे खड़े मिलेंगे आपको। जैसे अब हम मौसम की बात कर रहे हैं, तो उन्हें जैसे ही पता चलेगा कि मौसम बदलने का समय आ गया है, तो वो पहले से ही तैयारियां शुरू कर देती हैं कि बच्चों को कैसे सेफ रखना है, कैसे इस मौसम में बचा कर रखना है, क्योंकि बदलते मौसम के साथ बहुत सारी बीमारियां भी घर आती हैं, और उन्हें दस्तक देने से कैसे रोकना है ये माँ एक भली भांति से जानती है।
1: कितना अच्छा लगता है ना रुचिका, जब घर में हम वापस जाते हैं काम से थके हारे, तो माँ अपने सारे दिन भर की थकान भूल के हमारी जरूरतों को पूरा करने में लग जाती हैं। और जब कभी हम घर में जाएं और माँ हमें ना दिखाई दे, तो कितना खालीपन, कितना सूनापन उस घर में दिखता
0: बिल्कुल
1: है।
0: एक बार बस चेहरा दिख जाए, सारी थकान दूर हो जाती है, और चेहरे पे एक अलग सी खुशी जो है वो छलकती है, क्योंकि माँ के बिना ये संसार ही अधूरा है दोस्तों।
1: पूरी दिनचर्या हमारी माँ के ऊपर निर्भर करती है। हम इतने बड़े हो गए हैं तब भी हम अपनी माँ का सहारा ढूंढते हैं हर चीज में।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन कभी कभी मुझे लगता है, क्या हम अपनी माँ के बारे में सोचते हैं कि वो कितना सहती है हमारे लिए, कितनी तकलीफें हमारे लिए झेल के हमें इस दुनिया में लाई, और उसके बाद भी हमें सहेजने में, हमें संवारने में वो अपना पूरा वक्त लगा देती है, लेकिन खुद के ऊपर उतना ध्यान नहीं दे पाती जितना उन्हें देना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा रूमा जी ने दोस्तों, क्योंकि अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि जो हमारा ध्यान रखने में अपने आप को इतना व्यस्त कर लेते हैं, अपनी खाने पीने को भूल जाते हैं, अपनी दिनचर्या की जो रूटीन है, खुद की सेहत को वो भूल जाते हैं ध्यान रखने, और हमारे लिए वो कुछ भी कर जाती हैं। फिर चाहे किसी से लड़ने की बात हो, चाहे जहाँ पे उन्हें लगेगा कि ये मेरे बच्चों का अधिकार है, तो वो आपको डट कर खड़े वहाँ पर मिलेंगे। तो बहुत खास बात है ये। तो
1: वैसे भी रुचिका, मुझे तो जब मेरी माँ का हाथ सर पे घूम जाता है ना, तो दुनिया भर की चिंताएं खत्म हो जाती हैं, कोई डर नहीं रहता, और बिल्कुल ऐसे लगता है कि जो महिला सशक्तिकरण में जो सबसे अहम रोल है ना, वो एक माँ का रहता है
0: जी।
1: और मैं सच मानूँ तो मैं माँ के साए में खुद को बहुत सशक्त मानती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे ऊपर कोई भी आंच आने से पहले वो ढाल बन के खड़ी हो जाएगी।
0: बिल्कुल, क्योंकि बच्चों से बढ़कर माँ के लिए कुछ भी नहीं होता है।
1: और तो फिर मुझे लगता है कि कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले क्यों ना माँ के लिए एक प्यारा सा गीत अपने श्रोताओं को सुनाया जाए।
0: जी जरूर दोस्तों, क्योंकि बातचीत तो हम शुरू कर देते हैं ना, पर आप सभी जानते हैं कि बातचीत तो हमारी बहुत लंबी चलने वाली है, पर हम आपका ध्यान जो है वो नहीं भूलेंगे बिल्कुल भी।
1: बिल्कुल।
0: तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक प्यारे से इस गीत के साथ, और ये सभी उन प्यारी प्यारी माओं के लिए, बच्चों की तरफ से, हमारी तरफ से।

0: बहुत ही प्यारा गीत सुनाया है रुचिका आपने और सच में मन प्रसन्न हो गया है। तो रुचिका एक बात मैं ये करना चाह रही थी, अब माँ की बात तो कर रहे हैं लेकिन हमारी माँ ने हमें इस दुनिया में लाने के लिए कितनी पीड़ाएं कितने कष्ट झेले हैं, ये जग जाहिर है। जब हम खुद माँ बनी तो हमने देखा है कि और सच कहूँ तो माँ की अहमियत उसी दिन अच्छे से समझ आई थी जब मैंने खुद अपने बच्चे को जन्म दिया, अपने बच्चे को अपनी गोद में उठाया, तब मुझे अपनी माँ का वो पूरा स्वरूप अपने सामने आ गया था कि मेरी माँ ने कितने कष्ट झेले होंगे। लेकिन रुचिका माँ बनना मुझे नहीं लगता बहुत आसान है, कितनी तकलीफ एक महिला एक बच्चे को जीवन में लाने के लिए झेलती है और ये सब जग जाहिर है, सभी को पता है। लेकिन क्या जब हमें बच्चे को जन्म देने के लिए तैयारी कर रही है, अब गर्भावस्था के दौरान ये सब चीजें झेल रही है, तो क्या माँ को भी वो सुकून मिल पाता है या वो देखभाल मिल पाती है जो एक माँ अपने बच्चे को देती है?
1: बिल्कुल सही कहा रूमा जी आपने, क्योंकि अक्सर मैंने पहले भी कहा ना कि हम भूल जाते हैं, छोटी छोटी बातें हम भूल जाते हैं, तो एक माँ जो है वो कभी नहीं भूलते कि मेरे बच्चों को क्या जरूरत है, मेरे परिवार को क्या जरूरत है। तो वहां पर ये हमारा दायित्व बनता है, और खासकर हम बात कर रहे हैं गर्भावस्था की, तो आप अपने दोस्तों को बता दीजिए पहले तो कि आज हम बात किस बारे में करने वाले हैं।
0: हम अपने दोस्तों को बताएंगे बिल्कुल, माँ बनना अपने आप में आएंगे बिल्कुल, माँ बनना अपने आप में बहुत ही जोखिम भरा काम है। एक महिला बहुत सारी शारीरिक बदलाव के साथ साथ बहुत सारी मानसिक तकलीफें भी झेलती है और शारीरिक पीड़ा भी झेलती है और अपने बच्चे को जन्म देती है, और एक माँ के ऊपर ये दायित्व भी रहता है कि वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे। लेकिन एक माँ जब अपने बच्चे को दुनिया में लाने के लिए पूरी तरह से तैयार होती है तो उसको भी एक स्पेशल देखभाल की जरूरत होती है। एक महिला का अधिकार है कि उसे गर्भावस्था के दौरान जो उसके विशेष अधिकार हैं उसको दिए जाएं, उसकी पूरी तरह से देखभाल की जाए। तो रुचिका जी आज का हमारा विषय यही है कि गर्भावस्था के दौरान या बच्चे को जन्म देने के बाद महिलाओं के क्या अधिकार हैं और उन अधिकारों की हम सब कैसे मिलके रक्षा कर सकते हैं।
1: जी
0: वैसे भी आपको पता है रुचिका जी, एक जो माँ होती है वो बच्चे के लिए बहुत ही सेंसिटिव रोल होता है उसका, बहुत ही प्रोटेक्टिव भी होती है। तो गर्भावस्था के दौरान भी अगर हम अपने बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उस माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो एक बहुत ही स्वस्थ शिशु को एक माँ जन्म दे पाएगी और उसका अपना स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। क्योंकि वैसे भी रुचिका जी आपको पता है सिर्फ जन्म देने के बाद ही माँ का रोल खत्म नहीं हो जाता है,
1: जी बिल्कुल,
0: माँ की जिम्मेदारियां बच्चे को जन्म देने के बाद और भी बढ़ जाती हैं।

0: उसको संभालना है, उसको फीडिंग करानी है, उसको स्वस्थ भी रखना है, साफ सुथरा भी रखना है, इतने सारे काम होते हैं। और जब प्रसव के बाद उसके शरीर में कमजोरी भी आ जाती है, बहुत सारी दुर्बलताएं आती हैं कि अकेली माँ उस बच्चे को नहीं संभाल पाती है, और घर में हमारी जो बहनें हैं, माएँ हैं, वो उस माँ की मदद करती हैं
1: जी।
0: लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, बहुत सारी महिलाओं को उनके गर्भावस्था के जो दौरान जो अधिकार है उनका पता नहीं होता है। तो क्यों ना आज हम इसी विषय पे बात करते हुए अपने बहनों को भी जागरूक करें, अगर कभी गर्भावस्था के दौरान उन्हें किसी प्रकार की समस्या आती है तो उन समस्याओं से वो कैसे निपट सकती हैं।
1: जी बिल्कुल, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम अपने बारे में भूल जाते हैं ना दोस्तों, तो उसके लिए जागरूक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाकी सभी बातें बाद में हैं, सबसे पहले जो है हमारे लिए अपना आप है। क्योंकि हम अपने आप को स्वस्थ रखेंगे तभी हम अपने परिवार को स्वस्थ रख पाएंगे, और कहीं ना कहीं अगर हम अपने आप को ही अस्वस्थ कर लेंगे इन सभी बातों के चलते, तो हम परिवार को भी स्वस्थ नहीं रख पाएंगे। तो क्या क्या इस दौरान, जैसे कि रूमा जी ने बताया कि प्रसव के दौरान या फिर गर्भावस्था के दौरान जो है महिलाओं के क्या क्या अधिकार रहते हैं, उन अधिकारों के बारे में जानने के लिए दोस्तों आज हम आप सभी के साथ जुड़े हैं। तो आज हम वही बातचीत करने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से अधिकार हैं जिससे आप अपनी रक्षा कर सकते हैं, या आप उन अधिकारों का लाभ जो है इस अवस्था में ले सकते हैं। तो ये जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और
0: रूमा के
1: जी, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं दोस्तों मेरे हौसलों की उड़ान।
0: सबसे पहले तो रुचिका जी, महिला के खान पान पे हमें ध्यान देने की बहुत जरूरत है
1: जी।
0: और इस संदर्भ में आपको पता है हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी नीति बना रखी है, जब भी गांव में किसी भी महिला की प्रेगनेंसी का पता चलता है तो आशा वर्कर के माध्यम से उसका पंजीकरण कर लिया जाता है
1: जी।
0: और साथ के नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र में उस महिला के लिए पौष्टिक आहार जो है वो उसको दिलाया जाता है, समय समय पर उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। आशा वर्कर जो है वो उस महिला के घर में जाती हैं, समय समय पर उसको टीकाकरण हुआ है कि नहीं, उसको कैल्शियम आयरन या जो भी जरूरी उसको डॉक्टर ने जो दवाइयाँ दे रखी हैं। कई बार आपने देखा होगा बहुत सारी महिलाएं शारीरिक रूप से कमजोर भी होती हैं, तो डॉक्टरी परीक्षण के दौरान अगर उनको किसी हेल्थ सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है तो आशा वर्कर आके समय समय पर चेक करती हैं कि उनको वो सप्लीमेंट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, उनका टीकाकरण समय पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। और ये एक सबसे बड़ी जरूरत भी है, आपने देखा होगा जब भी कोई महिला गर्भवती होती है तो उसका टीकाकरण का शेड्यूल जो है वो सिविल हॉस्पिटल में या किसी भी पास के डिस्पेंसरी में, जो भी नजदीक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे उसका पंजीकरण के साथ ही उसका टीकाकरण भी शुरू हो जाता है। और रुचिका, ये टीकाकरण बहुत जरूरी है माँ और बच्चे के स्वस्थ, जो बच्चा गर्भ में पड़ रहा है उसकी स्वस्थ ग्रोथ के लिए।
1: बिल्कुल, और आपने जैसे कि कहा रूमा जी कि महिलाओं को आशा वर्कर के द्वारा जो है घर घर ये सुविधा दी जाती है, तो ये हम सभी को जानना बहुत, क्योंकि कई बार क्या होता है कि महिलाओं को जानकारी नहीं होती है इस बात की, और हो सकता है कि कोई ऐसे प्लेस पे है जहाँ पे वो गर्भावस्था में दूर नहीं जा सकते हैं, या उन्हें जाने में दिक्कत है और उन्हें इस बारे में जानकारी भी नहीं है ज्यादा, तो आशा वर्कर अगर उन्हें मना कर दे कि नहीं आपको इधर ही आना पड़ेगा, और वो ये नहीं जानते कि ये हमारा अधिकार है कि हमें ये फैसिलिटी जो है वो मिलनी चाहिए, तो वहाँ पर वो महिलाएं आवाज नहीं उठा पाती हैं।
0: बिल्कुल, और आशा वर्कर के माध्यम से, और जो आशा वर्कर है हर एक गांव में, जो हमारा 5 या 6 आशा वर्कर्स रहती हैं पंचायत की जनसंख्या के हिसाब से, और हर एक आशा वर्कर बहुत ही तन्मयता के साथ और जुड़ाव के साथ इस काम को अंजाम भी दे रही हैं। समय समय पर वो महिलाओं को जो भी स्वास्थ्य विभाग से निर्देश आते हैं उनकी अनुपालना भी करती हैं वो, और उनका मदद कर रही हैं। तो अगर कोई भी महिला हमारे घर में, अगर कोई भी महिला गर्भवती है तो उसको आशा वर्कर के माध्यम से या नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र में भी अपना पंजीकरण जरूर करवाना है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग जो है वो उनको स्वास्थ्य से जरूरी जानकारियां समय समय पर उपलब्ध करवा रहा है, साथ ही जो जिला कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से और इनको पोषण अभियान के साथ जोड़ा गया है, हर एक महिला को उचित जो डाइट एक गर्भवती महिला को मिलनी चाहिए वो भी आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से उनको मिल रही है। तो ये इस सुविधा का लाभ हर महिला को लेना चाहिए, क्योंकि एक स्वस्थ और पूरक आहार जब महिला को दिया जाता है जब वो गर्भवती है, तो जाहिर सी बात है उसका बच्चा स्वस्थ होगा, और समय समय पर जब टीकाकरण होगा तो भी उसके बच्चे में किसी प्रकार की स्वास्थ्य जटिलताएं नहीं आएंगी। इसी तरह से उनको किसी नजदीकी अस्पताल में समय समय पर डॉक्टर के जो दिए गए निर्देश होते हैं ना रुचिका, उनका जरूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जब हम डॉक्टर के निर्देशों के साथ चलते हैं तो हमें बहुत सही जानकारी भी रहती है, समय समय पर हमारा जो गर्भ है, जो गर्भ में पल रहा बच्चा है उसकी ग्रोथ सही हो रही है या नहीं हो रहा है वो पता चल जाता है, और जो भी जानकारियां जो भी टेस्ट डॉक्टर्स लिखते हैं वो हमें जरूर करवाने चाहिए। और आपने देखा होगा गाँव में अक्सर ऐसा होता है कि अभी भी महिलाएं, मैंने बोलते हुए सुनी है कि हमारे समय में प्रसव ऐसे हो जाते थे, हम पूरा काम करते थे, सब कुछ करते थे और फिर भी नॉर्मल डिलीवरीज हो जाती थी। तो ऐसा देखिए, हर एक वक्त की नजाकत भी होती है, वो भी समय अपना बहुत अच्छा था और ये भी समय अच्छा है। और अगर सरकार एक बच्चे के स्वस्थ विकास के लिए गर्भ में ही अगर उसका ध्यान रखने की ओर हमें जोर दे रही है तो हमें इन सुविधाओं का जरूर फायदा उठाना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा रूमा जी आपने, और ये बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि अक्सर महिलाओं को ये बातें सुनाई जाती हैं कि पहले के समय में हम काम भी करते थे, पूरा पूरा दिन काम करते थे गर्भावस्था के दौरान, और हमारे बच्चे जो हैं बिल्कुल तंदुरुस्त पैदा होते थे, उन्हें किसी भी बीमारी का जो है सामना नहीं करना पड़ता था। और अब के समय में अगर हम देखें तो पहले जब गर्भावस्था की अवस्था आती है तो पहले से ही बेड रेस्ट हो जाती है फिर ऐसे कि काम नहीं करना है, ये नहीं करना है। पर ज्यादातर देखा जाए ना, जब गर्भावस्था के दौरान महिला जो है जितना वर्कआउट मतलब कि कर सकती है उतना करना चाहिए, जितना वॉक वो कर सकती है उतना करना चाहिए। हाँ, अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखें, कुछ जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको भी ध्यान में रखें,
0: डॉक्टर के निर्देशों का पालन तो जरूर
1: करें बिल्कुल। और उसी के साथ जो है मतलब कि ये सब बातें जब आपकी फिजिकल जो मूवमेंट्स है वो होती रहेंगी तो उससे भी बच्चे को काफी ज्यादा जो है एक तंदुरुस्ती मिलेगी और एक एक्टिवनेस जो है उसे मिलती रहेगी।
0: वैसे भी ज्यादा समय तक अगर डॉक्टर ने कहा है कि आपको रेस्ट करनी है तो रेस्ट जरूर करें, क्योंकि डॉक्टर आपकी परिस्थिति को बेहतर जानता है।
1: बिल्कुल।
0: और पहले समय में ऐसे होता था, घरों में डिलीवरीज हो जाती थी
1: और पहले मुझे नहीं लगता कि ज्यादा ऐसे डॉक्टर्स के पास जाते भी थे, क्योंकि पहले बीमारियों के नाम पता नहीं थे और जानते भी नहीं थे इन सब चीजों के बारे में,
0: सुविधाएं भी नहीं थी। और दूसरा एक चीज और मैंने देखी है कि पहले के समय में घरों में ही प्रसव करवा दिए जाते थे, जो जोखिम भरे होते थे, कई बार बच्चे की और मां दोनों की जान जो है वो खतरे में पड़ जाती थी। और आजकल भी कई जगह गांवों में घरों में ही प्रसव करवा दिए जाते हैं, हालांकि आशा वर्कर और जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, जो और भी स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो इस और निगरानी रखती है कि किसी भी महिला को घर में प्रसव ना करवाना पड़े, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा करता है तो मैं तो अपने दोस्तों से ये कहूंगी कि उनको ऐसा करने से रोकें, क्योंकि एक माँ का जीवन जो है और उस बच्चे का जीवन जो है वो बहुत ही अनमोल है, वो किसी भी रिस्क में ऐसे ना पड़े, क्योंकि आपके समय में आपको हर प्रकार की सुविधा अस्पताल में मिलती है और उन सुविधाओं का जरूर लाभ उठाएं और एक माँ के जीवन को खतरे में ना डालें। और बाकी तो आपको पता है कि कोई भी माँ और उसका बच्चा तभी स्वस्थ रहेगा जब उनका आहार स्वस्थ रहेगा, संतुलित रहेगा। तो एक माँ के आहार को संतुलित रखें, उसमें कई बार होता है कि बहुत सारी महिलाएं रुचिका जी यही करती हैं, जो हमारी माएं भी करती हैं, कि खुद खा लेंगी बाकी बाद में देखेंगी, लेकिन गर्भवती महिला की जो डाइट है वो एक बच्चे के लिए भी उसने खाना है। तो वैसे भी कई बार तो ऐसे भी मैंने देखा है कि महिलाएं ये कहती हैं कि मैं अकेले नहीं खा रही हूँ, बच्चे को भी खाना खिलाना है, तो कई बार वो ओवर ईटिंग कर लेती हैं।
1: बिल्कुल।
0: ओवर ईटिंग से भी बच्चे की ग्रोथ पे प्रभाव पड़ता है और बाद में फिर डॉक्टर्स को उनको बेड रेस्ट की भी सलाह दी जाती है या उनके खान पान में। और इस दौरान आज के समय में कई बार मैंने कई महिलाओं को सुना है कि उनको प्रेगनेंसी के दौरान शुगर जैसी बीमारी हो गई है, तो ये भी चीजें हमारे गलत खान पान के कारण हो सकती हैं। इसके लिए भी डॉक्टर का उपचार जरूर लें, डॉक्टर से जरूर सलाह लें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और उन चीजों का जरूर फॉलो करें। और इसी तरह से एक स्वस्थ जो बच्चे को हम जन्म दे सकते हैं उसको दुनिया में लाएंगे, और जब बच्चा स्वस्थ होगा तो माँ तो अपने आप बच्चे को देखते ही स्वस्थ हो जाती है। ये तो आपने देखा है कि जब हम घर में आते हैं तो हमारी माएं हमारा चेहरा देख के ठीक हो जाती हैं और हम अपनी माँ का चेहरा देख के पूरे दिन की जो थकान है भूल जाते हैं। और मुझे लग रहा है कि हम बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, हमारे श्रोता जो
1: थोड़ा सा अपनी बातों को ब्रेक देते हैं और अपने दोस्तों को लेकर चलते हैं एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ, और वापिस आते हैं दोस्तों इस प्यारे से गीत के बाद आप सभी के साथ इस प्यारी सी बातचीत के साथ।

0: दोस्तों, इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम मेरे हौसलों की उड़ान में। और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और
1: रूमा के साथ।
0: जी, तो अपनी बातचीत को बढ़ाते हैं आगे। और ये बात तो हमने कर ली कि गर्भावस्था के दौरान जो है एक महिला को अपने खान पान के ध्यान जो है किस तरह से रखना चाहिए, कैसे अपनी देखभाल करनी है और किस तरह से जो है टीकाकरण करवाना चाहिए या घर घर में जैसे भी हमने बात की कि सुविधा जो है वो मिल रही है। अब ये बात करते हैं कि मानव अधिकार जो है वो किस तरह से है और इसके बारे में थोड़ा सा अपने दोस्तों से बातचीत करते हैं।
1: रुचिका जी, हर एक महिला का अधिकार है
0: जी,
1: अगर वो गर्भवती है और अपने बच्चे को दुनिया में लाना चाहती है तो उसे उस अधिकार का उपयोग करे। हर एक व्यक्ति का जीवन का अधिकार जो है वो बहुत ही सार्थक अधिकार है, जो हर एक महिला को अपने बच्चे को दुनिया में लाने के लिए उसको सहायता करता है।
0: तो मतलब कि आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर एक माँ को कोई ये नहीं बोल सकता है कि अगर अब वो गर्भावस्था में है तो बच्चे को जीवन में ना लाया जाए या उसे कोई फोर्स नहीं कर सकते।
1: कई बार हमने पिछले कार्यक्रम में लिंग अनुपात की बात करी थी रुचिका जी, और इसी बात पे चर्चा हुई थी कि अगर गर्भ में लड़की है तो बहुत सारे लोग जो है वो गर्भ गिरा देते हैं
0: बिल्कुल
1: लड़के की चाह में, लेकिन एक महिला का ये अधिकार है और जो बच्चा गर्भ में पल रहा है उसको जीवन का अधिकार है। हम उससे उसका ये अधिकार नहीं छीन सकते हैं और ना ही किसी को ये अधिकार छीनने का हम हक देते हैं
0: जी।
1: तो जीवन का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 2 यही बताता है कि अगर कोई महिला गर्भवती है तो अपने बच्चे को खुशी खुशी दुनिया में लाए। सोनोग्राफी समय समय पर हॉस्पिटल्स में होती है, बच्चे के स्वास्थ्य की जांच का ही एक अंश है जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारा बच्चा गर्भ में सही से ग्रो कर रहा है, उसमें कोई डिसऑर्डर्स तो नहीं है, कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर्स तो नहीं है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए, ताकि बच्चा जब दुनिया में आए तो उसमें किसी प्रकार की कोई गंभीर बीमारी ना हो या किसी प्रकार की ऐसी कोई समस्या ना हो जाए कि बच्चा दुनिया में आए और एक मतलब वो अगर स्वस्थ नहीं है, हम यही सब चीजें देखने के लिए सोनोग्राफी करते हैं
0: बिल्कुल। और हम कई बार क्या होता है कि इसको गलत वे में लेके चले जाते हैं
1: बिल्कुल।
0: असल में ये जांच के लिए है कि बच्चा स्वस्थ है या नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशंस है या नहीं है, पर अक्सर जिन लोगों को ये जानकारी नहीं होती है वो लोग इसका गलत फायदा लेते हैं।
1: नहीं होती है ये तो नहीं कहेंगे रुचिका जी, जानकारी सबको रहती है, जीने का अधिकार सबको है। जो गर्भ में है उसने दुनिया में आना ही है, लेकिन हम अपने लालच और स्वार्थ में आके एक अजन्मे बच्चे को गर्भ में ही मार देते हैं। तो ये एक माँ का अधिकार है, अगर उसे कोई भी व्यक्ति, अगर कन्या भ्रूण अगर उसके गर्भ में पल रहा है और परिवार का कोई भी सदस्य उसे फोर्स करता है कि वो उसको गर्भपात करवा दे क्योंकि उनको तो लड़के की चाह है
0: जी,
1: तो वो ऐसा नहीं कर सकते। और अगर महिला के साथ ऐसा होता है तो वो इसके खिलाफ आवाज उठा सकती है। बच्चे का जन्म, देखिए हम इंसान हैं, हम इस दुनिया में जब आए हैं जीवन और मृत्यु ये सब चीजें हम झेलते हैं, लेकिन कहते हैं ना जीवन अगर ईश्वर के हाथ में है तो मृत्यु भी तो ईश्वर के हाथ में है। फिर हम अपने स्वार्थ में आके गर्भ में पड़ रहे बच्चे की हत्या कैसे
0: क्यों बन जाते
1: बिल्कुल रुचिका जी, तो मैं ये कहूंगी कि अगर ये महिला का अधिकार है वो अपनी गर्भावस्था में अपने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए जो भी उसको लगता है उचित है वही सही कदम उठाए, लेकिन बेटे की चाह में गर्भ में अपनी बेटी का हत्या ना करे। ये एक जघन्य अपराध है, इसको रोकने के लिए हम तो पहले भी बात कर चुके हैं कि इसको बढ़ावा ना दें। सिर्फ सोनोग्राफी इसीलिए करवाएं कि हमारा बच्चा इस दुनिया में स्वस्थ आए
0: जी बिल्कुल, क्योंकि मतलब कि जांच का मतलब यही है दोस्तों, अगर कहीं कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं तो उसे ठीक किया जा सके, और अगर बच्चे को कोई दिक्कत हो रही है कोई शारीरिक या फिर कुछ भी तो उसे वो पौष्टिकता जो है वो पहुंचाई जाए माँ के थ्रू, है ना
1: बिल्कुल।
0: तो उसका हम गलत जो है उस वे में नहीं लेके जा सकते हैं, क्योंकि हम अक्सर अपने लालच में ये भूल जाते हैं कि हमें एक जो माँ है उसके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक बच्चे की जान तो हम ले ही रहे हैं पर साथ ही साथ एक माँ के इमोशंस को भी हर्ट कर रहे हैं, और एक माँ से जब बच्चा छीनता है तो उसे कितना दुख होता होगा
1: जी। रुचिका जी, ये तो हमने बात की उस बच्चे की जो अभी दुनिया में आया है
0: जी,
1: लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किन्हीं परिस्थितियों में माता पिता को गर्भपात करवाना पड़ता है
0: जी।
1: ऐसी कंडीशन में हमें मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है उसी में करवाना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है, कई बार अनचाहा गर्व अगर है तो उसके लिए भी माता पिता गर्भपात के लिए

0: जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए उचित रास्ते से ही, माध्यम से ही जाना चाहिए। और किसी भी महिला को, अगर अनचाहे गर्व को भी महिला अगर नहीं गिराना चाहती है, तो उसके लिए फोर्स उसको नहीं करना चाहिए। कई बार मेडिकल जो हमारे कॉम्प्लिकेशंस की वजह से भी महिला को, बच्चे को टर्मिनेट करवाना पड़ जाता है, तो वो भी एक उचित लीगल प्रावधानों के तहत आकर ही हमें सरकारी अस्पताल में ऐसा करवाना चाहिए, ताकि महिला का जीवन जो है वो जोखिम में ना पड़े। आप जानती हैं कि कई बार कई केसेस में ऐसा हो जाता है कि महिलाओं को किसी भी वजह से, वो चाहते नहीं है माता पिता की गर्भपात हो, लेकिन किसी विशेष परिस्थितियों में उनको गर्भपात करवाना पड़ जाता है। तो इसके लिए सरकारी अस्पताल में या किसी भी निजी अस्पताल में भी अगर वो ऐसा कर रहे हैं, तो उचित देखभाल में करें, ताकि एक महिला का जीवन खतरे में ना पड़ जाए। गाँव में अप्रशिक्षित दाइयों से या किसी अन्य व्यक्ति से इस तरह का जोखिम वो ना उठाएं।
1: जी बिल्कुल सही कहा रूमा जी ने। तो दोस्तों अब आप भी समझ चुके होंगे, और खासकर महिलाएं अच्छे से समझ चुकी होंगी कि एक महिला का पूरा पूरा अधिकार है गर्भावस्था की अवस्था में, कि अगर कोई उनके साथ ऐसे फोर्सफुली जांच के लिए या फिर किसी भी तरीके से उनको फोर्स करते हैं कि हत्या के रिगार्डिंग या फिर कुछ भी, तो वहां पर एक माँ जो है आवाज उठा सकती है, उसका पूरा पूरा अधिकार है, उसकी सहमति होनी जरूरी है कि वो बच्चे को जन्म देना चाहती है, तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता है।
0: रुचिका जी, काफी देर हो गई है, हमारे दोस्तों ने कोई गीत नहीं सुना, तो क्यों ना एक गीत सुन लिया जाए।
1: जी जरूर, मेरा बहुत मन कर रहा था कि एक प्यारा सा गीत हो जाए, क्योंकि हमारे दोस्त भी वेट कर रहे हैं। तो आइए लेकर चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की तरफ, और फिर से वापिस आते हैं इसी प्यारी सी बातचीत के साथ।
2: मैं कभी

0: रुचिका जी, बहुत ही प्यारा गीत सुनाया है आपने हमारे दोस्तों को, और अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। तो रुचिका जी, आपको पता है गर्भावस्था में महिलाओं के और भी बहुत सारे अधिकार हैं जो कानून की ओर से उनको दिए गए हैं
1: जी।
0: और इसमें से सबसे पहला अधिकार तो ये है कि वही गर्भवती महिला के साथ ना किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए कार्यस्थल पर। आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि हमें अगर अस्थाई तौर पे थोड़े समय के लिए हम बीमार हो जाते हैं, मेल या फीमेल कोई भी ऑफिस में, तो उनके साथ नियोक्ता जो है वो थोड़ा सा
1: भेदभाव जो है दिखाने लग जाते हैं, व्यवहार जो है उनका बदल जाता है।
0: बदल जाता है, जैसे कई जगह पे ऐसे काम होते हैं कि उनको वजन उठाना पड़ता है, या फिर इस तरह का काम है कि शिफ्टों में काम करना पड़ता है या इस तरह का, तो ऐसी जगहों पे महिलाएं भी काम करती हैं। और महिलाओं को जब इस तरह की परिस्थिति आती है, जब वो गर्भवती है, तो जो नियोक्ता हैं वो उनके साथ भेदभाव अपनाना शुरू कर देते हैं, उनके साथ इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं कि महिला जो है वो खुद ही नौकरी छोड़ के चली जाए। लेकिन महिलाओं के लिए ये अधिकार है कि उनके साथ कार्यस्थल में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए। और जब नियोक्ता को पता चल जाता है कि उसकी कोई कर्मचारी गर्भवती है, तो उसके साथ उससे भारी काम नहीं लिया जाता है, उसका इस तरह के काम उसको नहीं करवाए जाते हैं। अगर ऑफिस में कार्यस्थल में सीढ़ियां चढ़ने उतरने का ज़्यादा काम है, तो उसको इस तरह से बैठने की जगह दी जाती है जहाँ पे उसको इस तरह का कोई वजन उसके स्वास्थ्य पे ना पड़े, उसके काम पे ना पड़े। साथ ही साथ उसको ज़्यादा भारी भरकम काम नहीं दिए जाते हैं। और गर्भावस्था के जब तीसरा चरण आता है, तो तीसरे चरण में उनको इस तरह का काम दिया जाता है कि वो एक सेफ जगह पे बैठ के उस काम को कर सके। इस समय में उसके साथ किसी भी प्रकार का अगर कोई भी महिला के साथ भेदभाव किया जाता है, तो वो इसके खिलाफ आवाज उठा सकती हैं।
1: बिल्कुल सही कहा दोस्तों रूमा जी ने, क्योंकि अक्सर हमें ये बातें देखने को मिल जाती हैं। भले ही हम अपनी सोच को कितना भी बदल लें, पर घूम फिर के हम कहीं ना कहीं पहुंच ही जाते हैं इन छोटी छोटी सी सोच पे। क्योंकि अक्सर होता है कि जब महिला गर्भवती होती है, तो आप सभी जानते हैं कि एक महिला के स्वास्थ्य का ध्यान रखना जो है वो कितना ज़रूरी रहता है, क्योंकि अगर कोई छोटी सी भी हरकत हो जाए तो उन्हें कितनी दुख का सामना करना पड़ सकता है, कितनी कॉम्प्लिकेशंस जो है उनकी ज़िंदगी में आ सकती हैं। और एक महिला की ज़िंदगी में प्रेशर जो है वो बहुत चीज़ों का रहता है।
0: बिल्कुल, और कई तरह के भेदभाव इसमें रुचिका जी शामिल हैं, जैसे कि उन्हें नौकरी से कई बार जो है नियोक्ता उनको इस वजह से नौकरी से निकाल देते हैं कि वो गर्भवती हैं और काम नहीं कर पाएंगी प्रॉपर ढंग से
1: जी।
0: या फिर उनके साथ जो कर्मचारी हैं, सहकर्मी हैं, कई बार होता है ना कि अगर ये महिला काम नहीं कर पा रही है तो उसका काम किसी और को दे दिया जाता है।
1: बिल्कुल,
0: तो वो भी उनके साथ भेदभाव करते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं अलग अलग तरीकों से, तो ये सब नहीं करना चाहिए। और किसी भी कारण से काम बंद करने पर या छुट्टी लेने के लिए उनको मजबूर कर देते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। और अगर व्यक्ति महिला, वैसे भी आपको पता है कि मैटरनिटी एक्ट जो है वो महिलाओं को प्रसव के बाद जो है अब तो 6 महीने की छुट्टी महिलाओं को दी गई है, तो कोई भी जो नियोक्ता है वो महिला को प्रसव के बाद भी काम पे जल्दी आने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। जब वो गर्भावस्था के दौरान होती है तो उसको नौकरी से नहीं निकाल पाते हैं। कई बार एक और चीज देखने में आती है कि कहीं नियुक्ति के लिए कोई महिला जाती है और वो गर्भवती है, हालांकि वो अगर वो प्रशिक्षित है, नियोक्ता के सभी मानदंडों को अगर वो पूरा करती है, तो इस वजह से उसको उस नौकरी से वर्जित नहीं किया जा सकता है कि वो गर्भवती है। क्योंकि ज्यादातर महिलाएं इस तरह के भेदभाव सहती हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि गर्भावस्था के दौरान उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है या फिर उनके वेतन में कटौती करनी शुरू कर दी जाती है। तो कोई भी जो नियोक्ता है, कोई भी एम्प्लॉयर है, वो महिला का वेतन इस वजह से कम नहीं उसको दे सकता कि वो गर्भवती है, उसके वेतन और उसके भत्तों में कटौती नहीं कर सकते हैं। और गर्भावस्था के बाद प्रसव के उपरांत भी देखभाल के लिए जब वो 6 महीने की छुट्टी पे जाती है, तब उसकी सैलरी नहीं काटी जाएगी। जो भी बोनस, जो भी भत्ते उसको मिलते हैं, वो उसको सभी वैसे ही मिलते रहेंगे जैसे वो पहले मिल रहे थे। और अगर कोई नियोक्ता ऐसा करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है
1: जी। बिल्कुल, तो ये अधिकार है एक महिला के जब वो गर्भावस्था के उस पीरियड में है। तो ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है ताकि हमारे साथ कोई गलत ना कर सके, कोई गलत व्यवहार ना कर सके, क्योंकि अक्सर हम महिलाएं जो हैं कहीं ना कहीं हमें आदत होती है सहन करने की,
0: सहन करने
1: और हम चुप रह जाते हैं, हम आवाज नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि जानते हम होते हैं पर फिर भी हम डरते हैं कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो कहीं हमें चार बातें और ना सुनाई जाए या लोग हमें क्या सोचेंगे हमारे बारे में। पर अक्सर हर किसी की सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है, कईयों को हो सकता है कोई बहुत बड़ी मजबूरी हो, घर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, तो उस समय में भी वो अपने आप को उस तरह से एडजस्ट करने का वो कोशिश करती हैं। तो ऐसे में जो उनका जो ऑफिस स्टाफ है उनका भी एक दायित्व बनता है कि वो उस महिला का सपोर्ट बने, उनकी हेल्प करें, बल्कि जो भी उन्हें जरूरत है वो आप जरूर पूरी करें, उनके काम में हाथ बटाएं। ऐसा नहीं है कि उनका जो काम है वो आप किसी और को दे दें, क्योंकि ऐसे में उनके मन पे जो है एक भेदभाव वाली जो बात है वो आ ही जाएगी कहीं ना कहीं।
0: बिल्कुल, अपनी जो गर्भावस्था को है वो एक तरह से इस तरह से ट्रीट करना शुरू कर देगी कि इस गर्भावस्था के दौरान मेरे साथ गलत हो रहा है।
1: रूमा जी, तो हम बात कर रहे हैं जब गर्भावस्था में कोई भी महिला होती है तो जब उनके साथ कार्यस्थल में जो भेदभाव होता है तो उस भेदभाव का सामना कैसे करते हैं या उसके लिए महिलाएं क्या कर सकती हैं? अगर ज्यादा से ज्यादा तो कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि वो भेदभाव जो है वो ना हो, भेदभाव ना हो, पर अगर फिर भी कोई उनके साथ वो भेदभाव कर रहा है तो उसके लिए वो किस तरह से आवाज उठा सकती हैं, क्या वो कदम आगे ले सकते हैं?
0: बिल्कुल रुचिका जी, बहुत ही सही क्वेश्चन है आपका ये। किसी भी महिला के साथ अगर किसी भी प्रकार का कार्यस्थल पर भेदभाव होता है तो वो उसके खिलाफ आवाज उठा सकती है, और स्पेशली अगर गर्भवती महिला के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो वो अपने नियोक्ता के साथ जो भी एम्प्लॉयर है उसको लिखित में एप्लीकेशन दे सकती है। अगर वहाँ पे उसकी बात नहीं सुनी जाती है तो वो कार्मिक विभाग में या रोजगार कार्यालय में भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है। अगर उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव होता है, अगर वेतन में कटौती होती है या उसके भत्ते रोक लिए जाते हैं कि वो गर्भवती है इस वजह से, या फिर उसको गर्भावस्था के दौरान कहीं पे भी दूर उसकी स्थानांतरण कर दिया जाता है, अगर ऐसी भी कोई सिचुएशन आती है तब भी वो शिकायत दर्ज करवा सकती है। उससे गर्भावस्था के दौरान उसको बिना वजह के परेशान इसलिए करा जाता है कि उसका काम किसी और कर्मचारी को करना पड़ रहा है, या उसको गर्भावस्था के दौरान भारी भरकम काम करने को दे दिए जाते हैं, या अगर टूरिंग जॉब है उसकी और उसको जगह जगह भेज दिया जाता है, तो महिला कार्मिक विभाग में या रोजगार कार्यालय में जाके शिकायत दर्ज करवा सकती है, या फिर अपने एम्प्लॉयर को भी लिखित में शिकायत दे सकती है। और जब भी वो शिकायत लिखित में देती है अपने एम्प्लॉयर को या कहीं भी तो उसमें उसके साथ क्या हो रहा है वो पूरी डिटेल उसको उसमें लिख के देनी होगी। वो कार्यस्थल पे खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है या नहीं है, जो भी उसके साथ हो रहा है वो उसको जरूर लिख के देना होगा। उसके बाद ही जो नियोक्ता है वहाँ पे भी वो अपनी औपचारिक जो भी उसने शिकायत करी है उसके ऊपर वो संज्ञान लेके उसकी जो समस्या है उसका निदान कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं किसी महिला को इसी वजह से नौकरी से निकाल दिया गया है कि वो गर्भवती है और काम को नहीं कर पा रही है, तो वो कोर्ट में जाके किसी वकील के माध्यम से भी अपना दावा दायर करके अपनी उस नियुक्ति को रिस्टोर करवा सकती है, दोबारा से उस नौकरी के लिए जा सकती है। जो भी वेतन भत्ते उसके इस वजह से काट लिए गए हैं वेतन में, या किसी भी वजह से कटौती कर ली गई है कि गर्भावस्था के दौरान उसने पूरी सक्षमता के साथ काम नहीं किया है, तो वो वेतन भत्ते भी वो कोर्ट के माध्यम से ले सकती है।
1: जी रूमा जी, तो अब मुझे लग रहा है कि हम बहुत ज्यादा आगे बातें करते जा रहे हैं और ब्रेक जो है हम नहीं ले रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो आइए सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत।
0: बिल्कुल, गीत के बिना तो बात ही नहीं बनेगी, कोई भी बात जब तक मनोरंजन ना हो तो काम का मजा नहीं आता है।
1: जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस प्यारे से गीत को आप सभी के साथ 91.2 MHz से।

0: 91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं
1: मेरे हौसलों की उड़ान
0: जी। और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और
1: रूमा के साथ
0: जी। रूमा जी, हम बात कर रहे हैं गर्भवती महिलाओं की, तो अब बात करते हैं प्रसव के दौरान जो एक माँ को बच्चे की देखभाल किस तरह से करनी चाहिए, किस तरह से उसके लिए अधिकार है, कैसे वो अपने कार्यस्थल में भी अपने लिए जो है एक मतलब कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू से वो बात कर सकते हैं।
1: रुचिका जी, गर्भावस्था के दौरान महिला को विशेष देखभाल की जरूरत होती है। उचित खान पान, उचित टीकाकरण, समय समय पर जो भी सप्लीमेंट लेने होते हैं वो जरूरी है। उसके बाद बात आती है प्रसव की, तो प्रसव के दौरान भी महिला को विशेष देखभाल की जरूरत पड़ती है। तो जब भी प्रसव का समय आए तो अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके ही प्रशिक्षित डॉक्टर की निगरानी में, प्रशिक्षित नर्सों की निगरानी में डिलीवरी करवाएं, ताकि महिला और बच्चे की जान जोखिम में ना पड़े।

0: कमजोरियां उसको घेर लेती हैं, और फिर ना तो वो खुद का ध्यान खुद से रख पाती है अच्छे से, ना परिवार की देखभाल कर पाती है और ना बच्चे की।
1: बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूंगी रूमा जी, क्योंकि हम जो महिलाएं होती हैं ना, इनसे देखा नहीं जाता है कि यार हम बैठे हैं और बड़े जो हैं वो काम कर रहे हैं या कोई और काम कर रहा है, तो मुझे भी हेल्प करवानी चाहिए। पर उस समय तो बोलते हैं ना, हमें वो चीज जो है रियलाइज नहीं होती है,
0: हमें खुद ही ये ध्यान रखना होगा कि हमारा स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है
1: जी।
0: अगर हमारा परिवार, हम स्वस्थ हैं, तो हम अपने परिवार को, अपने बच्चे को सही से उसकी देखभाल कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, तो उस समय अगर वो काम में ज्यादा ध्यान दे देंगी तो उसका जो है प्रभाव उनकी हेल्थ पर भी पड़ेगा और बच्चे के हेल्थ पर भी जो है वो प्रभाव देखने को मिलेगा।
0: बिल्कुल, तो और यही कारण है रुचिका जी
1: जी
0: कि हर पूरे भारत देश में महिलाओं को 6 महीने की छुट्टी प्रसव के बाद दी जाती है, ताकि वो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख सकें और अपने बच्चे का भी उचित ध्यान रख सकें
1: जी।
0: और कई बार अगर आप, मैंने पहले भी कहा कि कोई भी जो नियोक्ता है वो महिला को प्रसव के तुरंत बाद 1-2 महीने के अंदर अब काम पे नहीं बुला सकते हैं, उनका अगर वो छुट्टी करती हैं तो उनको उनकी सैलरी नहीं काट सकते हैं
1: जी।
0: अब ये महिलाओं का अधिकार है कि वो 6 महीने तक वैतनिक अवकाश पे जा सकती हैं। ऐसे में ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन महिलाओं का सहयोग करें, और जो कामकाजी महिलाएं हैं, अगर बच्चे को घर में कोई संभालने वाला नहीं है तो 6 महीने की छुट्टी के बाद उनको अपने बच्चे की देखभाल के लिए 2 साल का अतिरिक्त अवकाश मिलता है, लेकिन ये वैतनिक नहीं होगा, इसमें बिना वेतन के उनको विदाउट पे वो छुट्टी पे अपने बच्चे की देखभाल के लिए जा सकती हैं। कोई भी एम्प्लॉयर उनको इस वजह से काम से नहीं निकाल सकता है कि वो 2 साल तक काम से उपस्थित रही हैं। ऐसी स्थिति में भी वो न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकती हैं। दूसरा एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गई रुचिका जी, अभी अभी DC कांगड़ा जी ने एक चाइल्ड केयर सेंटर का उद्घाटन किया है एजुकेशन बोर्ड धर्मशाला में, जहाँ पे जो भी वर्किंग वुमेन है 6 महीने की छुट्टी काटने के बाद अगर इन महिलाओं को बच्चा को देखभाल करने के लिए घर पे कोई उपलब्ध नहीं है, कोई नहीं मिलता है, तो वो काम पे अपने साथ इन बच्चे को ले आएंगी। जो भी समय के दौरान वो बच्चे जो हैं, उन महिलाओं के, कामकाजी महिलाओं के बच्चे जो हैं, चाइल्ड केयर सेंटर में प्रशिक्षित कर्मचारियों की निगरानी में पलेंगे, बढ़ेंगे, उनकी अच्छे से देखभाल होगी। तो ये मुझे बहुत अच्छा ये लगा कि क्योंकि हम भी देखते हैं कि कई बार हम बच्चे को घर में हमें मजबूरन छोड़ना पड़ता है, या फिर कोई घर में देखभाल करने वाला नहीं है तो हम खुद ही नौकरी छोड़ देती हैं।
1: बिल्कुल, ये बहुत ही गंभीर जो है फैसला होता है एक माँ के लिए, क्योंकि एकदम से बच्चे को खुद से अलग करना और किसी ऐसे पर्सन के पास छोड़ के जाना जिन्हें वो ज्यादा जानते भी नहीं है, तो बहुत दुखदायी भी होता है एक तरह से, क्योंकि बच्चे से अलग रहना बहुत मुश्किल होता है अभी कुछ ही समय में।
0: बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी बात छोड़ना है। नौकरी को छोड़ देना भी अपने आप में एक तकलीफ देह होता है, कितने एफर्ट्स के साथ वो उस मुकाम पर पहुंची है, लेकिन कि अपनी मजबूरियों की वजह से उसको जब छोड़ने पे मजबूर होना पड़े तो दुखदाई होता है। तो ऐसे में मुझे ये बहुत ही अच्छी पहल लगी कि यहाँ पे एक महिला को काम करने की आजादी के साथ साथ वो अपने बच्चे का भी अच्छे से काम के दौरान देखभाल कर सकती है। तो ये मेरे को बहुत ही कॉन्सेप्ट अच्छा लगा चाइल्ड केयर सेंटर का, और ये वर्किंग वुमेन के लिए है। अभी अभी इसकी शुरुआत जो हुई है वो DC कांगड़ा ने सिर्फ एजुकेशन बोर्ड में जो काम कर रही हैं महिलाएं हैं उनके लिए किया है, और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी पूरे जिला में इस तरह के चाइल्ड केयर सेंटर खुलेंगे जो वर्किंग महिलाओं के लिए अपने आप में वरदान साबित होंगे, जो अपने काम के साथ साथ अपने बच्चों का भी लालन पालन बहुत अच्छे से कर पाएंगी।
1: जी रूमा जी, तो मुझे लग रहा है कि आज हमने कुछ ज्यादा ही बातें कर ली हैं और बहुत अच्छी जानकारियां हमने अपने दोस्तों तक पहुंचा दी हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप भी एक गर्भवती महिला का इस तरह से ध्यान रखेंगे, और अगर उन्हें जरूरत पड़े तो आप उनके साथ खड़े रहेंगे, उनके अधिकारों के लिए खड़े रहेंगे, ना कि उनके साथ कोई भेदभाव करेंगे या फिर उन्हें अलग कर दिया जाएगा। उनके सपोर्ट बनने की जरूरत है, क्योंकि उस समय में उन्हें सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है।
0: बिल्कुल, जिस तरह से माँ हमारी कदम कदम पे सपोर्ट करती है, तो उसी तरह से हमारा भी फर्ज बनता है कि एक होने वाली माँ को हम उसी तरह से लाड प्यार के साथ, सपोर्ट के साथ उसका सहयोग करें, ताकि वो भी एक स्वस्थ बच्चे को दुनिया में लाए और खुशी खुशी अपने इस कर्तव्य को वहन करते हुए वो भी आप सबके साथ अपनी खुशियाँ साझा करें।
1: जी दोस्तों, तो अब समय हो गया है आप

0: सभी से अलविदा लेने का। तो दीजिए अपनी होस्ट एंड होस्ट रुचि का और रूमा जी को अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की। फिर मिलेंगे आप सभी के साथ, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे मेरे हौसलों की उड़ान।
1: लेकिन रुचिका जी, जाते जाते इनको अपना नंबर बता देते हैं।
0: जी जरूर,
1: कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी कानूनी पेचीदगी या किसी भी इसी संदर्भ में आपको सहायता की जरूरत पड़ती है तो आप हमें बेझिझक लिखिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, हमारा नंबर है 9418431223। आप हमें कोई भी जानकारी साझा करने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, SMS भी कर सकते हैं, बेझिझक आप हमें कॉल कर लीजिए। हम जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उनका निदान करने की कोशिश करेंगे और अगले कार्यक्रम में आपके उन बातों को आपके समक्ष लेके जरूर उनके समाधान लेकर आपके सामने होंगे।
0: जी दोस्तों, तो इन्हीं शब्दों के साथ दीजिए अब अनुमति अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और रूमा गुलेरिया जी को। फिर मिलेंगे एक नई बातचीत नई जानकारी के साथ। अब तक आप सभी इसी तरह से इंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

0: मोदी ने आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर बातचीत की। बातचीत के बाद इस समय समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया जा रहा है। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स की भारत की ये पहली यात्रा है। श्री क्रिस्टोडोलाइट्स आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
1: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने समाप्त हो रहा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की 1-1 सीट के लिए उपचुनाव की भी घोषणा की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुवंचूर राधा कृष्णन को 16वीं केरलम विधानसभा का अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधा कृष्णन का व्यापक विधायी अनुभव और संसदीय परंपराओं की गहरी समझ सदन को निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता और गरिमा के साथ मार्गदर्शन प्रदान करेगी। उन्होंने उनके आगामी कार्यकाल के सफल होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स इस समय संयुक्त प्रेस सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं।
2: पूरी विजिट के दौरान आपकी आत्मीयता, आपका स्नेह और भारत के प्रति आपका विशेष जुड़ाव हमने बहुत गहराई से महसूस किया और आज आपकी भारत यात्रा हमारी शेयर्ड जर्नी का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव है। फ्रेंड, भारत और साइप्रस की मित्रता मजबूत भी है और फ्यूचरिस्टिक भी है। लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हमारी साझेदारी के आधार है। हम सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हैं। भारत इन सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आगे भी रहेगा।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा को चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक क्षेत्रीय जिम्मेदारी के तौर पर देखा जाना चाहिए। आज नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि कई तरह की कमजोरियों और चुनौतियों के बावजूद बल ने लगातार देश के गौरव को बनाए रखा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: तो क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं APEX+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: अप्पा, ये चींटी खाना कैसे चबाती है?
2: सुबह सुबह शुरू।
1: अप्पा, ये हवा दिखती क्यों नहीं?
2: दिखती है बेटा, कभी कभी दिखती है।
1: ये पहिया चलता कैसे है? माँ को आपकी तरह मुझे क्यों नहीं होती? अप्पा, दिन में तारे क्यों नहीं दिखते? अप्पा अप्पा बोलो ना।
2: आके बोलता हूँ पक्का।
1: अप्पा अप्पा, ये पेड़ की
2: इधर सुबह शाम सवाल पे सवाल।
3: अरे, इसमें इतनी जिज्ञासा है तो इसे स्कूल क्यों नहीं भेजते?
4: गरीब आदमी है साहब, कहाँ से पढ़ाएगा?
3: इसे सरकारी स्कूल भेजो ना, अब तो शिक्षा है हर बच्चे का अधिकार।
1: अप्पा, अब तो मेरा पढ़ना पक्का।
3: हाँ पक्का।
1: अप्पा, ये मिर्ची इतनी तीखी क्यों होती है?
5: कल स्कूल में मास्टर जी से पूछ लेना। सांभर चाहिए तो।
6: शिक्षा है अब हर बच्चे का अधिकार, अब पढ़ना पक्का।

0: Часы.
1: Чакай на.
0: सड़क पर ट्रैफिक जाम हो या हो खाली, हर पल चौकन्ना रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसका आपको पहले से आभास ही ना हो। अभी तो सड़क खाली लग रही है, पर आपको कहां पता कि छुट्टी का टाइम होने वाला है। इसलिए जहां एक तरफ मैं स्कूल से विनती करूंगा कि छुट्टी के टाइम बच्चों के सुरक्षित सड़क पे निकलने का प्रबंध करें, वहीं आपसे भी विनती करूंगा कि आप इस सड़क पे निकले तो अपना सारा ध्यान यहां केंद्रित करें और गति सीमा में चलिए, ताकि कभी कुछ अचानक हो जाए तो आप संभाल पाए उसे।
2: हेलो,
0: तुम खबर है?
2: जैसे चौकन्ना रहिए।
0: याद रखना, यहाँ हर पल चौकन्ना है रहना, ये सड़क है भैया, संभल के चलना।
3: हर घर में छुपा एक कुरुक्षेत्र आज भी है, क्योंकि गलत को गलत कहने वाले मिलते कहाँ हैं? कहीं कोई अर्जुन सा सच्चाई के साथ भी अकेला रह जाता है, कहीं कोई कर्ण सा वफादारी में अंधा हो जाता है, और कौरवों सा कोई अपना हो के भी बेगाना हो जाता है। यहाँ हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, पर गलती मानकर झुकना किसी को आता कहाँ है? लोग बोल देते हैं हमने क्या गलत किया, पर गलत होता देखना भी अपराध है, ये समझ किसी को आता कहाँ है? कृष्ण आते हैं समझाने आज भी, बहुत लोगों और घटनाओं के रूप में, पर उनकी लीलाओं को कोई समझ पाता कहाँ है? इसलिए अंत में भगवान ने भी महाभारत होने दी, क्योंकि समझाने से इंसान समझता कहाँ है।
4: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
5: मामा, नो शेयरिंग।
4: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
5: कौन था?
4: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
5: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
4: स्मार्ट गर्ल।
5: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे, ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
4: याद है ना, नो शेयरिंग।
5: मामा,
6: आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
7: सुनो, एक बात बताओ, शादी से पहले वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद वाली?
8: शादी से पहले वाली
7: हाँ?
8: भी कोई जिंदगी थी, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करते रहो। जिंदगी तो शादी के बाद होती है, बीवी के साथ रोटियां बनवाओ, खाना बनवाओ।

श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी बने होए हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते एंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी कार्यक्रम तुसी इंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम ते आओ श्रोताओ सुनते ने कार्यक्रम दा अगला पंजाबी गीत।

श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी बने होए हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते एंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम।

दोस्तों मैं थोड़ी रेडियो दोस्त पिंकी ते मेरे नाल तुसी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हो पंजाबी की तादा कार्यक्रम रेडियो गुंजन धर्मशाला ते 91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं APEX+ पॉइंट ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: अप्पा, ये चींटी खाना कैसे चबाती है?
2: सुबह सुबह शुरू।
1: अप्पा, ये हवा दिखती क्यों नहीं?
2: दिखती है बेटा, कभी कभी दिखती है।
1: ये पहिया चलता कैसे है? माँ को आपकी तरह मुझे क्यों नहीं होती? अप्पा, दिन में तारे क्यों नहीं दिखते? अप्पा अप्पा बोलो ना।
2: आके बोलता हूँ पक्का।
1: अप्पा अप्पा, ये पेड़ की
2: इधर सुबह शाम सवाल पे सवाल।
3: अरे, इसमें इतनी जिज्ञासा है तो इसे स्कूल क्यों नहीं भेजते?
4: गरीब आदमी है साहब, कहाँ से पढ़ाएगा?
3: इसे सरकारी स्कूल भेजो ना, अब तो शिक्षा है हर बच्चे का अधिकार।
1: अप्पा, अब तो मेरा पढ़ना पक्का।
3: हाँ पक्का।
1: अप्पा, ये मिर्ची इतनी तीखी क्यों होती है?
5: कल स्कूल में मास्टर जी से पूछ लेना।
4: शिक्षा है।

0: से सड़क पर ट्रैफिक जाम हो या हो खाली, हर पल चौकन्ना रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसका आपको पहले से आभास ही ना हो। अब यूं तो सड़क खाली लग रही है, पर आपको कहां पता कि छुट्टी का टाइम होने वाला है। इसलिए जहां एक तरफ मैं स्कूल से विनती करूंगा कि छुट्टी के टाइम बच्चों के सुरक्षित सड़क पे निकलने का प्रबंध करें, वहीं आपसे भी विनती करूंगा कि आप इस सड़क पे निकले तो अपना सारा ध्यान यहां केंद्रित करें और गति सीमा में चलिए, ताकि कभी कुछ अचानक हो जाए तो आप संभाल पाए उसे।
1: हेलो,
0: hey, तुम खबर है?
1: जैसे चौकन्ना रहिए।
0: याद रखना, यहाँ हर पल चौकन्ना है रहना, ये सड़क है भैया, संभल के चलना।
2: हर घर में छुपा एक कुरुक्षेत्र आज भी है, क्योंकि गलत को गलत कहने वाले मिलते कहाँ हैं? कहीं कोई अर्जुन सा सच्चाई के साथ भी अकेला रह जाता है, कहीं कोई कर्ण सा वफादारी में अंधा हो जाता है, और कौरवों सा कोई अपना हो के भी बेगाना हो जाता है। यहाँ हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, पर गलती मानकर झुकना किसी को आता कहाँ है? लोग बोल देते हैं हमने क्या गलत किया, पर गलत होता देखना भी अपराध है, ये समझ किसी को आता कहाँ है? कृष्ण आते हैं समझाने आज भी, बहुत लोगों और घटनाओं के रूप में, पर उनकी लीलाओं को कोई समझ पाता कहाँ है? इसलिए अंत में भगवान ने भी महाभारत होने दी, क्योंकि समझाने से इंसान समझता कहाँ है।
3: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
4: मामा, नो शेयरिंग।
3: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
4: कौन था?
3: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
4: और आप मांग गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
3: स्मार्ट गर्ल।
4: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे, ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
3: याद है ना, नो शेयरिंग।
4: मामा,
5: आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
6: सुनो, एक बात बताओ, शादी से पहले वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद वाली?
7: शादी से पहले वाली भी कोई जिंदगी थी, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करते रहो। जिंदगी तो शादी के बाद होती है, बीवी के साथ रोटियां बनवाओ, खाना बनवाओ।

कानवी दशमलव दो मेगाहर्ट्स पर ए है तो हाँ सारियां दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने में शशि हाजिर होइयो कार्यक्रम लेकरी माटी दी महक। पहले तो तुहां सारियां दा ही माटी दी महक कार्यक्रम दे सफर च शशि दा प्यार भरा स्वागत है, प्यार भरा नमस्ते है। इसी नमस्ते कन्नै अपने कार्यक्रम दी जेड़ा शुरुआत है से हाँ करी थी है, कने तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम कन्ने जुड़ी होने न। तो हाँ सारे जो ही पता है कि इस कार्यक्रम दा जेड़ा समय है से तो हाँ तक रहंदा है 2 ते 3 बजे तक। कने तो हाँ भी इंतज़ार जेड़ा न से कर दे न, कने दोपहर दे जेड़ा 2:02 कार्यक्रम चोइया न, कने इस कार्यक्रम दा जेड़ा समय है से तुहां तक रहंदा है 2 ते 3 बजे तक। मौसम दी ओर अगर अहां अपनी जेड़ा नज़र है से लगांदे न, तो मौसम थोड़ा दिया अपनी करवट जेड़ा है से बदलदा है, कने बदलना भी वैसे ज़रूरी है क्योंकि जिस हिसाब ने मौसम अपना जेड़ा थोड़ा दिया डरावना दिया माहौल जेड़ा से यहाँ जो दिखा दा था कि गर्मी वाला जेड़ा मौसम ऐसे इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि ना हाँ गर्मी सहन कर सकते ना हाँ ठंड सहन कर सकते, मतलब मौसम दा जेड़ा कुदरत दे नियम इस दे अनुसार चलना हाँ वास्ते ज़्यादा ज़रूरी है। पर थोड़ा दिया जेड़ा मौसम है मौसम च जेड़ा ठंडक ऐसे ज़रूर थोड़ी देर पे ही है, कने जितने भी श्रोता न से इस टाइम खुश हैं, थोड़ी देई जेड़ा गर्मी थी गर्मी ते यहाँ जो सारे जो ही जेड़ा राहत है से मिली है। भाई मई दी यहाँ गल करन आज शुक्रवार दी गल कर दे न, कने तो हाँ जेड़ा आज कना दिन इंजॉय भी करा दे होने न, कने इंजॉय तो वैसे भी करा दे होने न क्योंकि मौसम बड़ा सुहाना बनया है, कने बारिश वाला जेड़ा मौसम है बारिश दियाँ जेड़ा बुछारे न से शामी दी यहाँ गल कर दे न या 1-1.5 बजे दी तां तालू ते जेड़ा से शुरू होई थियाँ, कने प्यागा दी यहाँ गल करना तो प्यागा भी जेड़ा से बरखा हुई थी, कने तो हाँ सारे जो ही जेड़ा से गर्मी ते राहत जेड़ा से ज़रूर मिली है। कने अधिकतम तापमान दी यहाँ गल करना तो 19 डिग्री सेल्सियस जेड़ा से है, कने रात दी अगर अहाँ गल करना तो न्यूनतम तापमान रहने दी जेड़ा अनुमान है से 13 डिग्री सेल्सियस तक जेड़ा से जाई सकता है। तो मौसम दी जेड़ा जानकारी है से तुहां तक अहाँ पहुँचाई थी है, कने पहले अहाँ अपने कार्यक्रम दा जेड़ा आगाज है से कर देना। आगाज करना भी ज़रूरी है, कने जेड़ा नंबर है सभी तुहां तक पहुँचाइंदे न, तुहां सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर करने जुड़ने वास्ते जेड़ा अहां दा नंबर है से नोट करा। नंबर है 7018117091। तो इस नंबर पर कॉल करा या टेक्स्ट मैसेज करा या व्हाट्सएप मैसेज करा, कने हाँ जेड़ा शुरुआत कर देना इस प्यारे दे गीत करने। तशोतों तो हाँ सारे तक कहाँ गीत पहुँचा देना, तो हाँ भी इस गीत जो इंजॉय करा, कने जल्दी जल्दी इस कार्यक्रम दे सफर कन्ने जुड़िया।

0: बाटी दी मेहर कार्यक्रम तो सारे सुना देना अपने रेडियो दो शशि कन्हे फिर ते वापिस अहाँ आइए न तुह तक अपनी जेड़ा गल बात लेकर बाई मई दी अगर अहाँ गल करन 2026 दी शुक्रवार दा आजकना जेड़ा दिन है से क्या अहाँ खास दिन जेड़े से बना देन तेरे ऊपर भी जरूर अहाँ गलबात करनी है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जेड़े से आज अहाँ बना देन हर साल जेड़े से 22 मई जो ये दिन जेड़े से अहाँ बना देन अगले जेड़ा श्रोता न पहले कर देन तिना करने गलबात फिर कर देन अपनिया जेड़ा बाकी गल्ला न से। हेलो
1: हाँ जी शशि जी नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च
1: ठीक ठाक है हां जी हां जी बड़ा धन्यवाद मैं सुनता दिया दाड़ा सब कुछ सुनेगा
0: जी।
1: हां जी
0: जी तो हां कुछ ते बोला दे कने तुहांदा ना के जी
1: मैं जी दाड़ा सीमा तिलकराज बोल रहा मौसम आज खरा तूफान चला हुआ है
0: जी। अच्छा दाड़ा सीमा ते बोला दे जी तूफान जेड़ा से दाड़ा सीमा चलया जी ता मौसम गर्मी थोड़ी कटी की नहीं कटी उस साइड
1: थोड़ी गर्मी कटी है
0: जी। अच्छा जी जी थोड़ी देर गर्मी ते राहत मिली है ना जी।
1: हां जी हां जी मैं सारे एक संदेश देना चाहता पूरे मध्य प्रदेश को।
0: जी जी जरूर जी
1: मैं मध्य प्रदेश में संदेश आए जिला चाहता जो वोटिंग आ रही है वोट प्रधान पंचायत वोट को शो समझ के पान
0: जी जी
1: जो जो पहले प्रधान बने कोई बने वो अपने मकाना को टैला लगाते रहे किसी गांव का काम नहीं किया थी इन्होंने
0: जी जी
1: तो वो क्योंकि जब गांव वाले बनाते हैं गांव का काम होना चाहिए
0: जी जी
1: और सोच समझ के वोटा पर सबका काम विकास होना चाहिए से ये अपने गांव में टैला लगाते हैं अपने घरों में बच्चिया मनाते हैं घर में सिलेंडर लगाते हैं तो आगे कुर्सी सिलाई नहीं करते
0: जी जी
1: कोई भी बंदा है सोच समझ के वोट पान और जेड़े पुराने बंदे बार बार खड़े हो याद है ना उनको वोट नहीं पाना चाहिए क्योंकि नवा बंदा को बुढ़ा बनाओ कोई मुड़ा बनाओ तो जो सोच समझ के वोट पाओ।
0: जी जी बिल्कुल जी तो हाँ सही बोला दे पर से जनता दी क्या सोच है तिना दा वोट किस तरफ जाता है से जनता खुद चुनती है ना जी।
1: खुद चुनती है
0: जनता अगर अच्छा उम्मीदवार चाहती है तो उस जो कोई वोट जेड़ा है से सोची समझी करी पाना चाहिए क्योंकि जेड़ा कमांड है इस टाइम जनता दे हाथ च ही है ना जी।
1: हाँ जी जनता दे हाथ में बाद अगर आगे अच्छा काम करेगा दोबारा 5 साल के बाद फिर भी इसको वोट जनता डालती है
0: जी जी जी
1: तो इसलिए सोच समझे क्योंकि हमारे माजर में ऐसे बंदे हैं कम से कम 100 बिस्तर कम से कम 40 आदमी का काम नहीं हुआ आज तक कोई काम नहीं हुआ आज तक काम ही नहीं हुआ 40 आदमी ना उनको कुछ सुनाई है
0: जी,
1: तो उनका भी काम होना चाहिए। कई ऐसे बंदे हैं उनके 12-12 काम हो चुके हैं 13-13 काम हो चुके हैं घरों के काम हो चुके हैं सब काम कई काम हुए नहीं आज तक हमारे देख लो हमारे देख लो लोगों के घर गिर गए हैं उनकी कोई सुनाई नहीं है कोई पूछता कोई नहीं है मकान गिर गए हैं वो फिर सारे पक्किया मकाना वाले आते हैं पक्किया मकाना वाले मोटा ही आदमी चुनते मोटा आदमी उसके पक्के मकान सब उनके काम के गरीब आदमी का काम हो नहीं रही आज तक तो ऐसे वोट पाओ जो बंदा सुनाई कराए।
0: जी जी जरूर जी तो आज तो हम कुंदिया गीत सुनना पसंद करेगी जी
1: सुना दो कोई कांगड़ी गाना कोई अच्छा गाना सुना दो कोई।
0: जी जरूर जी जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहांदा
1: बड़ा धन्यवाद जी बड़ा धन्यवाद
0: जी। ये है तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तुहां सारी कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्हे तां श्रोताओं तुहां सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर कन्हे जुड़ी सकदे कन्हे अहां कन्हे गल बात जेड़े से जरूर करी सकदे तां श्रोताओं अपने कार्यक्रम दे सफर जो अहां फिर ते थोड़ा दे अगे बढ़ाना है क्योंकि गल बात कन्हे जेड़ा गीत संगीत है सभी आंदी जिंदगी च बड़ी अहम भूमिका जेड़े से अदा करता है क्योंकि गीत संगीत जेड़े से आंदा जेड़ा कार्यक्रम दा जेड़ा माहौल है उस जो थोड़ा देया चेंज करता है कने रौनक आला जेड़ा माहौल है से बनाईंदा है चाहे शादी है, चाहे कोई भी फंक्शन है, थोड़ा जिहा कार्यक्रम का जिहड़ा माहौल है ना, से बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो हाँ, अपने कार्यक्रम का जिहड़ा माहौल है, से थोड़ा जिहा चेंज करते न कने तुहां तक पहुँचाते न अगली फरमाइश। तो हाँ सारे भी सब प्यारी दिया फरमाइशा जो इंजॉय करा, कने इन्हें सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: आहुला दिन रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तो हाँ सारे गीत इंजॉय कीता कने इस गीत की फरमाइश हाँजो आई वे डाडा सीवा ते कने तिना दा ना वे तिलक राज जी तिना तक कहाँ ये गीत जेड़ा से पहुँचाया कने जितने भी बाकी श्रोता न तिना भी ये गीत इंजॉय कीता। इसी कने अपनी गलबात जो आगे बढ़ाते न कने गलबात दी और चलते न बाकी जेड़ा गल्ला न तिना हाँ बाद विच करते न। श्रोताओं बाई मई दी अहाँ जेड़ा से अज गल करा दे न कने खास जेड़ा दिन ने से अज अहाँ क्या बना दे। मैं तो हाँ जो पहले भी दस्या था पर एक बारी फिर इतने दसी दी है क्योंकि अहाँ दे जेड़ा श्रोता न से कई बार अपना काम करते न या बिजी होंगे न तो रेडियो सैट थोड़ा लेट ऑन करना जेड़ा से भूली आते न या लेट जेड़े से अपना रेडियो सैट ऑन कर देना। पर रेडियो सैट का तो अहाँ जो रेडियो सैट भी ऑन करी दिया कने अपने जेड़ा काम मन सभी करी लिया। आज अहाँ जेड़ा खास दिन बना देना से बना देना अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा जेड़े से 22 मई जो ये विशेष दिन जेड़े से बनाया जाता है कने अपनी जेड़ा अहाँ दी प्रकृति है प्रकृति की जेड़ा रक्षा है हाँ किस प्रकार जेड़े से करी सकते न। अगले जेड़ा श्रोता न तिना कन्ने कर दे न गल बात। हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी। नमस्ते
0: जी। स्वागत है जी तुहां दा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न?
1: बढ़िया जी
0: जी। ता तुहां कुछ ते बोला दे कने तुहां दा ना की है जी? जी अच्छा चैतरू वाले दे क्या हाल चाल है जी?
1: थोड़ी शांति है
0: जी। थोड़ी शांति है आज। शांति कहो है जी
1: है?
0: गर्मी ते थोड़ी राहत मिली है ना जी?
1: बिल्कुल जी
0: जी।
1: ठंडी ही पड़ गई है वाला तो
0: जी जी। बड़ी ज्यादा गर्मी जेड़ा ऐसे होई हुई थी ना जी?
1: हां जी
0: जी। कोई भी काम जेड़े से करी नहीं पा दे थे कने गर्मियां ने इतना ज्यादा थोड़ा दिया शरीर भी बीमार हो जांदा ना जी? जी जी। गर्मी इतनी ज्यादा है कि समझ नहीं आता कि क्या खान कदिया हाँ अपना खान पान रखन कदिया अपने स्वास्थ्य जो हाँ किस प्रकार जेड़ा खान पान ऐसे देन ना जी?
1: हाँ जी
0: जी। ता थोड़ा हूँ मौसम ठीक लगा था ना जी सुहाना?
1: हाँ जी
0: जी जी। ता मंगल जी और नोई ताजी चैतड़ुए दी?
1: नोई ताजी क्या सुनांगे ता
0: जी। ता कितनी की बरखा हुई चैतड़ु में?
1: नहीं है चक्का दी कम लगा दी थोड़ी है
0: जी। इस टाइम के दे है मौसम उस साइड
1: तो लगी जगह ना हुआ चली
0: जी। अच्छा तो लगी हो कने हवा भी चली हो ठंडी ठंडी?
1: हाँ जी
0: जी जी। तो आज तो हाँ कुंदिया गीत सुनना पसंद करगी?
1: गीत तो सुनी लग गया ना
0: जी।
1: पर तुम्हारे तो जाग गया ना
0: जी जी।
1: चैतड़ में
0: जी
1: आ जाना जरूर है
0: जी। जरूर जी।
1: जगराती जगराता
0: जी। अच्छा जगराता भी है?
1: पार्टी मेरी है।
0: ता बड़ी अच्छी गल है जी।
1: हाँ जी
0: जी। ता तुम्हारे जेड़े से तो हाँ रौनक लगाएंगे ना जी चैतड़ में?
1: चैतड़ में जी
0: जी जी। तो आज कौन क्या गीत तो हाँ सुनना पसंद करेगी अपनी यादा?
1: गाना तो हाँ सुनाई दिया
0: जी। कौन क्या
1: गाना तो हाँ सुनाई दिया? मेले जाना काल कांदे
0: जी। मेले जाना काल कांदे
1: खाना पैसे क्या गलाने बात कांदे
0: जी जी। काम तो हाँ कोई भी कर दे ना जी अगर पूरी लगन मेहनत ने कर दे ना जी।
1: हाँ जी।
0: उस काम में करने दा अलग ही जेड़ा हाँ ही बोली सकते कि अपना ही हुनर होंदा ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी। तो जरूर तुहंदी जेड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुंचा दे जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहंदा।
1: धन्यवाद
0: जी। ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਗੁੰਜਨ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ। ਤੁਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਰਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨਾ। ਤੁਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ सफ़र करने हम सफ़र जड़े से ज़रूर बनी सकते तो जल्दी जल्दी बनी आ इंतज़ार जड़े से तुहंदा बिल्कुल ख़त्म है। चलते न सुनते न इस प्यारे दे भजन जो।

यशोदन तो सारे सुनिया ए प्यारा दया भजन प्यारी दे फरमाइश मेले जाना काल कांधे। इस भजन की फरमाइश अह जो आई वै चैतड़ू ते कनतीना दा नाम वै मंगल जी। मंगल जी तक अहाँ ये गीत पहुँचाया कने जितने भी बाकी श्रोता न तिना भी इंजॉय किया। कने कार्यक्रम च जेड़ा समय दी ओर अगर अहाँ अपनी जेड़ा नज़र है से लगाते न तो 2:32 जेड़ा न कार्यक्रम जो या न कने अपनी जेड़ा गलबात है से फ्री ते तुहां तक जेड़ा से पहुँचाते न। गलबात अज अहाँ करा दे न अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के बारे च। खास दिन अहाँ ये अज बना दे न कने इस बनाने का मकसद क्या है, जागरूक होने का मतलब क्या है, सभी जरूर तुहां तक पहुँचाना है कि इस दिवस बनाने का जेड़ा खास मतलब क्या है। कने दी जेड़ा शुरुआत है से कल हुई थी संयुक्त राष्ट्र दी जेड़ा पहल है से वे संयुक्त राष्ट्र महासभा च जेड़े से 2000 च जेड़े से इस बनाने दी जेड़ा घोषणा है से शुरू हुई थी। पहल दी जेड़ा योजना है से सबसे पहले जेड़े ये दिवस जेड़े से 22 मई 2001 ते जेड़े से पूरी दुनिया च बनाना जेड़े से शुरू किया था। तो ये जेड़ा बनाने दी जेड़ा पहल है सभी जरूर तुहां तक पहुँचाते न। जीवन दी जेड़ा भविष्यता है से कि जेड़ा हंदे धरती पर जितनी भी भविष्यता है या हंदे जेड़ा जीव जंतु हैं तिना दी रक्षा जेड़ा से किस प्रकार करनी है। कने अहां हमेशा तुहां तक इदे उपर गलबात जेड़ा से कर देना कि अहां दे जेड़ा नदी नाले न या अहां दे जेड़ा जंगल हैं पहाड़ हैं समुंदर हैं से सारे च शामिल हैं अहां तिना दी किस प्रकार जेड़ा से रक्षा कर देना। तो अजकना जेड़ा दिन है से अहाँ खास तौर पर जेड़ा से बना देन जितने भी अहाँ दे जीव जंतु हैं या अहाँ दे जेड़ा जंगल हैं तिना दी रक्षा किस प्रकार करनी है। पर कुछ ना कुछ इंसान जेड़ा से हमेशा अपना फायदा दिखता है या जेड़ा जंगल हैं तिना च

जेड़ा ऐसे लगा देन या जेड़ा नदियां न या नाले न तिना जो प्रदूषित जेड़ा ऐसे यहाँ करा देन, कने जेड़ा पेड़ पौधे न से यहाँ वास्ते कितना ज़्यादा ज़रूरी है, कितना ज़्यादा अहां दे जीवन च अपनी अहम भूमिका अदा कर देन तुहां सारे जो ही पता है। अगर गर्मी दा मौसम है तां जेड़ा पेड़ पौधे न से यहाँ जो ताज़ी हवा ऑक्सीजन जेड़ा है से यहाँ जो दिन देन, पर फिर भी यहाँ जेड़े से कुदरत दा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि यहाँ जो इतनी अच्छी जेड़ा हवा है या इतना अच्छा जेड़ा वातावरण है से यहाँ जो मिल रहा है, ता थोड़ा दिया अपनी प्रकृति दी जेड़ा रक्षा है से जरूर करा कि ने यहाँ थोड़ा दिया और अग्गे बढ़ देना कि ने अगली जेड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचा देना। सुन दे निशा प्यारी दिया फरमाइशा जो तुह सारे भी इस कार्यक्रम दे सफ़र करने जुड़ी सकते, जुड़ने वास्ते जिड़ा हाँ दा नंबर है से फ्री ते तुह सारी लिखी लिया या अपने मोबाइल फ़ोन पर डायल करी लिया, क्योंकि इंतज़ार तुह जो भी था पर इंतज़ार दी जिड़ा घड़ी है से तुह वास्ते बिल्कुल ख़त्म है। ता नंबर है 7081817091, ते नंबर तुह तक पहुँची है कने तुहाँ इस नंबर पर कॉल करा या टेक्स्ट मैसेज करा या व्हाट्सएप मैसेज करा, कने अपनी पसंद का जेड़ा गीत है से तुहां इस कार्यक्रम च सुनी सकते, कने अपनी जेड़ा गल बात है सभी साझा जरूर करी सकते, कने अहां कने दसी सकते कि किस प्रकार अहां जो अपने जेड़ा नदी नाले न या पेड़ पौधे न तिना दी रक्षा जेड़े से करना चाहिए। चलते न सुन देना ईसा प्यारी दिया फरमाइशा जो तुह सारे भी इंजॉय करा।

0: শ্রোতাও হান দিচ্ছি রাগলি শ্রোতা হা কেনে জুড় চুকে না কর দিন তিনা কেনে গাল বাত। হ্যালো,
1: हेलो नमस्कार मैम।
0: নমস্তে জি, স্বাগত হ্যায় জি তোহাদা রেডিও গুঞ্জন ধর্মশালা চ। ঠিক ঠাক কেন
1: हां जी बढ़िया मैम
0: জি? তোহা কথু তে বলা দে কেনে তোহাদা না কে জি?
1: अतुल बोल रहा था धर्मशाला से।
0: জি অতুল জি, ধর্মশালা রেন্দে ক্যা হাল চাল হ্যায় জি?
1: सब बढ़िया लग रही हो, ठंडी ठंडी हो रही हो चीना नहीं।
0: जी अच्छा, ठंडी ठंडी हवा जी ऐसे चली हो?
1: हाँ जी
0: जी, ठंडी ठंडी हवा ते यहाँ जो ध्यान आया कि आज यहाँ जिड़ा खास दिन बना देना। अगर तो हम मेरा प्रोग्राम शुरू ते सुना दे होंगे ताता तो हाँ सुनी ली होनी है गल बात।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी, ता तो हाँ क्या लगता
1: पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए। उन गर्मी से होता है कि जंगल से कई लोग शरारती तत्व तो जी होंगे वो आग लगा देंगे,
0: जी जी
1: उन्हें लगाना चाहिए।
0: जी जी ज़्यादातर कने गर्मियों के मौसम च अहाँ जंगलों जो दिखते ना तो कुछ ना कुछ अहाँ जड़े से दिखते ना कि आग जड़े से लगी होती ना जी।
1: उसते पर्यावरण जो खतरा होंगे ही करना, जो छोटे छोटे पंछी होंगे उन्होंने
0: जी
1: बच्चे होंगे वो भी खत्म हो जाते।
0: जी जी, ता आज सही स्पेशल दिन जड़े से बना देना कने थोड़ा दिया इंसान जो भी समझना चाहिए ना जी। जी क्योंकि कुदरत अहाँ वास्ते दिखा अच्छा भी सोच दी बुरा भी सोच दी ना जी। जी कने अहाँ ता ऐसी जगह मतलब बास कर दे कि जितु अहाँ जो इतना अच्छा वातावरण मिल गया ना जी। जी जी, ता आज तो हाँ कुंडिया गीत सुनना पसंद करके जी।
1: आज पहाड़ी गाना सुना दिया, ठंडी ठंडी हवा दी जो जी
0: जी जी जरूर जी, ठंडी ठंडी हवा वैसे भी चली हो है कने इस गीते कने थोड़ा दिया कार्यक्रम दा जिड़ा माहौल है सभी यहाँ चेंज करने है ना जी। जरूर तुहंदी जिड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुंचा दें जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहंदा। ए है तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, तो हाँ सारे सुना देन कार्यक्रम माटी दी महक आपनी रेडियो तो शशि कन्ने, तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर शाह कन्ने जुड़ी सकते कन्ने हाँ कन्ने गल बात चिड़े से जरूर करी सकते। ताशो तो गल बात अहां दी चिड़े से हमेशा तुहां तक रहंदी है कन्ने तुहां भी जिड़ा अहां दी गल बात है तिहा पर ध्यान जिड़े से जरूर दिन देन। तो ध्यान देने की जरूरत है अपनी जिड़ा प्रकृति है, अपना जिड़ा अहां दा वातावरण है उसकी जिड़ा रक्षा करना अहां दा ही काम है, अहां दा कने तुहां दा काम है। तो अपनी प्रकृति की जिड़ा रक्षा है से जरूर करा, अपनी जिड़ा नदियां न जंगल न तिना दी जिड़ा रक्षा है से करना अहां दा काम है। थोड़ा दी आग्या वर दे न कने अगली जिड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुँचा दे न, तो हाँ सारे भी जिड़ा इंतजार करते रहते न कि अहाँ की जिड़ा फरमाइश है से कलू दिया तो हाँ तक अहाँ पहुँचा देन कने अहाँ भी यही सोचते न कि अहाँ दे जिड़ा श्रोता न तिना दी फरमाइश अहाँ कलू दिया तिना तक पहुँचा देन कने इस कार्यक्रम च जुड़ने वास्ते जिड़ा अहाँ दा नंबर है से अहाँ बार बार तो तक पहुँचा देन फ्री ते तो तक ये नंबर जिड़े से यहाँ पहुँचा देन। तो हाँ सारे ही इस नंबर जो फ्री ते नोट करी लिया, नंबर है 701-811-7091। तो इस नंबर पर कॉल करा या टेक्स्ट मैसेज करा या व्हाट्सएप मैसेज करा कने जिड़ा अगली फरमाइश यहाँ तुम तक पहुँच मैसेज करा या व्हाट्सएप मैसेज करा कने जिड़ा अगली फरमाइश अहाँ तो तक पहुँचा देन। तो हाँ सारे भी इस गीते जो भी इंजॉय करा कने इस गीते सुनी करी थोड़ा दिया तुहंदा जिड़ा मन है से जरूर खुश होना है कने इन्हें सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: श्रोताओं तो सारे सुनिया ये प्यारा दिया गीत, प्यारी दे फरमाइश, जीना कांगड़े दा, ठंडी ठंडी हवा चलदी, जुलदे झीलां दे डालू। तो श्रोताओं पेड़ पौधे न सेहां वास्ते कितना ज़्यादा जरूरी है, तो सारे जो ही पता लगी होना इस गीते च, कने तो हाँ ये गीत जेड़ा है इस ध्याने ने सुनिया होना है। इस गीत की फरमाइश हाँ जो आई हुए धर्मशाला ते, तिना दा नाम है अतुल जी, तिना तक कहाँ ये गीत पहुँचाया, कने अगले जेड़ा श्रोता न तिना कने भी कर दे न गल बात। हेलो,
1: हेलो, नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च।
1: हाँ जी ठीक ठाक, कहाँ सुना
0: जी? यहाँ भी ठीक ठाक हैं जी। जी क्या काम कार तुहां लग गया, क्या करा दे आज?
1: काम कार तो आंदा सही है, गाय चारनी है कि बकरियां
0: जी? ता इस टाइम ता हवा जी रहे से बड़ी प्यारी चली होनी है।
1: हाँ जी, हाँ जी ठंडी है
0: जी, ठंडी हवा चली हो।
1: हाँ जी,
0: कने अगर आज कने दिने दी यहाँ छड़ी लाइन देना, कने दो दिन पीछे कितनी की गर्मी थी।
1: हाँ जी मती जी, ये तो मेरे को 35 तक लंग गई है।
0: कने हवा च भी थोड़ा गर्म हवा जड़े से लू टाइप जड़े से यहाँ जो दिखने जो मिला दी थी ना।
1: हाँ जी, हाँ जी
0: जी जी ता मौसम जड़े से बड़ा ज्यादा एकदम गर्मी आला होया था ना जी।
1: हाँ जी, गर्मी के ना राती बरखा भी एकदम ही आई गई
0: जी, मौसम का कोई भरोसा नहीं है ना जी।
1: हाँ जी, हाँ जी
0: जी,
1: ये जी मन बदलू जा रहे ना, तीन अंबर भी बदलू जा रहे
0: जी जी सही तो हाँ जड़े से गल बोली कि मौसम अगर हाँ कलकने दिने दी गाल करना ता बिल्कुल एहसास नहीं था कि बरखा होनी है ना जी,
1: हाँ जी, हाँ जी
0: पर मौसम ने अपना रंग जरूर बदले है, पर आहां जो थोड़ी देर राहत दे दी है ना जी।
1: हाँ जी, हाँ जी बड़ी रात में ले कर लेते था
0: जी, बड़ी ज्यादा।
1: हाँ जी
0: जी ता तो हाँ अपना परिचय भी जरूर दे दिया, कुछ ते बोला थे
1: तपो तपो बने थे जी
0: जी। अच्छा तपोवन
1: तेरा?
0: जी ता तपोवन साइड पीछे दिया आग लगी थी ना जी जंगला च
1: हाँ जी, हाँ जी
0: जी, ता पता लग गया कि किन्ना लगी थी से आग की, क्या होया था?
1: राती 8 बजे लगाई है ना
0: जी जी
1: ये 4-5 एक पहले आ जाए पहले बजाई थी। हाँ
0: जी,
1: पहले दाड़ी राती आए 2 बजी ये
0: जी। अच्छा तो हाँ भी गए थे?
1: हाँ जी, तो आगे घर बखे हैं ना
0: जी,
1: आग लगी,
0: घरे बखे लगी हुई थी।
1: हाँ फिर 5 ब्रिगेड सदी ही
0: जी,
1: फिर फॉरेस्ट वाले आए, पुलिस वाले आए
0: जी। अच्छा,
1: अपने तो ना फिर सर घर बखा कंट्रोल करी थी, बाकी तो फकू ही गया बंद जंगल
0: जी। घर भी साइड ही होने ना जी?
1: हाँ जी, हाँ जी दुकाना ना थे तो बगर
0: जी, दिखा कितना नुकसान जैसे हो ही सकता था ना जी।
1: हाँ जी, हाँ जी कहना उन्हें भी जंगली जीन जानवर तो मते मरी होने राती
0: जी, जंगली जानवर तो सही है ना कि बड़े ज्यादा मरी होने
1: हाँ जी, हाँ जी
0: जी जी तब फिर उसके बाद कुछ तिदा क्या समाधान निकाले तो? हाँ
1: समाधान का तो क्या विषय है उन जेड़ा है बंदे थे ना नानो लिख लिए भी बजाना है
0: जी,
1: कने अगे ताइए थे ना फिर बोले भी कोई फोन नंबर वगैरह दसिए भी कोई वैसे तो वहां पे फोन कर लिया ना
0: जी जी जी। चलो अपना जेड़ा जंगलों का ख्याल है से ग्राएं वाले मिली जुली करी रखना ना जी, अगर तो
1: क्योंकि
0: जी ऐसा लगता है कि कोई या कई बार होंगे ना कि यहाँ थोड़ा देर लापरवाह बनी आंदे करना है, कुछ ही ना कुछ ही हर चीज जो नजरअंदाज करी करी से यहाँ हमेशा अपना ही दिख दे ना जी।
1: ये तो हम जंगल च क्या ना जंगल च तो अपने आप आग लगती नहीं
0: जी,
1: कोई
0: जी
1: ना तो कोई लांदा ही
0: जी जी जी
1: अपने भी जेड़ा लाइंदा तो इसी तो हम पता नहीं क्या फायदा होता है
0: जी। फायदा तो चलो खुद कुछ भी नहीं होता, पर नुकसान ही उल्टा जेड़े से
1: हाँ जी,
0: भोगना पौंदा ना जी।
1: हाँ जी, हाँ जी
0: इतने ज्यादा अजीब जंतु और
1: हाँ जी,
0: इतना जो भी बेजुबान है ना जी, से बोली तो नहीं
1: राती
0: पांदे जी।
1: हाँ राती के कहाँ जाना थे ना पक्षी वगैरह
0: जी जी जी ता आज तो हाँ कुंडिया गीत सुनना पसंद करगी जी।
1: आज तो हाँ अपनी पसंद है सुनाई दे जी कोई हाँ तो रोज आए 10 बेरम देवे ये सुनाओ सुना
0: जी।
1: आज तो हाँ जेड़ा प्यारा गीत लग गया जिसे सुनाई दें
0: जी
1: पहाड़ी
0: जरूर
1: गीत
0: जरूर जी जी, जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तो हों
1: धन्यवाद जी,
0: जी।
1: धन्यवाद।
0: ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਗੁੰਜਨ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕਨਿਆ ਜਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਦਿਨ ਬਣਾ ਦੇਣ ਸੇ ਬਣਾ ਦੇਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੈਵ ਵਿਵਿਧਤਾ ਦਿਵਸ ਤਾਂ ਸ਼ਰੋਤਾਓ ਇਸ ਬਣਾਉਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਂ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਥਾ ਕਨੇ ਅਗਰ ਅਹਾਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ ਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਥੀ ਨਾ ਕੁਥੀ ਅਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ ਉਸ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਨੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੋਤਾ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਨੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਲੋ
2: ਹਾਂਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ
0: ਨਮਸਤੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਓ ਸੈੱਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਮ ਕਰੀ ਲੈਣ ਜੀ
2: ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਦੂਰ
0: ਜੀ
2: ਹਾਂਜੀ
0: ਜੀ ਨਮਸਤੇ ਜੀ
2: ਨਮਸਤੇ ਜੀ
0: ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਥੋਂ ਤੇ ਬੋਲਾ ਦੇ ਕਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ
2: ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਮਦਨ ਜੀ
0: ਜੀ ਮਦਨ ਜੀ ਕੁਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ
2: ਮੈਂ ਸਿੰਧੂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ ਤਪਵਨ
0: ਜੀ ਅੱਛਾ ਤਪਵਨ ਤੇ
2: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
0: ਜੀ ਔਰ ਨੋਈ ਤਾਜੀ ਤਪਵਨ ਦੀ
2: ਤਪਵਨ ਨਹੀਂ ਚਕਵਨ
0: ਜੀ
2: ਚਕਵਨ ਚਕਵਨ
0: ਜੀ ਅੱਛਾ ਚਕਵਨ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ
2: ਅੱਛਾ ਜੀ
0: ਜੀ ਜੀ ਦਾਸ ਤੁਹਾਂ ਕੁੰਦਿਆ ਗੀਤ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਗੇ ਜੀ
2: ਆਏ ਗੀਤ ਸੁਣਾਏ ਜੀ ਕੁੰਜੂ ਦਾ ਜੀ
0: ਜੀ ਕੁੰਜੂ ਚੰਚਲੋ ਵਾਲਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਂ
2: ਹਾਂਜੀ
0: ਜੀ ਕੁੰਦਿਆ
2: ਕੁੰਜੂ ਦਾ ਗੀਤ
0: ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਤੁਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਸੇ ਤੁਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੀ ਜੁੜਨੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਂ ਦਾ
2: ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ
0: ਜੀ ਦਰਸ਼ੋ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀ ਰੇਡੀਓ ਦੋ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨੇ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਕਰਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ ਸਕਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਜੋ ਅੱਗੇ ਬੜਾਉਂਦੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਸੇ ਤੁਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨਾ

हर्ट्स पर ये तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तुहां सारी कार्यक्रम सुना दे थे आपने रेडियो दो शशि कन्ने ताशो तो इस कार्यक्रम दा जेड़ा सफर है से थुई संपन्न होंदे तुहां सारे ही आपने रेडियो दो शशि जो दिया अनुमति कन्ने ने सुन दे रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक होस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं APEX+ POINT ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: अप्पा, ये चींटी खाना कैसे चबाती है?
2: सुबह सुबह शुरू।
1: अप्पा, ये आवाज दिखती क्यों नहीं?
2: दिखती है बेटा, कभी कभी दिखती है।
1: ये पहिया चलता कैसे है? माँ को आपकी तरह मूछें क्यों नहीं होती? अप्पा, दिन में तारे क्यों नहीं दिखते? अप्पा अप्पा बोलो ना।
2: आके बोलता हूँ पक्का।
3: लो घर चला।
1: अप्पा अप्पा, ये पेड़ की
2: इधर सुबह शाम सवाल पे सवाल।
4: अरे, इसमें इतनी जिज्ञासा है तो इसे स्कूल क्यों नहीं भेजते?
5: गरीब आदमी है साहब, कहाँ से पढ़ाएगा?
4: इसे सरकारी स्कूल भेजो ना, अब तो शिक्षा है हर बच्चे का अधिकार।
1: अप्पा, अब तो मेरा पढ़ना पक्का।
4: हाँ पक्का।
1: अप्पा, ये मिर्ची इतनी तीखी क्यों होती है?
6: कल स्कूल में मास्टर जी से पूछ लेना। सांभर चाहिए तो।
7: शिक्षा है अब हर बच्चे का अधिकार, अब पढ़ना पक्का।

0: चसे
1: चकई ना।
0: सड़क पर ट्रैफिक जाम हो या हो खाली, हर पल चौकन्ना रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसका आपको पहले से आभास ही ना हो। अभी तो सड़क खाली लग रही है, पर आपको कहां पता कि छुट्टी का टाइम होने वाला है। इसलिए जहां एक तरफ मैं स्कूल से विनती करूंगा कि छुट्टी के टाइम बच्चों के सुरक्षित सड़क पे निकलने का प्रबंध करें, वहीं आपसे भी विनती करूंगा कि आप इस सड़क पे निकले तो अपना सारा ध्यान यहां केंद्रित करें और गति सीमा में चलिए, ताकि कभी कुछ अचानक हो जाए तो आप संभाल पाए उसे।
2: हेलो,
0: hey, तुम खबाए
2: चौसे चौकन्ना रहिए।
0: याद रखना, यहाँ हर पल चौकन्ना है रहना, ये सड़क है भैया, संभल के चलना।
3: हर घर में छुपा एक कुरुक्षेत्र आज भी है, क्योंकि गलत को गलत कहने वाले मिलते कहाँ हैं? कहीं कोई अर्जुन सा सच्चाई के साथ भी अकेला रह जाता है, कहीं कोई कर्ण सा वफादारी में अंधा हो जाता है, और कौरवों सा कोई अपना हो के भी बेगाना हो जाता है। यहाँ हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, पर गलती मानकर झुकना किसी को आता कहाँ है? लोग बोल देते हैं हमने क्या गलत किया, पर गलत होता देखना भी अपराध है, ये समझ किसी को आता कहाँ है? कृष्ण आते हैं समझाने आज भी, बहुत लोगों और घटनाओं के रूप में, पर उनकी लीलाओं को कोई समझ पाता कहाँ है? इसलिए अंत में भगवान ने भी महाभारत होने दी, क्योंकि समझाने से इंसान समझता कहाँ है।
4: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
5: मामा, नो शेयरिंग।
4: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
5: कौन था?
4: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
5: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
4: स्मार्ट गर्ल।
5: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
4: याद है ना, नो शेयरिंग।
5: मामा,
6: आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
7: सुनो, एक बात बताओ, शादी से पहले वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद वाली?
8: शादी से पहले वाली भी कोई जिंदगी थी, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करते रहो। जिंदगी तो शादी के बाद होती है, बीवी के साथ रोटियां बनवाओ, खाना बनवाओ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर, गीत सुहाने नए पुराने, जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापिस आ गए हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी और वो कहानी छूकर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

तो रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर में

नमस्कार श्रोतों, FM बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वर्डी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा और आऊँ सचिन कपूर तुसु होगी तुंदे वीडियो सेट में हाजिर हुआ कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा लाई करी। बहुत बहुत स्वागत है, मोटा मोटा स्वागत है, बड़ा बड़ा स्वागत है सभी हुनने वाले रहा सभी श्रोता गण रहा। माफ़ करा श्रोताओं, कार्यक्रम में थोड़ा करे 5 मिनट लेट हुआ ब्रॉडकास्ट कचो कि थोड़ा करे टेक्निकल इशू के श्रोताओं सोचा लिया तो ठेरी वजह थोड़ा है 5 मिनट डिले हुए हैं तो है माफ़ी मंग दें तुसु थो। बहरहाल कार्यक्रम में बहुत सारे नए नए गीत भी तुसु हुनाने, पुराने पुराने गीत भी हुनाने, तुंदी फरमाइश अगेन सो भी असु पूरी करनी ना, और जो ताज़ा खबरें हिन श्रोताओं सो भी तुसु होगी असु ज़रूर शेयर करनी ना। तो है ऐसा गल्ला रखे ख्याल रखा श्रोताओं कि रेडियो मंच कोई भी जानकारी अगर तुसु साझा करनी है तो सो रेडियो मंच साझा करने लायक ज़रूर भुआ, रेडियो मंच दसने लायक है श्रोताओं सो ज़रूर भुआ। इस समय आज तो थोड़ी करी चैन जरूर पियो बोने बहुत सारे इन श्रोता गण जो है ना, आज थोड़ी करी राहत भरी सांस की सो लिया जो कि आप इसलिए कुछ देना था कि ऐसो धर्मशाला काफ़ी ज़्यादा तपुरा थो श्रोतो काफ़ी ज़्यादा धूप की ऐसो इच्छुंदी थी और इस समय की ऐसो 22 डिग्री सेल्सियस तापमान है और इसी जो कि श्रोतों अगर है नमी री गल करिए यानी कि ह्यूमिडिटी री गल करिए ह्यूमिडिटी की 38% था थोड़ी करे ज़्यादा बोया। हालांकि कुछ ना बहुत कुछ किया सो खासा फ़र्क पे मौसम में शो तो यह बरखातों बाद है ना थोड़ी ठंडक भरा एहसास किया सो सब भी हुआ होना है। तो बिल्कुल चुनावी माहौल है, चुनावी बेला और इति अंदर ही किया सो इन खास कार्यक्रम जो वेड़ी गुंजन री टीम लेकर इच्छु कर दिए भारतों वक सब प्रतिनिधि केन सत्तु से हुणू कर दिन कि अपना विज़न किया सो अपनी पंचायत वास्ते की करे रखू कर दिन क्या रखू कर दिन और सब चीज़ें केन सो अपने तस इंटरव्यू में किया सो जितने भी प्रतिनिधि खड़ रहे हैं जाए सो प्रधान बुन उप प्रधान बुन BDC बुन सो क्लियर करू कर दिन दसू कर दिन अपना विज़न किया सो बिल्कुल क्लियर करू कर दिन। तो फिलहाल एक कार्यक्रम मंज हगो बढ़ते हिंद और बेशक श्रोता हूँ कजो कि टीम वर्क बुंदा है, कोई अकेले बंदे का काम ना बुंदा कि अगर तो हुणो कर दे बून की तड़ी कस किरी अकेरी आवाज़ आ तो सो अकेरी आवाज़ नहीं है सो पूरा टीम वर्क किया सो बुच्चू करता है अपने अपने स्तर पर किया सो पूरी टीम रेडी गुंजन रही बड़ी शिद्दत सो की किया सो कम कर दे हाँ और ता कि करे इतने बेहतरीन बेहतरीन कार्यक्रम के सो तो सब हुण दे हिंद श्रोता हूँ। बहरहाल अह है वो चलते हैं तो सब श्रोता जुड़ सकते हैं जी 7018889 पर कॉल करे करे नंबर अक मौके फिर आऊँ शेयर करना तू होगी 7018889 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत सुनी सकते हैं अपने क्षेत्र रे जानकारी किया सब होगी साझा कर सकते हैं श्रोतो है गलारा खासा ख्याल रहे कि जानकारी किया सो साझा करने लायक ज़रूर हुआ जानकारी किया सो रेडियो मंच दसने लायक ज़रूर हुआ शतो। तो ये शतो आगाज कर दिन कृष्ण भगवान जी का नाम लेन दिन और इस गीत सो भी आगाज कर दिन

सभी ट्यून को रोर कार्यक्रम हिंदी अपनी गप अगेन सो तो सब हूँ कर दिन आर जे सचिन कपूर हो गए। बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है सभी होने वाले रहा सभी श्रोतागण रहा। चलिए श्रोतों कार्यक्रम जो हगो बढ़न दिन तो सब बन रहे इस समय एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला सो गए और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप अगेन सो हूँ कर दिन। बहरहाल श्रोतों मौसम विभाग है कि ऐसा थोड़ा करी अलर्ट करो हाँ बल्लू कर दिन कि पंच जिला में कि ऐसा भारी ओलावृष्टि बारिश रहा ऑरेंज अलर्ट कि ऐसा जारी हुआ हा सो तो पंच जिलों में कि पंच जिले अंदर के सो तो सो येलो अलर्ट भी कि ऐसा जारी हुआ हा। जी बिल्कुल सो तो आज दिन थो लगातार प्रचंड गर्मी व सामना यह सब हिमाचल प्रदेश मनु के ऐसा करो करते हैं लेकिन अज करख नगर खा कि असो राहत री फुहारा असो पर बरसी हिन सो तो मौसम विज्ञान केंद्र शिमला वे अनुसार अगर हम गल करो सो तो चंबा कांगड़ा कुल्लू मंडी और शिमला जिला में भारी ओलावृष्टि व ऑरेंज अलर्ट जारी है। तटीय ऊना हमीरपुर बिलासपुर सोलन और सिरमौर जिले में बारिश और बारिश रहा येलो अलर्ट किया सो जारी है आशा तो और लगातार किया सो गर्मी बढ़ कर दे बिल्कुल हीट वेव के सो प्रदेश में चल रही है मनोरा हाल बेहाल आशा तो ऊना में किया सो 44.3 डिग्री जो किया सो पार करी चुक रहा और लू के सो बिल्कुल गर्म बोले आशा तो वाकई में और भी अन्य जानकारी ही इन श्रोताओं तो वो कि साझा करने हो तो सब बन रहे हैं इस समय एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला सुगी तो सब श्रोता जरूर आओगे जुड़ सकते हैं श्रोताओं कॉल कर सकते हैं 708-8-8-709 पर नंबर आख मौके फिर 708-8-8-709 पर तो सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत किया सो होने सकते हैं। तो ये शो तो कार्यक्रम जो हगो बढ़ते हैं और कार्यक्रम मंच अब आले करे चल रहे तो सभी जो इस गीतरी किनारी बने रहे तो सब आज सचिन कपूर सो गए गूंज अपने बन रही और गूंज प्यारे प्यारे श्रोता रहे।

0: शोध एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप कहने सो बिल्कुल लाइव चल रही ने तुंदे रेडियो सेट में रेडी गुंजन धर्मशाला में ता शो तो पेट्रोल डीजल की पेट्रोल और डीजल री कीमत के या सो बड़ो कर दे और आम आदमी रा बजट के या सो करखन करखा बिगड़ो करता हा जी बिल्कुल ता तो सब श्रोता सोगी जुड़ी सकते हैं अबे कॉल कर सकते हैं इन श्रोताओं 708-8-8-709 पर नंबर आख मौके फिर यूँ शेयर करना हुआ बिल्कुल कनेक्ट बुने तो है अबे 708-8-8-709 पर तो है कॉल कर सकते हैं इन श्रोताओं का इन द्रोतागण असोगी कनेक्टेड हैं पूछ दिन कौन बोलूँ दिन और करी थो बोलूँ दिन नमस्ते जी।
1: हेलो
0: हेलो नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी। नमस्कार।
0: हाँ जी क्या हाल चाल ने जी।
1: खरा जी खरा तो है ना
0: इंदे भी खरे राजी बाजी और करे लगुरन
1: कणका रोल ना तुंदा प्रोग्राम में फोन करन दे।
0: अच्छा कौन बोलुं दे और कड़ी था बोलुं दे जी।
1: मेरा को मंडी बंदी बागनी आ रही अम्मा।
0: अच्छा अच्छा जी जी बगनी वाली अम्मा जी तू है तो भूले गए
1: ना हम दा हर रोज इन मेरी हो जो मौका दिन तीन दा पूरा गिरे ना फोन ना करने।
0: अच्छा अच्छा
1: बोली थी ना जाए ना है ना बोल दे कभी तो रुपए जरा पूरा इंतजाम रन बन बन इंतजार पूरा।
0: अच्छा मिलो क्या पता बागनी वाली अम्मा सो बिसरी ना गेब वगैरह का
1: ना ना ये तबीयत खराब कर रही है जरा।
0: अच्छा अच्छा हाँ है ना कि सेहत बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है ना जी। सेहत ठीक बुआ था सब कम पुछ गंदे ना सेहत ठीक ना बुआ था बड़ी चीज़ खराब रही। हाँ जी जी कौन दिन गीत सुनना पसंद कर ले तो है जी।
1: रामा जो या बनवास
0: कौन दिन है जी।
1: रामा जो या बनवास।
0: अच्छा रामा जो है बनवास राम चले बनवास। चलिए ठीक है जी जरूर हुन ले तुस वो गीत ना सी है। ठीक है जी धन्यवाद। तो श्रोतों कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा बिल्कुल लाइव चल रही है इस समय और तो सब लाइव होने करते हैं अपने अपने रेडियो सेट में। एक बड़ी ज़रूरी और बहुत दिल थोड़ा करेगी ऐसो तो सो जानकारी तो बात की है सो वाकई में दिल थोड़ा करे मेरा बड़ा उदास भी हुआ बड़ा परेशान भी हुआ और बड़ा हताश की ऐसो तो सो भी हुआ। जी बिल्कुल आई थिंक बहुत सारे श्रोता के अंसो ऐसा गलत हों बिल्कुल जागरूक बुने हैं गलत हों बिल्कुल रूबरू बुने हैं। सवर्णा देवी जी हेरे बारे हों गल लगू हा करना जो कि ग्रां सुधेड़ रे निवासी हैं और ग्रां सुधेड़ धर्मशाला थल्ले बस स्टैंड थल्ले सुधेड़ बंदा हा शो तो यारे पति रिया यारे पति व जो देहांत है सो 2017 में बुचूरत हो यारी त्राई कोली हिन जति में से अक्की रबे अबे नवंबर में किया सो बुआ हाश होता हूँ और बड़ी मुश्किल था घर किया सो घर परिवार सवरना जी चलंदे थी है अपनी रोज़मर्रा री जिंदगी किया सो काफ़ी दयनीय थी और काफ़ी मुश्किल था चलती थी शो तो और आज ये सवरना देवी जी जो ना सो ब्रेन हेमरेज रे कारण यानी कि यारे दमक करे नस किया सो फटी को छू रहा ब्रेन हेमरेज इन्या वो छू रहा ठेरे कारण किया सो PGI चंडीगढ़ में सीरियस हिने और यारे इलाज वास्ते 8.5 लाख रुपये थो ऊपर मतलब 9 लाख वे वाशे तो है मन्नी कर चला ठेरे ज़रूरत था तब तो सुसब भी थो मेरा निवेदन हाँ कि यारी जान बचाना किया सो असु सब भी रहते हाँ असु सब भी रहते हैं और यारा बैंक डिटेल भी हाँ मंजूल है हूँ प्लीज़ देखना चाहता तुसू और हूँ दिला तो बोलना चाहता कि जितने भी श्रोता इस कार्यक्रम जो हुणु कर देना सो जरूर बैंक डिटेल के सो लिखी लैन और अपनी तरफ तो जितना तुसू लगता तूना कि सो यार यारी कुड़ी रा अकाउंट आ तो दो ही कुड़ी तड़ी तो तेरा अकाउंट है तो जितना हो सकता उतना करा जी। तो है अकाउंट नंबर किया सो जरूर लिखा 500 6 1 6 0 0 3 4 6 ये अकाउंट नंबर आ और आईएफसी कोड भी बोलूँ हाँ KACE ये सब कैपिटल आ KACE 5 0 लगना जी 1 2 3 4 5 0 और 7 5 यार IFC कोड हा। तो दिला था चाहता कि तो सब कहने सो सवरना देवी जी री जरूर हेल्प कर जितना हो सकता अपनी तरफ तूना के सो जरूर पान है ना जी तूना के सो जरूर कर और जरूर चाहता कि जरूर यारी हेल्प किया सो बुआ। मेरी गुजारिश है सभी होगी हाथ जोड़ी करी जड़ी जड़ी भी मेरी आवाज़ की असो गच्छू कर दे हाँ आऊँ कदी भी ना बनता लेकिन आज आऊँ बल्लू करता कि ज़रूर सवरना देवी जी री हेल्प करा और जो मैं नंबर लिखा हो तो सोचो तो इस नंबर मंच किया सो तू है पैसे सेंड कर सकते हैं और तुसू अगर डिटेल चाहिए और भी डिटेल चाहिए तो यारा नंबर किया अशोक कुमार जी ने यार नंबर आऊँ तुसू दिनों हाँ तो बोले सकते हैं कि वेड़ी गुंजन थूँ तुंदी जानकारी आए होने हाँ और सचिन कपूर द्वारा ये जानकारी आके ऐसो दितुरी थी तो नंबर लिखा जी 9 8 0 5 1 4 0 6 3 9 9 नंबर आ मुके फिरे 9 कह ले ला 9 8 0 5 1 4 0 6 3 9 अशोक कुमार यार है ना अधिक जानकारी वास्ते कि ऐसा तो इन्या हो कि संपर्क कर सकते हैं। बहरहाल तो सब बन रहे हैं इस समय वेड़ी गुंजन धर्मशाला सो के और शो तो ब्रेन है ब्रेन हैमरेज बुना धमाका भी नस फटेगा ना एक कोई है ना बुंदा या एकदम ना बुचिकंदा है बहुत टाइम थो कि तो अपने दिमाग का जो स्ट्रेस दिच्छू करते हुए बहुत टाइम तो कुछ ना कुछ सोचू करते हुए ने तो बोलते ना कि हंसना भी आके एक्सरसाइज आ हंसू करा खुली करे हंसू करा ठाट मारे ठाटा होगी कि हसो हंसू करा है ना क्या बनता है शो तो कि इंसान सारी जिंदगी कमंदा बिंदा सोचता बिंदा है ना वे इन बुझ सकता खबर कह गल भी चिंता थे क्या चिंता थे और जिन्या चिंता बहुत इन्या होगी हसो मतलब कही तो बगैर चिंता ही पूछे कहते लेकिन जो ज़्यादा सोचते हैं जो इन लगता त्यार है इस हिसाब होगी कि सो हूँ सो प्लीज़ अपना ख्याल जरूर रखा भगवान ना जरूर लिया किसी ने बुरा मत करा और एक्सरसाइज जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है सो जरूर करा शो तो।

0: शोत एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्स पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला। तो ये सभी ट्यून को रो और कार्यक्रम इस वक्त हिंदी अपनी गप्पा गन सो चल रही है। तो बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन आपको के फिर ये सभी होने वाले रहा सभी श्रोतागण रहा। श्रोतों तो ऐसा होगी जरूर जुड़ी सकते हैं, अपना पसंदीदा गीत के सो जरूर होने सकते हैं। 7081889 पर तो है कॉल कर सकते हैं और जो है तुसु नंबर शेयर करो जी यारे बारे है तुसु गल दसे तो जरूर अपनी साइट तो तुसु लगता तो जरूर तो है तती मंच के सो पे जरूर कर है ना, बहुत जरूर है, बहुत आवश्यक है पे करना, बहुत इम्पोर्टेंट भी है और कसकी भी जिंदगी रह के सो सवाल है। हालांकि बड़ी गल्ला के सो निकल कर इच्छू कर दिया मैं कह दसी अपनी कम्युनिटी रही कई दिग्गज ऐसे न जिन्हें कि सो मुझे जो रिपोर्ट मोले है तस रिपोर्ट के मुताबिक हूँ बल्लू की तीन हेल्प करने हो थोड़ा आना खाने की आ सो करे हा। इवन कि मैं वे अपने अच्छा गवर्नमेंट सेक्टर में गया सो लगुरे ने अच्छा पे स्केल है तेरा मतलब तीन थो बल्लू तो सो भी गया सो मतलब 100 रुपया सेंड करूँ कर दिन। आई थिंक तेरी सैलरी ज़्यादा ना था 70-80-90 हज़ार बिच के ऐसा बोने था वो एक्सेप्ट कर कर चलो तो कि आई थिंक 15-20 हज़ार था नॉर्मल बुनक हर महीने अगर 80-90 चुकड़ता था। पर चलो भगवान सब कुछ के ऐसो सब भी उन्हें दिता है ना, सर्वगुण संपन्न कोई भी नहीं बनता ऐसा दुनिया मंच, लेकिन इस सिचुएशन में ऐसी सिचुएशन में क्या सो मदद किया सो जरूर करना चाहते हूँ तो जरूर बनता। बेशक अपनी औरतों तो है जितना भी दिया 1,000 दिया 500 दिया 2,000 दिया 5,000 दिया है ना, पर जरूर मदद करा सो तुम। सवर्णा देवी री जो कि सुधेड़ रे निवासी हैं जी अरे तराई कुड़ी या कुड़ी की सो ब्याई त्रे दुई के सुतिन्य हो गए अभी तो मुझे लगता सब बुने हॉस्पिटल और हॉस्पिटल रहा था ना ही बुरा ना यार पीजीआई था भगवान किसी उगाने लाइक ना करा पीजीआई मतलब। खैर बहुत सारे ठीक मुझे करे भी चली इन दिन लेकिन ना ही बुआ था ही ठीक है। पर हाल चलते हैं थोड़ा घरे और हगो और खबर पर किया सो नज़र दौड़ाई लेंदा इन शो तो आके चिट्टेरा जो चिट्टा तस्कर ने यारा नेटवर्क रहा भांडा फोड़ पूरी तरीके की तरह वो चुकर था लेकिन हाँ पुलिस पूरी हिमाचल पुलिस की ऐसा पूरी कोशिश कर दिया कि धीरे धीरे कि ऐसा यारा खात्मा ज़रूर हुआ। और जो दोकड़ी वाकई में सुख सरकार आया तो दोकड़ा के ऐसे चिट्टे किया जो चिट्टा तस्कर ने काफ़ी ज़्यादा के ना सो पकड़ी है भी हिंद है ना, हीरोइन वाले चिट्टे वाले सब काफ़ी ज़्यादा पकड़ी है भी हिंद शो तो। बहरहाल इन अगले श्रोता असुओं की कनेक्टेड हैं कुछ दिन कुंड बल्लू दिन और कड़ी थो बल्लू कर दे हैं। नमस्ते जी।
1: हेलो नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी नमस्ते।
1: ठीक हो आप तो?
0: बहुत बढ़िया जी। कुंड बल्लू दिन और कड़ी थो बल्लू दिन
1: मैं खने आ रखा था जी बोल रही साक्षी
0: खने आ रहा था कुंड बल्लू दिन जी
1: साक्षी।
0: अच्छा क्या करते हैं तो है
1: घर में लेटे हुए हैं क्या करना धूप में।
0: अच्छा वही क्या कर दें वैसे क्या कर दें कस क्लास में पढ़ दें ये क्या कर दें।
1: नहीं से पढ़ती थी मैंने छोड़ दिया स्कूल।
0: अच्छा स्कूल छोड़ दिया सो कर छड़ी था
1: फेल हो गई थी मतलब
0: ना तो फेल था इवे जिंदगी में जे अगर ऐसा आगे बढ़ना था फिर लुड़ना था। हाँ जी
1: 3 बार फेल हो गई थी
0: ना तो कोई बात नहीं ना कोई बात नहीं जो इन अख्तर फोआ है बल्ले सकते कि अंबानी हिंद जो आधा देश के पूरा देश ऑलमोस्ट के ऐसा चलाओ कर देना सो पता ना कितनी मौके फेल भी छू रहे कड़ी कड़ी फेल भी छू रहे है ना तो स्कूल ना छड़ना है। हाँ जी
1: एडमिशन नहीं मिली मेरे को दोबारा
0: तो बाकी स्कूल में ट्राई करना तो तू सो
1: पता किया था नहीं मेरे जी
0: एडमिशन ना मिलने का क्या कारण है
1: बार से लोगी बोले एडमिट कितनी मिलेगी?
0: अच्छा तब तो है पढ़ाई रिकनारी तुम तो ध्यान लगता।
1: नहीं, मैं भूल जाती थी।
0: हाँ जी ना पढ़ने रिकनारी ध्यान ना लगता तुम्हारा।
1: पढ़ाई करती थी ना, और
0: हाँ जी
1: कोई आनिया तो थोड़ा भूल जाती थी।
0: अच्छा चलो बेटा कोशिश करने है ना पढ़ने रे जो कि इस जमाने में था बहुत मुश्किल है वरना अगर तो है पढ़ाई ना करे था अगर जिंदगी बड़ी टफ बचगाने फिर तुम्हें पढ़ाई की सो बड़ी जरूरी है और पढ़ाई होगी जिंदगी आसान बचगन दिया
1: जी
0: जी तो कोशिश करने हैं धीरे धीरे याद करने रे धीरे धीरे पढ़ने रे है ना
1: जी दो
0: जी। ठीक है जी चलिए दस कुंदन गीत थोड़ा पसंद कर ले। हाँ
1: गाने सुने मैंने, दो
0: जी अच्छा
1: गाने सुने मैंने, इब्राहिम माता का और नाग नागरेता का।
0: महादेव वाला जी।
1: इब्राहिम माता का ना
0: हाँ जी
1: और नागरेता का।
0: अच्छा नाग देवता का ना जी। ठीक
1: जी ठीक
0: है जी जरूर होने ले धन्यवाद
1: है, धन्यवाद आपका।
0: जी। चलिए सो तुम कार्यक्रम हिंदी हिंदी अपनी गप्पा कैन सो चल रही बिल्कुल लाइव तुम्हें वीडियो सेट में FM बैंड 91.2 MHz पर ता तो सब श्रोता कॉल जरूर कर सकते हैं 7 0 8 8 8 7 0 9 8 पर नंबर अक मौके फिर आऊँ शेयर करनो साझा करनो 7 0 8 8 8 7 0 9 8 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत सुन सकते हैं अपने क्षेत्र जानकारी किया सो दे सकते हैं और कर सकते हैं बहरहाल चलते हैं श्रोता थोड़ा करे और हकूँ और यार इस बच्ची री फरमाइश मांगे आसो इस गीता जो होने लगते हैं।

0: श्रोता बजाना ही है जिन जुड़ते हैं ते हैं आज जुड़े भी न और जुड़े भी सकते हैं हले भी ऐसे लेकिन छोटों सो 9 मिनट बाकी भी हो रही ना 7 0 8 8 8 7 0 9 8 पर नंबर आख मुके फिर ही तू हो गया है शेयर कर देना साझा कर दे हिन 7 0 8 8 8 8 7 0 9 8 पर। तो चलिए श्रोतों कार्यक्रम जो थोड़ा करे और आगू बढ़न देन थोड़ा करे खेल समाचार ही रही और चलते हैं श्रोतों। तो आज टॉप टू में के ऐसा जगह बनाने वास्ते है, हैदराबाद बेंगलुरु थों के ऐसा मुकाबला अब बुना हा हैदराबाद रा बेंगलुरु थों के ऐसा मुकाबला बुना हा बरहाल इन श्रोता गणा सोगी कनेक्टेड हिन पुस दिन कुन बल्लू देन नानो खड़ी थों बल्लू देन। नमस्ते जी।
1: नमस्ते भाई जी। नमस्ते
0: नमस्ते जी। नमस्ते
1: अभी गाना सुनना है क्या?
0: हाँ जी जी कौन बोल रहे हैं और कड़ी से बोल रहे हैं
1: अशोक कुमार
0: सिद्धबाड़ी थे अशोक कुमार।
1: जी
0: अच्छा जी अशोक कुमार जी कौन देने गीत होना पसंद कर ले?
1: जिंदगी सोनी है।
0: अच्छा चलिए ठीक है जी अशोक कुमार जरूर सुन ले तू गीत।
1: धन्यवाद जी।
0: धन्यवाद। श्रोतों जी क्या है सब जान देन बाखूबी जान देन और कि चुनावी माहौल है इस समय पंचायत रहा और पंचायतों कर के नगर का कि इस वक्त टोन सेट बच गन देहा पार्टी भी चाहे सो वैसे था जो चुनाव बुंदे है पार्टी सिंपल पर बिल्कुल भी ना बुंदे हिन कजो कि पंचायत आमा चुनाव भूनेरा मतलब है कि आ काम इंसान किया जिसे रे अच्छी पकड़ा सो किया सो पंचायत में अया है ना इस प्रकार हो कि सो आम इंसान हगों बढ़ सका है ना। ता जिसेरा बेहतरीन होल्ड बनता जिसेरा बेहतरीन गलबात बनते तस्व जनता के सो जतन दे आशतों और तुसु सब भी के आशतों सो बिल्कुल इस प्रकार रा ध्यान जरूर रखना हाँ कि जो भी मन हुआ सो डाउन टू अर्थ बो जैसे तो है वोट पाना चल रही नहीं या जैसे तो सो वोट पाना सो डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी की ऐशतों सो बो है ना जी। चलिए चल देन और अपनी मर्जी थो तुसु किया सो जरूर चुनने हिन तुम ते जो भी प्रतिनिधि तुसु ठीक लग देन सो ता दसु कर दो तो आज दो ही

महा टक्कर दोई टीम बिच के 700 टक्कर पौने टॉप टू में किस जगह बनाने वास्ते अज जान लगाने धोनी बेंगलुरु भी और हैदराबाद भी। जी बिल्कुल संजा 7:30 बजे की सो आमने सामने बोने दोनों विजित और पेट सनराइजेस हैदराबाद रे। चलिए कार्यक्रम जो थोड़ा करे और हगो बढ़ंदन छतो और कार्यक्रम मंच हमें लेकर चलते तू सभी जो इस प्यारी देगी तारी किनारी और फिर गीता तो बाद तुस वो फरमाइश किया ये फरमाइश भी और शोतों फरमाइश भी पूरी करी इंदन और अबे वक्त भी बचेगो मैं समय भी किनारी की सो ध्यान न देता तू वक्त भी बचेगो तुस सब भी तो अलविदा लेने रहा और तू सब भी बस सही बोलना चाहूँ शोतों गंदे गंदे कि वोट पाना की सो जरूर गान वोट पाना तुंदा अधिकार हा मूलभूत अधिकार हा और वोट तस्यो पान जैसे तुस वो लगता कि अस वो ये प्रतिनिधि किया सो इंदा काम कर लो और ये प्रतिनिधि किया सो अज जिया हा ती किया सो अगले 5 साल पे वेला और तुंदा गांव रा विकास कर ला तो ज़रूर वोट पाना गान और वोट ज़रूर पान छो तो और अच्छा बेहतरीन प्रतिनिधि किया सो अपने पंचायत वास्ते चुन। माँ बाप री सेवा जरूर करन पर्यावरण थो पर्यावरण जो साफ सुथरा गया सो जरूर रखन छोतों धुंधरपान थो दूर रहन छोतों सूखे नशे थो के न सो दूर रहन और पर्यावरण इन्वायरमेंट जो साफ सुथरा जरूर रखन प्लास्टिक यूज ना करन। इन्या शब्द था हूँ सचिन कपूर तुसु थो ले लेनो इजाजत नमस्ते धर्मशाला।

दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट

0: लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। जीजीआई आप सभी को दे रहा है NAK A+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540 प्लस टॉप कंपनियां और 1250 प्लस से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं Apex Plus Point Authorized Admission Center नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: अप्पा, ये चींटी खाना कैसे चबाती है?
2: सुबह सुबह शुरू।
1: अप्पा, ये हवा दिखती क्यों नहीं?
2: दिखती है बेटा, कभी कभी दिखती है।
1: ये पहिया चलता कैसे है? माँ को आपकी तरह मूछें क्यों नहीं होती? अप्पा, दिन में तारे क्यों नहीं दिखते? अप्पा अप्पा बोलो ना।
2: आके बोलता हूँ पक्का। लो घर जा।
1: अप्पा अप्पा, ये पेड़ की
2: सुबह शाम सवाल पे सवाल।
3: अरे, इसमें इतनी जिज्ञासा है तो इसे स्कूल क्यों नहीं भेजते?
4: गरीब आदमी है साहब, कहाँ से पढ़ाएगा?
3: इसे सरकारी स्कूल भेजो ना, अब तो शिक्षा है हर बच्चे का अधिकार।
1: अप्पा, अब तो मेरा पढ़ना पक्का।
2: हाँ पक्का।
1: अप्पा, ये मिर्ची इतनी तीखी क्यों होती है?
5: कल स्कूल में मास्टर जी से पूछ लेना। सांभर चाहिए तो।
6: शिक्षा है अब हर बच्चे का अधिकार, अब पढ़ना पक्का।

0: 쩌스
1: 쩌까이나
0: सड़क पर ट्रैफिक जाम हो या हो खाली, हर पल चौकन्ना रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसका आपको पहले से आभास ही ना हो। अभी यूं तो सड़क खाली लग रही, पर आपको कहां पता कि छुट्टी का टाइम होने वाला है। इसलिए जहां एक तरफ मैं स्कूल से विनती करूंगा कि छुट्टी के टाइम बच्चों के सुरक्षित सड़क पे निकलने का प्रबंध करें, वहीं आपसे भी विनती करूंगा कि आप भी सड़क पे निकले तो अपना सारा ध्यान यहां केंद्रित करें और गति सीमा में चलिए, ताकि कभी कुछ अचानक हो जाए तो आप संभाल पाए उसे।
1: हेलो,
0: ए, तुम खबर है?
1: जैसे चौकन्ना रहिए।
0: याद रखना, यहाँ हर पल चौकन्ना है रहना, ये सड़क है भैया, संभल के चलना।
2: हर घर में छुपा एक कुरुक्षेत्र आज भी है, क्योंकि गलत को गलत कहने वाले मिलते कहाँ हैं? कहीं कोई अर्जुन सा सच्चाई के साथ भी अकेला रह जाता है, कहीं कोई कर्ण सा वफादारी में अंधा हो जाता है, और कौरवों सा कोई अपना हो के भी बेगाना हो जाता है। यहाँ हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, पर गलती मानकर झुकना किसी को आता कहाँ है? लोग बोल देते हैं हमने क्या गलत किया, पर गलत होता देखना भी अपराध है, ये समझ किसी को आता कहाँ है? कृष्ण आते हैं समझाने आज भी, बहुत लोगों और घटनाओं के रूप में, पर उनकी लीलाओं को कोई समझ पाता कहाँ है? इसलिए अंत में भगवान ने भी महाभारत होने दी, क्योंकि समझाने से इंसान समझता कहाँ है।
3: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
4: मामा, वो शेयरिंग।
3: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
4: कौन था?
3: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
4: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
3: स्मार्ट गर्ल।
4: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे, ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
3: याद है ना, नो शेयरिंग।
4: मामा,
5: RBI कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
6: सुनो, एक बात बताओ, शादी से पहले वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद वाली?
7: शादी से पहले वाली
6: हाँ?
7: भी कोई जिंदगी थी, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करते रहो। जिंदगी तो शादी के बाद होती है, बीवी के साथ रोटियां बनवाओ, खाना बनवाओ।

मेरे प्यारे दोस्तों, 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आप

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

नमस्कार श्रोतों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। FM बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। खुश रहना भी ज़रूरी है, तंदुरुस्त रहना भी ज़रूरी है। तो आइए, कार्यक्रम का आगाज़ जो है वो हम बिल्कुल करेंगे श्रोताओं। और आज काफ़ी ज़्यादा राहत भरी सांस जो है मैं कहना चाहूँगा वो आज हम सभी ने ली है, धर्मशाला वासियों में वासियों ने। समय की बात करूँ श्रोतों तो 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो इस समय मौसम है। नमी की बात की जाए जिसको अंग्रेज़ी में ह्यूमिडिटी कहते हैं, तो 48% के आसपास जो है वो नमी है श्रोतों। यह इस समय धर्म

धर्मशाला का मौसम जो हमने आप तक पहुंचाया है। और वैसे भी धर्मशाला का मौसम जानने के लिए जो है वो बहुत सारे श्रोता पहले से ही जो है वो बहुत उत्सुक रहते हैं, क्योंकि हमेशा ठंडा सा रहता है, कभी गर्म सा रहता है, तो इस प्रकार का मौसम जो है वो रहता है। बहरहाल आप सभी आरजे सचिन कपूर के साथ बनेंगे, जुड़ेंगे और अपना पसंदीदा कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला सुनेंगे। तो आइए आगाज़ करते हैं कार्यक्रम का इस प्यारे से गीत के साथ। बने रहेगा सचिन कपूर के साथ।

हो तो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है वेडी गुंजन धर्मशाला, और कार्यक्रम का आगाज़ हो चुका है श्रोताओं बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। चलिए तो चलते हैं और आज के विचार की ओर लेके चलते हैं आप सभी को। ज़िंदगी में सबसे बड़ी ताकत अच्छे समय का इंतज़ार करना नहीं, बल्कि बुरे समय में भी खुद को संभाल कर रखना है। मौसम चाहे जैसा हो, सूरज हर दिन निकलता ज़रूर है श्रोताओं। सो ज़िंदगी में एक सबसे बड़ी ताकत ये अपने पास ज़रूर रखना है श्रोताओं, कि अच्छे समय का इंतज़ार करना नहीं, बल्कि बुरे समय में भी खुद को जो है वो बेहतरीन बनाना, बुरे समय में भी खुद को जो है वो कुछ भी अगर सिचुएशंस आती हैं, कुछ भी अगर ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आ जाती हैं, ऐसी सिचुएशंस हमारे आगे खड़ी हो जाती हैं, तो उनसे संभल कर चलना, उनसे फेस करना है ना। बहुत जगह ऐसे होता है कि बहुत सारे श्रोता जो है वो जब भी कभी बुरा समय जो है वो आता है तो वहाँ पर थोड़ा सा जो है वो डाउनफॉल समझ लेते हैं, बुरी आदतों में जो है वो चले जाते हैं या नशे की ओर जो है वो चले जाते हैं। तो इस तरह से नहीं करना है। अगर बुरा समय है तो अच्छा भी आएगा, और बुरा समय जो है वो बहुत कुछ सिखा के जाता है, बशर्ते इंसान जो है वो सीखने वाला चाहिए, इंसान जो है वो बेहतरीन चाहिए। चलिए लेकर चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर, और इसके बाद शुरू होगा जानकारियों का पिटारा।

शो तो FM बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंचन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम आप सभी RJ सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं। कार्यक्रम का नाम है, जी बिल्कुल, कार्यक्रम का नाम है गुड इवनिंग धर्मशाला। आइए चलते हैं गुड इवनिंग धर्मशाला में और जानकारियों का पिटारा खोलते हैं। श्रोतों, पेट्रोल डीजल की कीमतों ने जो है वो बिगाड़ा है आम आदमी का बजट। हाँ बिल्कुल ना, आम आदमी का बजट जो है वो बिल्कुल हिल गया है। श्रोतों, लगातार बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर आम जनता ने भारी रोष आम जनता के बीच जो है वो भारी रोष देखने को मिल रहा है। श्रोतों, बढ़ती महंगाई के बीच जो है वो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी का असर सीधे आम आदमी की जेब पर जो है वो पड़ रहा है। और ये वाकई में ही श्रोतों, इस मुद्दे को लेकर जो है वो बहुत सारे लोगों ने बातचीत भी की है और कहीं ना कहीं आपको पता है, जब अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी तो फिर सब कुछ बढ़ेगा, फिर रसोई भी महंगी होगी, फिर अन्य चीज़ें जो हैं वो भी महंगी होगी होंगी। जी बिल्कुल श्रोतों, राशन से लेकर फल सब्जियां तक जो हैं वो महंगी होंगी। रोज़मर्रा की वस्तुओं के दाम जो हैं वो आसमान छूने लगेंगे। श्रोतों, आम आदमी की खाली होती जाएगी लगातार जेब। श्रोतों, जी बिल्कुल श्रोतों, महंगाई आज मध्यम वर्ग के लिए चिंता का विषय है। घरेलू ज़रूरतें पूरी करने पर ही आम आदमी की जेब खाली हो जाती है, ये हम सभी भली भांति जानते हैं। जबकि बचत के नाम पर आज लोगों के पास मतलब पैसा बचाने को कुछ नहीं है। ये वाकई में ही श्रोतों, नगरोटा के उत्कृष्ट आचार्य जी का कहना है कि आज खाद्य पदार्थ से लेकर जीवन रक्षक दवाइयाँ, दैनिक उपभोग की वस्तुएं, राशन, मसाले, दूध, दही, वह फल, सब्जियाँ आदि कुछ सालों से लगातार महंगी होती जा रही है। इन सब के पीछे बड़ा कारण परिवहन खर्चा बताया जा रहा है और ये हम सभी भली भांति जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें अगर बढ़ती हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। फिर वो रोज़मर्रा की वस्तुओं जो है वहाँ पर भी महंगाई बढ़ेगी, राशन को लेकर भी महंगाई बढ़ेगी, सब्जियों को लेकर भी महंगाई बढ़ेगी, फल को लेकर भी, हर एक चीज़ को लेकर जो है, ग्रोसरी को लेकर जो है, श्रोतों हर एक चीज़ को लेकर जो है वो महंगाई बढ़ेगी और आम जनता जो है वो परेशान होगी, हताश होगी। क्योंकि हम सभी भली भांति जानते हैं कि धर्मशाला में अगर हम जॉब कर रहे हैं, धर्मशाला में हम सभी जो है वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो यहाँ पर ना टूरिस्ट के अलावा जो है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ना इंडस्ट्रियल एरिया है ना, ना बड़ी बड़ी कंपनीज़ है कि उस तरह का पैकेज जो है वो यहाँ पर मिले, तो वो उतना ही मिलता है, ये हम सभी भली भांति जो है वो जानते हैं और उसी में जो है वो गुजारा करना पड़ता है। बहरहाल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आप सभी बने हुए हैं RJ सचिन कपूर के साथ।

शुद्ध एफ एम 91.2 2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे वेड़ी, जो कि सचिन कपूर। तो चलिए कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है, होप सो आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और अपने घर में अच्छे से रह रहे होंगे। श्रोताओ, पंचायत चुनाव वोटर लिस्ट से नाम कटने पर जो है वो मचा बवाल। पंचायत चुनावों को लेकर सीआईसी माहौल जो है वो पूरी तरह से गर्म गया है, श्रोताओं पूरी तरह से गर्माया हुआ है। लोकतंत्र के इस ज़मीनी उत्सव में अपनी किस्मत आजमा रहे प्रत्याशी इन दिनों ग्रामीण इलाकों में सुबह से लेकर शाम तक डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान में जो हैं वो जुटे हुए हैं, लोगों से मिलने में जो है वो जुटे हुए हैं। हालांकि इस बार जो है वो प्रत्याशियों के सामने न केवल राजनीतिक चुनौती है, बल्कि आसमान से 32% गर्मी भी जो है उनका कड़ा इम्तिहान जो है वो ले रही है। आज हालांकि थोड़ी सी जो है वो राहत ज़रूर मिली होगी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ गर्मी जो है, लू हम कह सकते हैं, जो निचले इलाके में पड़ रही है श्रोतों, है ना। बावजूद इसके भी प्रत्याशी जनता के दिलों में जो है वो जगह बनाने के लिए गाँव की पगडंडियों पर पूरी मेहनत से पसीना जो है वो बहा रहे हैं। चुनावी माहौल के बीच कांगड़ा की कई पंचायतों से एक हैरान और परेशान करने वाली खबर सामने आ रही है। कई पंचायतों की मतदाता सूचियों में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से कटे होने का मामला जो है वो प्रकाश में लाया गया है। श्रोताओं, मतदाताओं में इस बात को लेकर भारी नाराज़गी और आक्रोश है कि जब उन्होंने पिछले चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग किया था तो इस बार उनका नाम सूची से गायब कैसे हो गया। ग्रामीण अब प्रचार के लिए आ रहे प्रत्याशियों को घेर कर सीधे सवाल कर रहे हैं कि उनका लोकतांत्रिक अधिकार किसने और क्यों छीना। मतदाताओं का साफ कहना है कि उन्होंने ना तो किसी दूसरी जगह के लिए अपने वोट का ट्रांसफ़र कराया और ना ही कोई और वजह थी, फिर भी उन्हें मतदाताओं सूची से बाहर कर दिया गया, ऐसा क्यों। तो इसी तरह जानकारियों का पिटारा जो है वो चलता रहेगा। श्रोतों, आप सभी बने हुए हैं आरजे सचिन कपूर के साथ। 6:30 हो गए हैं श्रोतों, और वक्त हो गया एक छोटे से अंतराल का, और अंतराल के बाद फिर आपको सुनाएंगे हम गीत।

दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

शोध एफ एम बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं आरजे सचिन कपूर के साथ गुड इवनिंग धर्मशाला। बहुत प्यारा संगीत आप सभी ने सुना, दिल लगा लिया। हाँ, दिल आप सभी ने भी कहीं ना कहीं तो ज़रूर लगाया होगा, कभी ना कभी तो ज़रूर लगाया होगा शोध, इस बात से आप मुकर नहीं सकते हैं। तो चलिए जी, अवैध शराब पर जो है वो पुलिस ने शिकंजा कसा है, और घर पर छापा मारा तो पुलिस ने पकड़ी भारी मात्रा में शराब। यानी कि हरिपुर की मैं बात कर रहा हूँ, हरिपुर में पुलिस ने जो है वो 60 बोतलें देसी शराब जो है वो बरामद की है। श्रोतों, आगामी पंचायती चुनाव के दृष्टिगत पुलिस जिला देहरादून द्वारा संवेदनशील एवं अति संवेदनशील क्षेत्र में लगातार जो है वो राउंड पर राउंड लगा रही है और नाकाबंदी की जा रही है। पुलिस प्रशासन का मुख्य उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली किसी भी गैर कानूनी गतिविधि पर प्रभावी अंकुश लगाना है। इसी कड़ी में पुलिस थाना हरिपुर की टीम ने अवैध गतिविधियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद करने में सफलता हासिल की है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस थाना हरिपुर की टीम को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना के आधार पर पुलिस ने वार्ड मेंबर 6 हरिपुर निवासी नवेंद्र कुमार पुत्र विद्याराम के आवास पर नियमानुसार दबिश दी। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 60 बोतलें देसी शराब बरामद की गई। पुलिस ने अवैध शराब को कब्जे में लेकर आरोपी के विरुद्ध हिमाचल प्रदेश अबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है श्रोतों, और आगामी जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब इस अवैध शराब के स्रोत और इस काले कारोबार में जो है वो लोगों की जो लोग जुड़े हैं उन लोगों की तलाश कर रही है श्रोतों। पुलिस ने आगामी पंचायती चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न करवाने के लिए आमजन को सहयोग करने की अपील की है। आमजन जो है वो सहयोग करे, ये पुलिस ने प्रशासन ने अपील की है। यदि कहीं भी अवैध शराब धन वितरण या किसी भी तरह के प्रलोभन की जानकारी मिले तो तुरंत डायल 112 या नज़दीकी थाने में सूचित करें। और ये जानकारी मेरा लगाने का भी यही आप तक संदेश था, यही आप तक तात्पर्य था श्रोतों। अगर आपको लगता है कि कहीं इस प्रकार की वोट जो है वो खरीदे जा रहे हैं शराब पिलाकर, या फिर किसी पैसे का प्रलोभन देकर आपका वोट खरीदा जा रहा है, या शराब पर पिलाकर आपका वोट जो है वो खरीदा जा रहा है, तो अपना ज़मीर जो है वो मत मारिए श्रोतों, अपना ज़मीर जो है वो ज़िंदा रखिए। और जो आपको लगता है सही को सही बोलिए, गलत को गलत बोलिए, जो आपको लगता है उसी को चुनिए आपके अपने पंचायत चुनाव में।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.6 दो मेगा हर्ट्स पर आप सभी ने ट्यून किया है वेडी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे वेडियो जो कि सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत है सभी सुनने वालों का, सभी श्रोतागण का। आइए जी कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और अगली जानकारी की ओर आप सभी को लेके चलते हैं। जैसे कि आप सभी बखूबी जानते होंगे, भली भांति जानते होंगे कि धर्मशाला जेल में जो है वो एक युवक की हुई हत्या पर जो है वो गहरा दुख हम सभी को हुआ है। खनियारा के वो निवासी थे शोतो। और इसी बीच धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने धर्मशाला जेल में एक युवक की हुई मृत्यु पर गहरा दुख जो है वो व्यक्त करते हुए कहा है कि इस पूरे मामले को निष्पक्ष एवं समयबद्ध न्यायिक जांच जो है वो होनी चाहिए, और जिससे मृत्यु के वास्तविक कारणों का पता चल सके और पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। सुधीर शर्मा ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति की पुलिस या न्यायिका अभिरक्षा में मृत्यु जो है वो अत्यंत गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मानवाधिकारों की रक्षा सर्वोपरि है, तथा ऐसे मामले में किसी भी प्रकार की शंका को दूर करने के लिए जो है वो स्वतंत्रता न्यायिका जांच आवश्यक है। यदि प्रशासन द्वारा न्यायिका जांच की प्रक्रिया शुरू की गई तो जांच को पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ जो है वो अंजाम दिया जाए। साथ ही मृतक के परिजनों को हर संभव सहायता उपलब्ध करवाई जाए। प्रदेश सरकार मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी तथ्य को सामने लाए, तथा यदि किसी स्तर पर लापरवाही या जिम्मेदारी पाई जाती है तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। चलिए आज ही एक काफ़ी गहरा दुख जो है वो है, और इस तरह का हादसा अगर जेल के अंदर हुआ है शतो तो वाकई में ही चिंताजनक जो है वो बात है। कहा यह जा रहा है कि जो बयान आ रहे हैं, चाहे वो एसपी कांगड़ा अशोक रतन जी का हो, चाहे वो किसी और ऑफिसर का हो, कि जो है करंट लगने से जो है वो मृत्यु हुई है, लेकिन जो भी बातचीत है इस पर ज़रूर चर्चा हो। बहरहाल आप सभी सुन रहे हैं वेडी गुंजन धर्मशाला एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनाते हैं कार्यक्रम में ये प्यारा सा गीत। बने रहिए, जुड़े रहिए, जुड़े रहिएगा वेडी गुंजन की गूंज के साथ।

शुद्ध FM बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ RJ सचिन कपूर। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। एक जानकारी आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूं श्रोतों। बड़ा गांव इलाके में जो है वो जो बड़ा गांव है श्रोतों, हम सभी जानते हैं, बड़ा गांव इलाके में जो है वो एक निजी मकान में आग लगने की घटना सामने आई। आग इतनी तेज़ थी कि घर में रखा गैस सिलेंडर बम की तरह फट गया, जिससे मौके पर मौजूद लोग जो मौके पर मौजूद लोग थे श्रोताओं, कुछ समय के लिए दहशत में आ गए और बहुत ज़्यादा जो है वो डर गए श्रोताओं। बताया जा रहा है कि घटना के समय इलाके में बारिश हो रही थी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग यानी कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राहत की बात यह है कि इस हादसे में अब तक किसी के खोने की खबर जो है, सूचना जो है वो नहीं मिली है। हालांकि आग से मकान की ऊपरी मंजिल पूरी तरह से जो है वो जलकर राख हो गई है और लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है श्रोताओं। सिलेंडर ब्लास्ट का वीडियो भी जो है वो सोशल मीडिया पर आया है श्रोताओं, जिसमें विस्फोट के बाद आसपास अफरा तफरी का माहौल जो है वो दिखाई देता है। बहरहाल आप सभी

0: श्रोता एफ एम 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और अब वक्त हुआ है वेड़ी गुंजन धर्मशाला में समाचारों का।
1: सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत सभी प्रकार की प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय जल्द ही ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमरे और अन्य उन्नत प्रौद्योगिकी से लैस स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के बढ़ते डेटा सेंटर क्षेत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट ग्रिड, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और उन्नत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित विभिन्न क्षेत्रों में 1,00,000 इंजीनियरिंग नौकरियां सृजित हो सकती हैं। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि

0: भारत डेटा अर्थव्यवस्था को एक रणनीतिक अवसर के रूप में देखता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्विशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज की मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। ये पोस्टमार्टम नई दिल्ली के डॉक्टरों द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव और डीजीपी से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। ये निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। माउंट एवरेस्ट से उतरते समय 2 भारतीय पर्वतारोहियों अरुण कुमार तिवारी और संदीप अरे की मौत हो गई। दोनों पर्वतारोही दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर विजय प्राप्त करने के बाद नीचे उतरते समय बीमार हो गए और हर संभव प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस सीजन में एवरेस्ट पर ये 4थी मौत है। आईपीएल क्रिकेट में हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। दोनों टीमें पहले ही प्लेऑफ में प्रवेश कर चुकी हैं। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: श्रोतो FM बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वीडी गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है गुड इवनिंग धर्मशाला। आइए लेके चलते हैं आपको छोटे से अंतराल की ओर और फिर अंतराल के बाद श्रोताओं गीत की ओर जरूर लेके जाएंगे।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर NM तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: तो FM बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेडी गुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं आज सचिन कपूर के साथ बिल्कुल लाइव अपने अपने रेडियो सेट पर। देखिए, जो इंटरनेट पर धमाल होता है, कमाल होता है, वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाते हैं। श्रोतो, कॉकरेज पार्टी का अकाउंट जो है वो ब्लॉक था, लेकिन फिर से चालू हुआ है। इंस्टाग्राम पर 6 दिन में भाजपा कांग्रेस से ज़्यादा 1.34 करोड़ फॉलोअर्स जो हैं वो कॉकरेज पार्टी के हो चुके हैं। श्रोतो, ये वाकई में ही ट्रेंडिंग है, ये वाकई में ही लाजवाब है। तो चलिए श्रोतो, आप सभी को लेके जाएंगे इस प्यारे से गीत की ओर, और गीत के बाद फिर मुलाकात करते हैं आपसे।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं समय गुड इवनिंग धर्मशाला। हिंदी गीतों का आनंद आप सभी ले रहे हैं, साथ ही साथ जानकारियों का आनंद भी आप सभी ले रहे हैं। श्रोतो, जानकारियों के साथ आप सभी रूबरू भी हो रहे हैं, तो चलिए अगली जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। श्रोतो, भारतीय सेना द्वारा टांडा फायरिंग रेंज में 25 मई को सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक जो है वो फायरिंग की जाएगी श्रोताओं, और कचियारी खोली तथा यहाँ के आसपास के लोगों से आग्रह किया है, कोहाला यहाँ के आसपास के लोगों से जो है वो आग्रह किया गया है कि 25 मई को फायरिंग रेंज के आसपास के क्षेत्रों में जाने से बचे, ताकि किसी भी संभावित खतरे से जो है वो बचा जा सके, किसी भी खतरे से जो है वो बचा जा सके। तो भारतीय सेना द्वारा टांडा फायरिंग रेंज में 25 मई सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक जो है वो फायरिंग का अभ्यास किया जाएगा। तो आप सभी से हमारा ये निवेदन है कि आप सभी उस रेंज में जो है वो ना जाए, क्योंकि हम बार बार ये जानकारी देते हैं और सभी श्रोताओं को पता होगा कि कहाँ तक जो है वो ये रेंज जो है वो जाती है। बहरहाल, आप सभी बने हुए समय आरजे सचिन कपूर के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। आइए जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम में अब आपको लेकर चलते हैं श्रोताओं इस प्यारे से गीत की ओर। बने रहिए, जुड़े रहिएगा आपके अपने रेडी गुंजन धर्मशाला के साथ, गूंज अपने मन की और गूंज आप सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं की।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और मैं सचिन कपूर हूँ। बिल्कुल, पंचायत चुनाव हैं श्रोताओं, और हमारे पास कार्यक्रम चलता है चुनाव संवाद 12 से 1, वो आप ज़रूर सुने। और उसमें श्रोताओं, हम सभी हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी प्रतिनिधि हैं इन दिनों जो है वो बिज़ी भी हैं, लेकिन आकर जो है वो अपने विचार साझा करें। तो मैं जितने भी प्रतिनिधियों से अभी तक मिला हूँ, उनसे बातचीत की है, उनके बारे में जाना है, लोगों को कोशिश की है कि लोगों तक उनकी आवाज़ जो है वो हम पहुँचा सकें, और पहुँचाई भी है। तो मैंने जाना है, वो लोग सभी जो है कोई पार्क बनाने की बात करता है, कोई जिम बनाने की बात करता है, कोई क्रिकेट ग्राउंड बनाने की बात करता है। हर किसी का अपना अपना विज़न जो है वो रहता है श्रोतों। लेकिन मुझे लगता है कि चलिए, ये चीज़ें तो गांव में होनी ही चाहिए, मूलभूत सुविधाएं जो है वो तो होनी ही चाहिए, लेकिन इसके साथ ही जो सरकार की, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी स्कीमें जो हैं वो आती हैं, उनसे हमारे गांव के लोग जो है वो कहीं ना कहीं दूर रह जाते हैं, पिछड़ जाते हैं, वंचित रह जाते हैं, है ना। तो वो स्कीमें जो हैं वो आम जन तक पहुंचनी चाहिए, हर परिवार तक जो है वो सरकार की स्कीमें पहुंचनी चाहिए, चाहे वो कोई भी स्कीम हो, सरकार की ओर से चली हो, वो ज़रूर पहुंचनी चाहिए। मुझे लगता है कि आपकी पंचायत का जो भी, या आपके एमसी एरिया में जो भी प्रतिनिधि आएगा, जो भी काउंसलर आएगा, उसका पहला काम ही ये होना चाहिए कि वो सरकार की जो भी स्कीमें होती हैं, जो भी स्कीमें हैं वो ज़रूर पहुंचाए, है ना, जो भी स्कीमें हैं वो ज़रूर पहुंचाए लोगों तक, सरकार की स्कीमें। तो और बाकी कार्य की बात है तो कार्य जो है वो भी ज़रूर होते रहने चाहिए, है ना। बिना कार्य जो है वो चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, तो कार्य भी जो है वो रहने चाहिए। चलिए, लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगा हर्ट्स पर आप सभी ने ट्यून किया है वीडियो गुंजन धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वीडियो जो कि सचिन कपूर। आई श्रोताओं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब वक्त हो गया है 7:23, वक्त हो गया है छोटे से अंतराल का। मिलते हैं अंतराल के बाद।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं Apex Plus Point ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: पापा, ये चींटी खाना कैसे चबाती है?
2: सुबह सुबह शुरू।
1: पापा, ये हवा दिखती क्यों नहीं?
2: दिखती है बेटा, कभी कभी दिखती है।
1: ये पहिया चलता कैसे है? माँ को आपकी तरह मूछें क्यों नहीं होती? पापा, दिन में तारे क्यों नहीं दिखते? पापा, पापा, बोलो ना।
2: आके बोलता हूँ पक्का। घर चला।
1: पापा, पापा, ये पेड़ की
2: सुबह शाम सवाल पे सवाल।
3: अरे, इसमें इतनी जिज्ञासा है तो इसे स्कूल क्यों नहीं भेजते?
4: गरीब आदमी है साहब, कहाँ से पढ़ाएगा?
3: इसे सरकारी स्कूल भेजो ना, अब तो शिक्षा है हर बच्चे का अधिकार।
1: अप्पा, अब तो मेरा पढ़ना पक्का।
3: हाँ, पक्का।
1: अप्पा, ये मिर्ची इतनी तीखी क्यों होती है?
5: कल स्कूल में मास्टर जी से पूछ लेना। सांभर चाहिए तो।
6: शिक्षा है अब हर बच्चे का अधिकार, अब पढ़ना पक्का।

0: से
1: शॉप करना।
0: सड़क पर ट्रैफिक जाम हो या हो खाली, हर पल चौकन्ना रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसका आपको पहले से आभास ही ना हो। अब यूं तो सड़क खाली लग रही है, पर आपको कहां पता कि छुट्टी का टाइम होने वाला है। इसलिए जहां एक तरफ मैं स्कूल से विनती करूंगा कि छुट्टी के टाइम बच्चों के सुरक्षित सड़क पे निकलने का प्रबंध करें, वहीं आपसे भी विनती करूंगा कि आप इस सड़क पे निकले तो अपना सारा ध्यान यहां केंद्रित करें और गति सीमा में चलिए, ताकि कभी कुछ अचानक हो जाए तो आप संभाल पाए उसे।
2: हेलो,
0: तुम खबर है?
2: जैसे चौकन्ना रहिए।
0: याद रखना, यहाँ हर पल चौकन्ना है रहना, ये सड़क है भैया, संभल के चलना।
3: हर घर में छुपा एक कुरुक्षेत्र आज भी है, क्योंकि गलत को गलत कहने वाले मिलते कहाँ हैं? कहीं कोई अर्जुन सा सच्चाई के साथ भी अकेला रह जाता है, कहीं कोई कर्ण सा वफादारी में अंधा हो जाता है, और कौरवों सा कोई अपना हो के भी बेगाना हो जाता है। यहाँ हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, पर गलती मानकर झुकना किसी को आता कहाँ है? लोग बोल देते हैं हमने क्या गलत किया, पर गलत होता देखना भी अपराध है, ये समझ किसी को आता कहाँ है? कृष्ण आते हैं समझाने आज भी, बहुत लोगों और घटनाओं के रूप में, पर उनकी लीलाओं को कोई समझ पाता कहाँ है? इसलिए अंत में भगवान ने भी महाभारत होने दी, क्योंकि समझाने से इंसान समझता कहाँ है।
4: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
5: मामा, नो शेयरिंग।
4: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
5: कौन था?
4: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
5: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
4: स्मार्ट गर्ल।
5: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे, ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
4: याद है ना, नो शेयरिंग।
5: मामा,
6: आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
7: सुनो, एक बात बताओ, शादी से पहले वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद वाली?
8: शादी से पहले वाली
7: हाँ?
8: भी कोई जिंदगी थी, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारागर्दी करते रहो। जिंदगी तो शादी के बाद होती है, बीवी के साथ रोटियां बनवाओ, खाना बनवाओ।

FM बैंड 91.2 मेगा हर्ट्स, 2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे वेड़ी, जो कि सचिन कपूर। आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और आइए जी, हिमाचल प्रदेश में आज फुहारे पड़ी हैं बारिश की, और कहीं ना कहीं जो है वो राहत की सांस ज़रूर ली होगी सभी ने, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से जो है वो लगातार प्रचंड गर्मी का सामना जो है वो पूरा हिमाचल प्रदेश कर रहा था श्रोताओं, और आज जो है वो राहत की फुहारें बरसने लगी हैं श्रोताओं। और साथ ही साथ श्रोताओं, आपको मैं बताना चाहता हूँ, ऊना में जो है वो 44.3 डिग्री का पारा जो है वो पार हो चुका है, और लू जो है वो चल रही थी श्रोताओं, है ना जी। तो मौसम विभाग ने जो है वो 5 ज़िलों में भारी ओलावृष्टि बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया जारी, 5 ज़िलों में येलो अलर्ट है श्रोताओं। बहरहाल कार्यक्रम आप सभी आरजे सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं, कार्यक्रम का नाम है गुड इवनिंग धर्मशाला। आइए जी, गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनाते हैं आप सभी को ये प्यारा सा गीत।

0: छोटा एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है। और अब वक्त हो गया है श्रोतों 7:45 और रेडी गुंजन में अब समय है प्रादेशिक समाचारों का।
1: कल्याणकारी योजनाओं व विकास गतिविधियों पर की चर्चा। प्रदेश में लागू आचार संहिता के दौरान आयोजित की गई मंत्रिमंडल की बैठक पर भाजपा ने उठाए सवाल। चुनाव आयोग से फैसलों के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध। अंतर्राज्यीय नाकों पर पुलिस का कड़ा पहरा। और राजधानी शिमला सहित राज्य के अनेक भागों में हल्की वर्षा से लोगों को तपती गर्मी से मिली राहत। कल भी ओलावृष्टि व वर्षा की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। देश के सभी हिस्सों से चयनित ये युवा रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज बेंगलुरु में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से भेंट की। इस दौरान उन्होंने कर्नाटक व हिमाचल प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं व विकासात्मक गतिविधियों पर विस्तृत चर्चा की। विक्रमादित्य सिंह ने कर्नाटक में सड़क निर्माण और इन्हें पक्का करने की नई तकनीक के बारे में जानकारी ली ताकि इसे हिमाचल में भी उपयोग में लाया जा सके। उन्होंने कहा कि हिमाचल के लोक निर्माण व शहरी विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को कर्नाटक में शहरी विकास व अधोसंरचना निर्माण में अपनाए जा रहे सफल मॉडल्स के अध्ययन के लिए भेजा जाएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों राज्यों द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी नीतियों व विकास कार्यों का दोनों सरकारें अध्ययन करेंगी। प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार द्वारा आचार संहिता के दौरान आयोजित की गई मंत्रिमंडल की बैठक पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे लोकतांत्रिक मर्यादाओं और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने कहा है कि पूरे प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के चलते आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है। ऐसे में मंत्रिमंडल की बैठक बुलाना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में ऐसे कई फैसले लिए गए हैं जो सीधे तौर पर चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। हर्ष महाजन ने कहा कि सत्ता का दुरुपयोग कर चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश बेहद निंदनीय है। उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक के निर्णय की समीक्षा कर चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लिए गए फैसलों के क्रियान्वयन और प्रकाशन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की चुनाव आयोग से मांग की है। इस बीच आज शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। प्रदेश में 26, 28 और 30 मई को 3 चरणों में होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए प्रत्याशी लोगों से अपने अपने पक्ष में समर्थन मांग रहे हैं। इन चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए प्रशासन व पुलिस विभाग ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। प्रदेश के सीमावर्ती जिला सिरमौर में पुलिस विभाग अलर्ट मोड पर है और 3 राज्यों के साथ लगते इस जिले में बाहरी राज्यों से शराब तस्करी की संभावनाओं पर पुलिस कड़ी नजर रख रही है। पुलिस अधीक्षक निश्चिंत सिंह नेगी ने कहा कि जिले के अंतर्राज्यीय नाकों पर पुलिस द्वारा अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। उन्होंने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के दौरान सिरमौर जिला में करीब 500 पुलिस व होमगार्ड के जवान तैनात रहेंगे।
2: 20, 28 और 30 तारीख को पंचायत लेवल इलेक्शन होने हैं, तो हमने जो फोर्स की रिक्वायरमेंट दी थी फोर्स आने वाली है और साथ साथ हमें होमगार्ड के लोग भी इसमें डिप्लूट होंगे। तो हमारे जो बॉर्डर्स हैं उसमें हमारे नाकाबंदी रहेगी, रात को पेट्रोलिंग रहेगी और जैसे हमने राजगढ़ में भी हमने 140 पेटियां शराब की पकड़ी है, तो उसी तरीके से हमारे जो प्रयास है कि बाहर की शराब या कोई जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
1: पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि झूठी गारंटियों के सहारे सत्ता में आई कांग्रेस सरकार के पास एक भी उपलब्धि बताने के लिए नहीं है। मंडी से जारी एक प्रेस बयान में उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन का खोखला नारा देने वाली इस सरकार की जन विरोधी नीतियों और गलत फैसलों से समाज का हर वर्ग त्रस्त है। जयराम ठाकुर ने कहा कि 300 यूनिट फ्री बिजली देने की गारंटी देने वाली कांग्रेस सरकार ने पूर्व सरकार द्वारा दी जा रही फ्री बिजली भी छीन ली है। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की जनहितैषी योजनाओं के पैसे का दुरुपयोग कर उसे राज्य सरकार अपनी फ्लैगशिप योजनाओं के झूठे प्रचार प्रसार में लगा रही है, जबकि प्रदेश की जनता अपने अधिकारों के लिए सड़क पर है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, xhandle@AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में इस बार जनगणना का काम डिजिटल तकनीक से किया जाएगा। इसमें लोगों को खुद अपनी गिनती करने और जानकारी भरने का मौका भी मिलेगा। शिमला स्थित जनगणना कार्य निदेशालय के अनुसार प्रदेश में जनगणना 2027 का प्रथम चरण यानी मकान सूचीकरण व मकानों की गणना 16 जून से 15 जुलाई 2026 तक संचालित किया जाएगा। इसके अलावा 1 जून से 15 जून तक स्वगणना का कार्य किया जाएगा। इसमें लोग ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करवा सकते हैं। राजधानी शिमला में अवैध कब्जों और बदलती जनसांख्यिकी को लेकर हिंदू संघर्ष समिति ने आज राज्यपाल कविंद्र गुप्ता को ज्ञापन सौंपा। समिति ने आरोप लगाया कि शहर में तहबाजारी माफिया सक्रिय है और एक विशेष वर्ग द्वारा सुनियोजित तरीके से स्थायी कब्जे किए जा रहे हैं। समिति के संयोजक विजय शर्मा ने कहा कि शिमला शहर की बदलती डेमोग्राफी प्रदेश हित में नहीं है। उन्होंने हिमाचल के लोगों को तहबाजारी में प्राथमिकता देने और अवैध कब्जों पर सख्त कार्रवाई की राज्यपाल से मांग की है।
3: जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश की डेमोग्राफी बदल रही है वो हिमाचल प्रदेश के लिए हितकर नहीं है। यहाँ शिमला के अंदर तो एक वर्ग विशेष का तहबाजारी माफिया सुनियोजित तरीके से काम कर रहा है। तो नगर निगम की टीम शाम को 6-7 बजे उनको वहां से उठाने के लिए पहुंची तो वो नगर निगम की टीम को खुले तौर पे जान से मारने की धमकी और देख लेने की धमकी, इस तरीके की जो चीजें है वो देवभूमि हिमाचल प्रदेश के लिए माथे पे एक कलंक का टीका है। क्या ऐसे लोगों को तहबाजारी का लाइसेंस दिया जाना चाहिए? हमने यह जिला प्रशासन से भी यह मांग की थी, आज पुनः हम राज्यपाल महोदय के माध्यम से ये मांग दोबारा करना चाह रहे हैं।
1: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा है कि बढ़ती महंगाई के कारण लोगों को जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि देश के औद्योगिक विकास पर विपरीत असर पड़ रहा है, जिसके चलते बेरोजगारी भी बढ़ रही है। विनय कुमार ने कहा कि देश में बढ़ते तेल व एलपीजी के मूल्यों ने देश को गंभीर संकट में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस प्रदेश के लोगों के साथ खड़ी है। राजधानी शिमला सहित राज्य के अनेक भागों में आज हल्की वर्षा व हवाएं चलने से तापमान में मामूली गिरावट आई है, जिससे लोगों को तपती गर्मी से कुछ राहत मिली है। कुल्लू में आज दोपहर तक जोरदार बारिश हुई, जबकि रोहतांग सहित मनाली की ऊंची चोटियों पर बर्फ के फाहे गिरे। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक शोभित कटियार ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते मौसम में ये बदलाव आया है और कल भी प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर ओलावृष्टि व वर्षा की संभावना है। उन्होंने बताया कि 24 मई के बाद प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, जिससे कई स्थानों पर तापमान बढ़ेगा।
4: बारिश की एक्टिविटीज है वो हिमाचल प्रदेश में 23 मई को लगभग अलग अलग स्थानों पर रुक रुक के हमें देखने को मिलती रहेंगी, जिनमें से मुख्य रूप से शिमला, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा जिला है, वहाँ पे आज हमें कुछ एक स्थानों पे ओलावृष्टि की भी पॉसिबिलिटीज बनी हुई है, जबकि कल 23 मई को भी हमें कुल्लू, मंडी, शिमला में ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। 24 तारीख के बाद से बारिश की एक्टिविटीज में काफी ज्यादा कमी आएगी, हालांकि हायर हिल्स में बादल छाए रहेंगे।
1: आज जैव विविधता दिवस है। इस उपलक्ष्य पर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर जैव विविधता के संरक्षण को लेकर कई जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में सिरमौर जिला के नाहन स्थित पीएम श्री कन्या पाठशाला में हिमजनक मंच संस्था और ज्ञान विज्ञान समिति ने विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने नारा लेखन, पेंटिंग और सामूहिक चर्चा जैसी प्रतिस्पर्धाओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हिमजनक मंच संस्था के अध्यक्ष कंवर सिंह नेगी ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है, ताकि आने वाली पीढ़ियां प्रकृति के महत्व को समझ सकें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर के 47 स्थानों पर कल रोजगार मेले का होगा आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 51,000 से अधिक नव नियुक्त युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं व विकास गतिविधियों पर की चर्चा। प्रदेश में लागू आचार संहिता के दौरान आयोजित की गई मंत्रिमंडल की बैठक पर भाजपा ने उठाए सवाल। चुनाव आयोग से फैसलों के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध। अंतर्राज्यीय नाकों पर पुलिस का कड़ा पहरा। और राजधानी शिमला सहित राज्य के अनेक भागों में हल्की वर्षा से लोगों को तपती गर्मी से मिली राहत। कल भी ओलावृष्टि व वर्षा की संभावना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
0: शुद्ध एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी ने ट्यून किया है वीडी गुंजन धर्मशाला। तो कल भी शायद बारिश की आशंका जो है वो जताई जा रही है, होती है या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा श्रोतों। लेकिन आइए फिलहाल तो अब वक्त हो गया है आप सभी से अलविदा लेने का, आप सभी को टाटा बाय बाय बोलने का। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माँ बाप की सेवा करते रहिए और ज़रूर मदद कीजिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ मैं मदद कर सकता हूँ तो ज़रूर उस व्यक्ति की उस सिचुएशन में मदद ज़रूर कीजिए। इन्हीं शब्दों से मैं यानी सचिन कपूर लेता हूँ आपसे अब अलविदा। नमस्ते धर्मशाला।
5: ऐ मेरी हमरंग, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।

दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर।

0: PGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं FX Plus Point Authorized Admission Center नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: अप्पा, ये चींटी खाना कैसे चबाती है?
2: सुबह सुबह शुरू।
1: अप्पा, ये हवा दिखती क्यों नहीं?
2: दिखती है बेटा, कभी कभी दिखती है।
1: ये पहिया चलता कैसे है? माँ को आपकी तरह मुझे क्यों नहीं होती? अप्पा, दिन में तारे क्यों नहीं दिखते? अप्पा अप्पा बोलो ना।
2: आके बोलता हूँ पक्का।
1: अप्पा अप्पा, ये पेड़ की
2: सुबह शाम सवाल पे सवाल।
3: अरे, इसमें इतनी जिज्ञासा है तो इसे स्कूल क्यों नहीं भेजते?
2: गरीब आदमी है साहब, कहाँ से पढ़ाएगा?
3: इसे सरकारी स्कूल भेजो ना, अब तो शिक्षा है हर बच्चे का अधिकार।
1: अप्पा, अब तो मेरा पढ़ना पक्का।
2: हाँ पक्का।
1: अप्पा, ये मिर्ची इतनी तीखी क्यों होती है?
4: कल स्कूल में मास्टर जी से पूछ लेना। सांभर चाहिए तो।
5: शिक्षा है अब हर बच्चे का अधिकार, अब पढ़ना पक्का।

0: चसे सड़क पर ट्रैफिक जाम हो या हो खाली, हर पल चौकन्ना रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसका आपको पहले से आभास ही ना हो। अब यूं तो सड़क खाली लग रही है, पर आपको कहां पता कि छुट्टी का टाइम होने वाला है। इसलिए जहां एक तरफ मैं स्कूल से विनती करूंगा कि छुट्टी के टाइम बच्चों के सुरक्षित सड़क पे निकलने का प्रबंध करें, वहीं आपसे भी विनती करूंगा कि आप इस सड़क पे निकलें तो अपना सारा ध्यान यहां केंद्रित करें और गति सीमा में चलिए, ताकि कभी कुछ अचानक हो जाए तो आप संभाल पाए उसे।
1: हेलो,
0: हे, तुम खबर है?
1: जैसे चौकन्ना रहिए।
0: याद रखना, यहाँ हर पल चौकन्ना है रहना, ये सड़क है भैया, संभल के चलना।
2: हर घर में छुपा एक कुरुक्षेत्र आज भी है, क्योंकि गलत को गलत कहने वाले मिलते कहाँ हैं? कहीं कोई अर्जुन सा सच्चाई के साथ भी अकेला रह जाता है, कहीं कोई कर्ण सा वफादारी में अंधा हो जाता है, और कौरवों सा कोई अपना होके भी बेगाना हो जाता है। यहाँ हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, पर गलती मानकर झुकना किसी को आता कहाँ है? लोग बोल देते हैं हमने क्या गलत किया, पर गलत होता देखना भी अपराध है, ये समझ किसी को आता कहाँ है? कृष्ण आते हैं समझाने आज भी, बहुत लोगों और घटनाओं के रूप में, पर उनकी लीलाओं को कोई समझ पाता कहाँ है?

0: भगवान ने भी महाभारत होने दी, क्योंकि समझाने से इंसान समझता कहाँ है।
1: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
2: मामा, नो शेयरिंग।
1: कोई स्पेशल? हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
2: कौन था?
1: बैंक। केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
2: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
1: स्मार्ट गर्ल।
2: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
1: याद है ना, नो शेयरिंग।
2: मामा,
3: आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
4: सुनो, एक बात बताओ, शादी से पहले वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद वाली?
5: शादी से पहले वाली भी कोई जिंदगी थी, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करते रहो। जिंदगी तो शादी के बाद होती है, बीवी के साथ रोटियां बनवाओ, खाना बनवाओ।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक होस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: अप्पा, ये चींटी खाना कैसे चबाती है?
2: सुबह सुबह शुरू।
1: अप्पा, ये आवाज दिखती क्यों नहीं?
2: दिखती है बेटा, कभी कभी दिखती है।
1: ये पहिया चलता कैसे है? माँ को आपकी तरह मूछें क्यों नहीं होती? अप्पा, दिन में तारे क्यों नहीं दिखते? अप्पा अप्पा बोलो ना।
2: आके बोलता हूँ पक्का। लो घर जा।
1: अप्पा अप्पा, ये पेड़ की
2: इधर सुबह शाम सवाल पे सवाल।
3: अरे, इसमें इतनी जिज्ञासा है तो इसे स्कूल क्यों नहीं भेजते?
4: गरीब आदमी है साहब, कहाँ से पढ़ाएगा?
3: इसे सरकारी स्कूल भेजो ना, अब तो शिक्षा है हर बच्चे का अधिकार।
1: अप्पा, अब तो मेरा पढ़ना पक्का।
3: हाँ पक्का।
1: अप्पा, ये मिर्ची इतनी तीखी क्यों होती है?
5: कल स्कूल में मास्टर जी से पूछ लेना। सांभर चाहिए तो।
6: शिक्षा है अब हर बच्चे का अधिकार, अब पढ़ना पक्का।

0: जैसे
1: क्या करना,
0: सड़क पर ट्रैफिक जाम हो या हो खाली, हर पल चौकन्ना रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसका आपको पहले से आभास ही ना हो। अभी यूं तो सड़क खाली लग रही है, पर आपको कहां पता कि छुट्टी का टाइम होने वाला है। इसलिए जहां एक तरफ मैं स्कूल से विनती करूंगा कि छुट्टी के टाइम बच्चों के सुरक्षित सड़क पे निकलने का प्रबंध करें, वहीं आपसे भी विनती करूंगा कि आप इस सड़क पे निकले तो अपना सारा ध्यान यहां केंद्रित करें और गति सीमा में चलिए, ताकि कभी कुछ अचानक हो जाए तो आप संभाल पाए उसे।
2: हेलो,
0: hey, तुम खबर है?
2: जैसे चौकन्ना रहिए।
0: याद रखना, यहाँ हर पल चौकन्ना है रहना, ये सड़क है भैया, संभल के चलना।
3: हर घर में छुपा एक कुरुक्षेत्र आज भी है, क्योंकि गलत को गलत कहने वाले मिलते कहाँ हैं? कहीं कोई अर्जुन सा सच्चाई के साथ भी अकेला रह जाता है, कहीं कोई कर्ण सा वफादारी में अंधा हो जाता है, और कौरवों सा कोई अपना हो के भी बेगाना हो जाता है। यहाँ हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, पर गलती मानकर झुकना किसी को आता कहाँ है? लोग बोल देते हैं हमने क्या गलत किया, पर गलत होता देखना भी अपराध है, ये समझ किसी को आता कहाँ है? कृष्ण आते हैं समझाने आज भी, बहुत लोगों और घटनाओं के रूप में, पर उनकी लीलाओं को कोई समझ पाता कहाँ है? इसलिए अंत में भगवान ने भी महाभारत होने दी, क्योंकि समझाने से इंसान समझता कहाँ है।
4: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
5: मामा, नो शेयरिंग।
4: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
5: कौन था?
4: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
5: और आप मान गए? जब हमने पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
4: स्मार्ट गर्ल।
5: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे, ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
4: याद है ना, नो शेयरिंग।
5: मामा,
6: आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
7: सुनो, एक बात बताओ, शादी से पहले वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद वाली?
8: शादी से पहले वाली
7: हाँ?
8: भी कोई जिंदगी थी, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करते रहो। जिंदगी तो शादी के बाद होती है, बीवी के साथ रोटियां बनवाओ, खाना बनवाओ।

मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओ, आप सभी इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

90.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और श्रोताओ आप सभी इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं Apex Plus Point ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: अप्पा, ये चींटी खाना कैसे चबाती है?
2: सुबह सुबह शुरू।
1: अप्पा, ये हवा दिखती क्यों नहीं?
2: दिखती है बेटा, कभी कभी दिखती है।
1: ये पहिया चलता कैसे है? माँ को आपकी तरह मूछें क्यों नहीं होती? अप्पा, दिन में तारे क्यों नहीं दिखते? अप्पा अप्पा बोलो ना।
2: आके बोलता हूँ पक्का। घर जा।
1: अप्पा अप्पा, ये पेड़ की
2: इधर। सुबह शाम सवाल पे सवाल।
3: अरे, इसमें इतनी जिज्ञासा है तो इसे स्कूल क्यों नहीं भेजते?
4: गरीब आदमी है साहब, कहाँ से पढ़ाएगा?
3: इसे सरकारी स्कूल भेजो ना, अब तो शिक्षा है हर बच्चे का अधिकार।
1: अप्पा, अब तो मेरा पढ़ना पक्का।
3: हाँ पक्का।
1: अप्पा, ये मिर्ची इतनी तीखी क्यों होती है?
5: कल स्कूल में मास्टर जी से पूछ लेना। सांभर चाहिए तो।
6: शिक्षा है अब हर बच्चे का अधिकार, अब पढ़ना पक्का।

0: चसे सड़क पर ट्रैफिक जाम हो या हो खाली, हर पल चौकन्ना रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसका आपको पहले से आभास ही ना हो। अभी तो सड़क खाली लग रही है, पर आपको कहां पता कि छुट्टी का टाइम होने वाला है। इसलिए जहां एक तरफ मैं स्कूल से विनती करूंगा कि छुट्टी के टाइम बच्चों के सुरक्षित सड़क पे निकलने का प्रबंध करें, वहीं आपसे भी विनती करूंगा कि आप इस सड़क पे निकले तो अपना सारा ध्यान यहां केंद्रित करें और गति सीमा में चलिए, ताकि कभी कुछ अचानक हो जाए तो आप संभाल पाए उसे।
1: हेलो,
0: हे, तुम खबर है?
1: जैसे चौकन्ना रहिए।
0: याद रखना, यहाँ हर पल चौकन्ना है रहना, ये सड़क है भैया, संभल के चलना।
2: हर घर में छुपा एक कुरुक्षेत्र आज भी है, क्योंकि गलत को गलत कहने वाले मिलते कहाँ हैं? कहीं कोई अर्जुन सा सच्चाई के साथ भी अकेला रह जाता है, कहीं कोई कर्ण सा वफादारी में अंधा हो जाता है, और कौरवों सा कोई अपना होके भी बेगाना हो जाता है। यहाँ हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, पर गलती मानकर झुकना किसी को आता कहाँ है? लोग बोल देते हैं हमने क्या गलत किया, पर गलत होता देखना भी अपराध है, ये समझ किसी को आता कहाँ है? कृष्ण आते हैं समझाने आज भी, बहुत लोगों और घटनाओं के रूप में, पर उनकी लीलाओं को कोई समझ पाता कहाँ है? इसलिए अंत में भगवान ने भी महाभारत होने दी, क्योंकि समझाने से इंसान समझता कहाँ है।
3: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
4: मामा, नो शेयरिंग।
3: कोई स्पेशल हा? हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
4: कौन था?
3: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
4: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
3: स्मार्ट गर्ल।
4: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे, ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
3: याद है ना, नो शेयरिंग।
4: मामा,
5: आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
6: सुनो, एक बात बताओ, शादी से पहले वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि शादी के बाद वाली?
7: शादी से पहले वाली
6: हाँ?
7: भी कोई जिंदगी थी, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करते रहो। जिंदगी तो शादी के बाद होती है, बीवी के साथ रोटियां बनवाओ, खाना बनवाओ।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं सुंदरकांड। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।